चलिए थोड़ी सी हेल्प तो मैं आपकी कर ही सकती हूँ। अगर कभी कभी आपको लगे कि थोड़ा सा कुछ चेंज करना है तो आप सीधे तो हमेशा चलते ही हैं, कभी कभी उल्टा चल के देखिए। हाँ, सच में ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है। कभी अभी आपको ये लगे कि भाई मैं सीधे हाथ से लिखते लिखते थोड़ी सी थक गई हूँ या थक गया हूँ, तो फिर कोशिश कीजिए उल्टे हाथ से लिखने की। ये सारी की सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें हमारे दिमाग को अलर्ट करती हैं, और जो हम एक छोटी सी सुस्ती आ जाती ना, बिल्कुल उसमें से जाग जाते हैं। ये है भोर सुहानी, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। भोर सुहानी में हम बात कर रहे हैं आपकी, हम बात कर रहे हैं मौसम की। आप हैं, मौसम है, इतनी प्यारी सी सुबह है, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:33 और ठीक 35 सेकंड हो चुके हैं। उठ गए ना आप?

लेकिन हम में से कोई रुकना नहीं चाहता, हर कोई ज्यादा और अच्छा जीना चाहता है। सेहतमंद जिंदगी की राह में एक बहुत ही स्ट्रांग सहारा है योग। योग सिर्फ कुछ आसनों की प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक ये मुकम्मल लाइफस्टाइल है। बढ़ती उम्र के बावजूद हमारे तन को स्वस्थ और दिमाग को यंग बनाने की एक साइंस है। दुनिया भर में औसत आयु बढ़ी है, तो खुद को हेल्दी रखने की बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसलिए योग का साथ और अपना साथ बनाए रखें। भोर सुहानी है ये, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 5:41 और ठीक 12 सेकंड।

भोर सुहानी हम सबका स्वागत करती है। उठिए, जागिए, मुस्कुराइए, अपने आसपास की प्रकृति के साथ जुड़ जाइए। जो भी आज मिले उसे नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाइए। यही संदेश है इस नेचर का हम सबके लिए कि रुकना नहीं है। हर दिन नए संदेश के साथ, हर दिन नई उम्मीद के साथ आता है और हमें उसका स्वागत करना है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि तदनुसार 21 जून 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। अब से थोड़ी देर में यानी कि 6:10 पे आप सुनेंगे अर्पण। 12:10 पर वो जो एक फिल्म थी उसमें आज हम आपको बताएंगे एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है संगम।

म्यूजिकल दिल्लगी का साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ बना रहेगा 845 पे।

10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड शो है ये, इसको सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने चॉइस के गानों के साथ। ग्यारह बज के 10 मिनट पे आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारतीय योग दर्शन और परंपरा विषय पर वैज्ञानिक शिक्षाविद और योगाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेश राज जी से रश्मि कुकरेती और महेश्वर नारायण शर्मा की बातचीत।

और भी कई सारे कार्यक्रम हम आज आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी थोड़ी देर में वक्त हो जाएगा समाचारों का। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historic

रविवार की इस सुहानी सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वक्त हुआ है 6:33 और 34 सेकंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

सत्य वो दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ, और झूठ वो कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। अब चुनना आपको है।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्रीराम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: तो सुखिनः सर्वे संतो निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की

भावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। वहीं INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉकड्रिल का अभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पासपोर्ट सत्यापन में तेजी, लोकोन्मुखी सेवा उपलब्धता और सुशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के तौर पर है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आइए अब सुनते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला। आज का आसन है उज्जयी प्राणायाम।
1: नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन, मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनावग्रस्त जीवन शैली में थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है।

0: परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले अपने आसन पर किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं। अपने मुंह को बंद कर लें। पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं। यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें, जैसे आपकी श्वास पर श्वास की क्रिया। कोई भी आप योग अभ्यास करें उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम।

कहते हैं सुबह का आगाज अगर जोश और उम्मीदों से भरा हो तो दिन अच्छा गुजरता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बेहतरीन गीतों के साथ आपकी सुबह को और हसीन बनाने आ गए गोल्ड सुप्रभात लेकर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?

0: भेजा गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
0: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: वक्त है 7:23:22। आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और खुश रहने से मन। थोड़ी सी हंसी जीवन को ढेर सारी खुशियों से भर देती है ना। और जानते हैं, होठों से झड़ने वाले इन फूलों से न सिर्फ आपका बल्कि आपके संपर्क में आने वाले तमाम लोगों का दिन भी सुगंध से भर उठता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि मुश्किल या परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तनाव उसका हल कभी नहीं हो सकता। हाँ, आपकी परेशानी या उलझन को बढ़ा जरूर सकता है, पर फिलहाल हम अभी कुछ देर, जब तक आप और हम साथ हैं, आपको तनाव मुक्त रखेंगे, ये हमारा वादा है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको प्रतिवर्ष 21 जून को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया है। योग हजारों साल से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा रहा है। ये भारत की धरोहर है। विश्व के कई हिस्सों में इसका प्रचार प्रसार हो चुका है और अभी भी हो रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस निर्णय के बाद अब योग का विस्तार और भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा आज विश्व संगीत दिवस भी है, जिसकी चर्चा हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में करेंगे। तो इसी प्रारंभिक जानकारी के साथ रविवार की नई नवेली सुबह में ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ में समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे लेकर आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
1: Well, yes, namaskar, good morning, good day everybody, a very warm welcome to all our listeners. Yes, Ravi, International Yoga Day is being celebrated today. Yoga actually, it is not just a workout, it's a work in. And this is the point of spiritual practice actually, to make us teachable, to open up our hearts and focus our awareness so that we can know what we already know, what we are already aware of and be who we already are.
0: Ji.
1: Right? So yoga philosophy and all the great Buddhist teachings, they tell us that solidity, it is a creation of the ordinary mind and that there never was anything permanent to begin with. We are talking about impermanence as well, and that there never was anything to begin with that we could hold on to. And Ravi, life would be much easier and substantially less painful if we live with the knowledge of impermanence as the only constant. So we should remind ourselves of that every day. With that, let's begin our program. We have so much that we will be unfolding. Today it's also World Music Day, Fedala Music. More on that later in the program. So let's begin with the headlines.
0: जी बिल्कुल, शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: Prime Minister Narendra Modi is leading the national celebration from the historic Red Road in Kolkata, where around 35,000 participants are joining him in performing the common yoga protocol. Several union ministers, state ministers and senior officials, they are also taking part in Yoga Day events being organized across the country. The national celebration reaffirms yoga's growing role as a global movement, promoting health, harmony and collective well-being. We have a detailed report from our correspondent. Listen in.
3: International Day of Yoga is witnessing enthusiastic participation across the country and abroad. The Ministry of Culture, in collaboration with Archaeological Survey of India, is organizing special yoga programs at 100 iconic locations, linking India's rich cultural heritage with its enduring yoga traditions. Major celebrations are being held at 12 prominent sites, including Red Fort in New Delhi, Haridwar, Konark, Hampi, Mahabalipuram, Mumbai, Nalanda, Ahmedabad, Sarnath, Leh, Hyderabad and Silchar. The Ministry of Ayush said that over 6 lakh organizations have registered on Yoga Sangam portal, reflecting unprecedented public participation in this year's celebration. Internationally, more than 210 Indian missions are organizing yoga events at nearly 2,500 locations across the world through coordinated efforts of the Indian Council for Cultural Relations. In Delhi, yoga celebrations are being held at several prominent public locations, including the Lawn of Shantipath, Kartavyapath, New Moti Bagh, Central Park in Cannaught Place, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Rohan, Akashwani News, Delhi.
1: So yoga celebrations, they began yesterday only, where yoga enthusiasts across several

0: Western countries practiced yoga in large groups yesterday ahead of International Day of Yoga, which is today. So first, in Canada's Toronto, an enthusiastic gathering of government representatives, diplomatic corps, yoga practitioners, wellness organizations and community leaders participated in a yoga session against the historic backdrop of the Legislative Assembly of Ontario. In Brazil, a curated yoga session was led by the Ambassador of India to Brazil, Dinesh Bhatia, at the majestic Foz do Iguaçu waterfalls. Denmark yoga team in Aarhus organized the Day of Yoga celebrations in Dock 1. And according to the Embassy of India in Washington, D.C., hundreds, they came together at the iconic Lincoln Memorial. Yoga celebrations, enthusiastically participating people.
1: जी बिल्कुल, कहने का मतलब ये है शगुन कि आज पूरे विश्व में योग दिवस की बहार है.
0: एग्जैक्टली रवि,
1: चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे. इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है. इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है. INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है. INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है. INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है. नौसेना ने कहा कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है.
0: Now let's focus our attention on the 19th Mumbai International Film Festival, MIFF. This will draw to a close today. The biennial festival, this biennial festival of documentaries, short fiction, animation and AI cinema began on 15th June and this will conclude tonight with a grand closing ceremony. Let's find out more details from our correspondent.
2: After 5 fully packed days of cinematic extravaganza, MIFF 2026 will conclude today. However, before the closing ceremony, film enthusiasts will have another day to experience the power of non-fiction storytelling across various sections, including PRISM, Best of Fest, National Competition, Mosaic, and India, Lives and Landscapes, among others. One of the key attractions on the final day of MIFF will be the screening of V. Shantaram, the pioneering spirit, marking the 125th birth anniversary year of the legendary filmmaker. At the closing ceremony, scheduled to take place this evening at Mumbai's Ravindranatya Mandir, the best films will receive 18 awards across the international and national competition categories, carrying a total prize money of 45 lakh rupees along with trophies and certificates. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है. परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है. परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है. परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया.
0: Now, we'll focus on sports updates. India A will take on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final scheduled to be played in Dambulla today. The match will start at 10 in the morning, 10 a.m. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores when they take on Sri Lanka A in the final, with teenage sensation Vaibhav Suryavanshi set to be in the spotlight once again. Now in FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undaf scored twice. Earlier, Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States.
1: जी, चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है. भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की. 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार. और अब हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर एक नजर. तो शगुन, बताइए आप किस मेट्रो के समाचार से शुरुआत कर रही हैं?
0: रवि, आई विल बी बिगिनिंग विद

0: Chennai. I have two updates from Chennai. Jee. First one, the state government has sought a 3-month extension for Chief Secretary M. Sai Kumar, who is due for superannuation on 31st of August. ECI had appointed him during the election period. The proposal to extend Chief Secretary's service was sent a few days ago with Chief Minister C. Joseph Fitch's approval. Another update. Indian Union Muslim League has announced it was ending its long-standing ties with DMK that endured through multiple elections in Tamil Nadu. The national president, Kadir Muhyiddin, thanked Chief Minister C. Joseph Vijay for accommodating Indian Union Muslim League in his cabinet.
1: Ji.
0: Now we'll focus our attention on Bengaluru. The Railway Board has approved the operation of the Gol Gumbaz Express between Mysuru and Pandharpur through the Hubli and Gaddag bypass routes, reducing travel time by nearly 55 minutes. So welcoming this decision, Karnataka Infrastructure Development Minister M.B. Patil said that this approval fulfills a long-pending demand of passengers from Vijayapura and Bagalkote districts. He thanked Union Railway Ministers Ashwini Vaishnav and V. Somanna for their support in securing the revised routing. So under the new schedule, the train will halt at Hubli South and Gaddag bypass stations instead of entering the main city stations, helping shorten the journey time. Another update from Bengaluru. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot said that open and distance learning, it has become a powerful tool for democratizing education and ensuring access to knowledge for all sections of society. He stated that distance education would play a crucial role in achieving the vision of developed India by 2047 and in building a knowledge-based society. Speaking at an academic meet on From Access to Excellence, the future pathways of distance education and the release of the book Education, an overview of formal open and distance learning at Karnataka State Open University, Mysuru, the governor highlighted the transformative role of technology, also digital resources and innovative teaching methods in expanding educational opportunities. He also noted that distance education, particularly it benefits women, persons with disabilities and socially disadvantaged groups by providing flexible learning opportunities. Now turning our attention to Hyderabad. The Telangana Endowments Department is set for a major transformation with the launch of the State Institute of Temple Administration. And this aims at positioning the state as a premier national leader in temple administration, skill development and modern management practices. Telangana Endowments Minister Konda Surekha officially inaugurated State Institute of Temple Administration in Bogalkunta on Saturday. Speaking on this occasion, the minister emphasized that the department's initiatives could succeed only through the seamless coordination and dedication of priests and staff. Now over to you, Ravi, for updates from Delhi, Mumbai, Kolkata.
1: जी धन्यवाद. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त सभी अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का निरंतर प्रयास है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,880 करोड़ रुपए की सीधी सहायता प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोग किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है और उत्पादकता तथा आय वृद्धि में सहायक बन रहा है. दिल्ली सरकार ने आज होने वाली नीट प्रवेश परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन की ओर से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए गए हैं, जहां अभिभावकों के बैठने और विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर ही छात्रों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परीक्षा के दिन किसी भी परिवार को परिवहन, गर्मी या प्रतीक्षा से जुड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि नीट अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है. दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर के कल आखिरी दिन लोगों में अधिक उत्साह दिखा गया. शिविर में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है. शिविर में लोगों ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्ध व विधवा पेंशन, नए जल कनेक्शन, आधार पंजीकरण, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया. इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही दस्तावेज

0: मरीजों की जांच कर त्वरित प्रक्रिया पूरी की। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। बेस्ट उपक्रम ने आज नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा के लिए 60 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। ये बसें मुंबई के 63 परीक्षा केंद्रों तक और वहां से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे के व्यस्त समय के दौरान चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागियों के साथ सामूहिक योग सत्र में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, राज्यपाल आरएन रवि, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष प्रताप राव यादव और अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में भरपूर उत्साह है। प्रधानमंत्री आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के 3 जहाजों दूनागिरी, संशोधक और अग्रे के शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन प्लेटफार्मों का निर्माण किया है, जिनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को दर्शाता है। और ये समाचार शगुन हमने अपने मुख्य समाचारों में अपने श्रोताओं को पहले दे भी दिया है।
1: True.
0: तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और इसके अलावा कोलकाता में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका है। आज का न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शगुन,
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky. There is possibility of moderate rain or even thunderstorm. The minimum temperature will be around 28 degrees Celsius and maximum around 36 degrees Celsius. Bengaluru will experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be around 22 degrees Celsius, while the maximum temperature may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky. Possibility of a rain or thunderstorm or dust storm. The temperatures are expected to range from 26 degrees Celsius to 39 degrees Celsius.

0: और इससे पहले कि हम इतिहास को पन्नों को पलटें, अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें शगुन के आज वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस है। शायर अब्तलक बिनाम ने क्या खूब कहा है कि कभी मैं कोई तान छेड़ूं, कभी तुम कुछ गुनगुनाओ, ये जीवन संगीत बस यूं ही चलता रहे। जी हाँ, आज दिन की शुरुआत एक सुंदर सुरीले संगीत से हो जाए तो सारा दिन ही सुरीला बन जाता है और इतनी अच्छी तरोताजगी का एहसास हो जाता है कि लगता है कि उसे शब्दों में कैसे बयां करें। लेकिन बयां तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस जो हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। संगीत की विभिन्न खूबियों की वजह से ही विश्व में संगीत के नाम एक दिन है। ये संगीतज्ञों और संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई और शगुन इसको मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से म्यूजिक का प्रोपेगेंडा तैयार करने के अलावा एक्सपर्ट और नए कलाकारों को एक मंच पर लाना भी है।
1: Well, Ravi, I'm yet to find a person who does not

0: Around so music, World Music Day. Well, it's just amazing. The choice of June 21 is significant. It coincides with the summer solstice in the northern hemisphere, the longest day of the year, symbolizing light, energy and creative spirit.
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने. और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ.
0: Taking our listeners way back in time, 1788, the year 1788.

0: से विलिया स्पेन में बैठक शुरू हुई। 2005 में आज के दिन डोनाल्ड चांग हांगकांग के नए प्रशासक बने और 2008 में आज के दिन फिलीपींस में विनाशकारी तूफान फेंगसेन की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बात करने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है केशव बलराम हेडगेवार का, जिनका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1889 को और निधन 21 जून 1940 को। केशव बलराम हेडगेवार भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना समूचा जीवन हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। डॉ हेडगेवार पहले क्रांतिकारी थे किंतु बाद में हिंदू संगठनवादी बन गए। वे जीवन के अंतिम समय तक हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के संगठन के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और केशव बलराम हेडगेवार अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में क्रांतिकारी थे। उनका अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव एवं राजगुरु आदि महान क्रांतिकारियों से संपर्क था और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन चलाया था। और यही नहीं, सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भी आपने हिस्सा लिया और एक साल जेल में बिताया।
1: Today we are remembering musician, well of course, Matthew Loveland Dennis. We are remembering Matthew Loveland Dennis, the pianist, singer, band leader, arranger, writer of music for popular songs, one of which you are listening in the background. I was not around.

0: जयंतियों के क्रम में आज सबसे पहले जानकारी विष्णु प्रभाकर जी के बारे में, जो अपने साहित्य में भारतीय वाग्मिता और अस्मिता को व्यंजित करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। आपका जन्म हुआ 21 जून 1892 को और आपने संसार से विदा ली 11 अप्रैल 2009 को। विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यासकार, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत और कविता आदि प्रमुख विधाओं में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की हैं। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाले विष्णु जी जीवन भर पूर्णकालिक मसीहजीवी रचनाकार के रूप में साहित्य साधना में रहे और आपकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, क्षमादान और पंखहीन आत्मकथा आदि।
1: Today, listeners, we're also remembering Reema Lagu, who was so much more than just Bollywood's favorite mother, known for her maternal roles in some of Hindi cinema's biggest hits. Well, Reema Lagu also made her mark on the Hindi and Marathi stage and screen. So from Marathi theater and cinema to memorable roles in some of Bollywood's biggest hits, Reema Lagu was a force to reckon with.
2: Commissioner Sahab, aapne kabhi apna ghar jalte hue dekha hai? Usne dekha hai. आज वो मामा ठाकुर के पाप की नगरी को जला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उसे रोक दूं? नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है।
1: वेल ग्रेट Listeners, today, well, it's Raymond Douglas Davies' birthday, the musician. He was the lead vocalist, rhythm guitarist and primary songwriter for the rock band The Kinks, with his younger brother Dave providing lead guitar and backing vocals as well. He also acted in, directed and produced shows for theatre and television.

0: Well known for focusing his lyrics on rock bands, English culture, nostalgia and social satire, he's often referred to as the godfather of Britpop. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as a member of Kinks in 1990.
1: और अब बात करते हैं और जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंगकार मुद्रा राक्षस के बारे में, जिनका जन्म हुआ 21 जून 1933 लखनऊ में और निधन 13 जून 2016 को। मुद्रा राक्षस के साहित्य का अंग्रेजी सहित दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। वे अकेले ऐसे लेखक थे शगुन जिनके सामाजिक सरोकारों के लिए उन्हें जन संगठनों द्वारा सिक्कों से तोलकर सम्मानित किया गया था। कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना, नाटक, इतिहास, संस्कृति और समाज शास्त्रीय क्षेत्र जैसी अनेक विधाओं में ऐतिहासिक हस्तक्षेप

0: भी उनके लेखन की बड़ी पहचान है। सन 1951 से मुद्रा राक्षस की प्रारंभिक रचनाएं छपनी शुरू हुई और करीब 2 साल में ही वे एक चर्चित लेखक हो गए थे। ज्ञानोदय और अनुव्रत जैसी तमाम प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं का कुशल संपादन कार्य भी मुद्रा राक्षस जी ने किया था। उनकी लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं आला अफसर, दंड विधान, हस्तक्षेप, कालातीत और नारकीय आदि।
1: Well, today we're also remembering R.K. Shekhar, the music composer who worked mainly for Malayalam movies. He composed music for 52 films, 23 Malayalam with 127 songs to his name, and was the music conductor for more than 100 films.
0: जी, और चलते चलते अब आज का विचार कि जिंदगी में ऐसे मित्र जरूर बनाने चाहिए जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की लिखावट को समझते हैं।
1: How profound, so beautiful.
0: जी, तो इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्मचेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
7: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है,

0: पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की कयादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सहपहर भारत और बैरून मुल्क में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान मुनक़िद कराएगी। भारतीय परचमबरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आब नए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनर अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की कयादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: वजीर आजम ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
3: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
2: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूरू, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क्यादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकल दिल लगी में स्वागत है आप सभी का। बेहतरीन गीतों की सौगात लिए मैं हूं आपके साथ बबीता। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: वक्त हुआ है 8:54 और 20 सेकंड। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी, और आइए अब सुनते हैं शक्ति फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देशभर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: देश के अलावा विदेशों में भी योग का आयोजन किया गया। अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास का आग्रह किया। इस अवसर पर कल कनाडा के टोरंटो में सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और योगाचार्यों ने ओंटारियो विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। वहीं ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में विशेष योग सत्र हुआ। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित हो रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का भी अभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बीरोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और एआई फिल्में प्रदर्शित की गई। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए कल जिला मुख्यालय जम्मू में 75 डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजीकरण की सुविधा महाजन हॉल, शालामार और तवी नदी तट जम्मू में उपलब्ध होगी। साधुओं के लिए निर्धारित केंद्र गीता भवन, परेड और श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू है। गैर ई केवाईसी पंजीकरणों को ई केवाईसी पंजीकरणों में परिवर्तित करने का कार्य रेलवे स्टेशन जम्मू और यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माहे में मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारतीय का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become largest community celebration day because of yoga.
1: 21 June ka ye din, prithvi ke kuch bhubhag par saal mein sabse lambi avdhi ka din hota hai. और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
2: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. Since the inception of the International Day of Yoga in 2015, Mr. Modi has led celebrations from various locations including New Delhi, Chandigarh, Lucknow, Mysuru, New York, Srinagar and Vishakhapatnam. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. Meanwhile, several union ministers, organizations and eminent personalities are participating in yoga sessions across the national capital region to celebrate the 12th Annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participated in a yoga session at Nehru Park in New Delhi. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya also participated in the International Day of Yoga celebrations at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Actor Akshay Kumar joined the Sports Minister in the yoga session. Prime Minister Narendra Modi will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata today, designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by

0: By garden reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination will be conducted today. It will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held in the afternoon from 2 to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems, jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has said that three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. The 19th Mumbai International Film Festival will draw to a close today. The biennial festival of documentaries, short fiction, animation and AI cinema began on 15 June and will conclude tonight. The closing ceremony, scheduled to take place this evening at Mumbai's Rabindranath Mandir, the best films will receive 18 awards across the international and national competition categories, carrying a total prize money of 45 lakh rupees along with trophies and certificates. India A will take on Sri Lanka A in the Tri-Series cricket final scheduled to be played in Dambulla today. The match will start at 10 in the morning. Smarting from an ill-tempered defeat in their previous match, India A will look to settle scores when they take on Sri Lanka A in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: Prakriti ki baat आकाशवाणी के साथ
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत के प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही हैं जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नार्जरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। इसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरी जान ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं आज हमारे साथ हैं नागांव जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और जुमरमुर ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नर्जारी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार।
3: गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी?
4: पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में यह न केवल जुमरमुर पंचायत के बल्कि पूरे नौगांव जिले की और असम के लिए एक गर्व का बात है। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जिले के नाम घोषणा की गई तो मेरी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी सफलता का पूरा श्रेय जुमरमुर की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और हमारे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पाई गई है।
3: सनकदान जी, आपको जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये उपलब्धि आपकी पंचायत को दी गई, तो आपके क्या विचार थे इस पर?
4: हमें इस मंच पे बुलाने के लिए सब आप लोगों को धन्यवाद। जब हमें पता चला कि यह पुरस्कार हमें मिलने वाली है तो हम अत्यंत गर्वान्वित हुए। एक्चुअली में हम लोग पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने गाँव को बेहतर करने के लिए, हमारे जो गांव में जो परिस्थिति है, लोग जो कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं, उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए थे, तो वो जाके सफल हुआ तभी हमें ये पुरस्कार मिली है।
3: गीतांजलि जी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी जो बातें हैं काफी महत्व रखती हैं और

0: काफी काम भी आपके यहाँ पर किया गया है, तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताएंगे?
1: हमने सबसे पहले गांव-गांव के महिला को जाकर सहायता किया। SHG जैसे ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए थे, उनको शामिल किया। घर घर जाकर जैविक खाद बनाए और यो कचरे प्लास्टिक को अलग अलग करके हम लोग परीक्षण दिए और पंचायत की ओर जैसे कचरा संग्रह नियमित व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने आंगन के साथ सामाजिक रास्तों से कर्तव्य का समझकर आगे बढ़ा।
0: सरंगदान जी, लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई, आपने किस तरह से उनको मोटिवेट किया?
2: सर्वप्रथम तो हमने हमारे जो गांव के अंतर्गत जितने भी स्वयं सेवक ग्रुप है महिलाओं को हमने बुलाया अपने पंचायत में और उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, उनको समझाया कि हमें जबकि हम लोग कुछ ही कार्यकर्ता है पंचायत में, तो हमने उनकी सहायता ली। वो लोग जाके अपने अपने गांव में अपने अपने घर के आसपास के लोगों को जाके उन लोगों ने जागरूकता फैलाई है। ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों के बीच में पहले तो ये संदेश भेजा कि जो हमारे गांव में वो लोग के घर के आसपास जो कूड़ा फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह पे फेंकना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारे जगहों पे डस्टबिन भी बनाए हैं और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट उनको सबको सेग्रीगेट किया गया था। फिर वैसे प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल करने के लिए भेजा और बायोडिग्रेडेबल को डम्प साइट्स में भेजा, उनका अच्छे तरह से डिस्पोजल हुआ। हमने निश्चित किया कि हर घर पे गैस सिलेंडर गैस जो होता है वो यूज हो, लकड़ी ये सब जलाने से उनको जो पॉल्यूशन होता है उससे उसको रोकने का कोशिश किया। तो अभी तो 100% सब लोग सिलेंडर गैस LPG यूज करते हैं और बहुत सारे घरों में आजकल सोलर पावर भी लग चुका है। हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट है सब सोलर पावर ही है।
0: गीतांजलि, एकल इस्तेमाल प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित किया?
1: हम लोग गांव में जो पंचायत वार्ड है SHG ग्रुप है, SHG ग्रुप को हम लोग को गांव-गांव जाकर हम लोग को प्लास्टिक एक जगह कर रखे, पंचायत को भी हम लोग को सरकार ने जो पंचायत से निकाल कर एक जगह में रखने के लिए बोले।
0: और सरंगदान जी, इसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया?
2: हमने जितने भी हमारे स्कूल्स है उन सब में भी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें। तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहां पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे।
0: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
2: तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया। वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गांव के लोगों को अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। ऐसे करके हमारे गांव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
0: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया जिससे आपको सफलता मिली है, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
1: सरकार ने जैसे हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को समझाया था कि हम लोग घर घर सबको समझाया, जैसे पारदर्शी होती है हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना
0: जी।
1: और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना। तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छा से चल रहा है।
0: सरंगदान जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे ये लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए इन कार्यों से?
2: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं। हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक्चुअल में गांव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं। और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गांव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है। तो ऐसे करके हम लोग जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
0: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियां संचालित हुई?
2: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना। पहले भी नहीं था इतना, लेकिन

0: हम कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार के तरफ से एक फंड आता है उससे हमने शौचालय दिलाए, और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गाँव में।
1: सनातन जी, वैसे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है उन्हें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे, तो दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
0: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट्स है वो सब आप देख ही सकते हैं, और आजकल जो PAI है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को अपना जो जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है, उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पर जोर देते हैं।
1: सरंगदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया, क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुंचाएं, हमारी जो गतिविधियां हैं उन्हें अच्छे से संचालित करें?
0: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गांव-गांव में अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी पेंशन स्कीम्स है वो सब कितने गाँव वासियों को मिलनी चाहिए, हम अपने वार्ड सदस्यों को बोलते हैं, वो हमें सूची देते हैं कि कितने की पेंशन स्कीम के तहत जितना भी बेनिफिशियरीज है उनको ढूंढ के निकालने में वो हमें मदद करते हैं, और उसके साथ ही जिन जगहों में गांव के कुछ कुछ गलियों में अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है तो उन लोगों से हम लोग ग्रीवेंस लेते हैं, उनका जो कम्प्लेन आता है उसमें हम लोग MGNREGA के तरफ से हम उधर रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गांव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे। हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं, और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी, या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
0: सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें। हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वो हमसे बहुत ही प्रेरित हुए हैं, और हमें यह बात समझ में आया है कि अभी नौगांव भी बहुत ही गर्वान्वित हुआ है हमारे इस पुरस्कार को जो हमें मिला है, इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं, वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे।
1: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी और आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी?
0: मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें एक अभी आइडियल के तरह हमें देखेंगे, हमसे सीखने के लिए वो लोग भी आएंगे कि कैसे आप लोगों ने ये पद हासिल किया है।
1: आपकी पंचायत में जो सफलता हासिल हुई है इसमें पारदर्शिता की क्या भूमिका रही और सुशासन की क्या भूमिका रही है?
0: हम लोग ने जो जो काम अपनाए हैं वो सब फील्ड पे दिखते हैं, कागज में भी है, हमने पेपर वर्क फील्ड वर्क सब कुछ अच्छे से किया है। हमारे वहाँ पे हमारे विधायक जी भी है, हमारे ही पंचायत के थोड़े ही पास में उनका गांव है, विधायक जी भी आते रहते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। हमारे जो भी उन्नयन खंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो PAI है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, तो इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
1: जी गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहां पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से जो भी बदलाव वहां पर देखा जा रहा है, इससे वहां के जो लोग हैं सभी लोग उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
2: उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है, पंचायत की प्रतिनिधि हो हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे सहायता करके हम लोग को पंचायत के उन्नति करते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं।
1: मतलब इस तरह की गतिविधियां जारी रख करके आप समाज सेवा भी कर रहे हैं।
2: हाँ।
1: तो सनकदान जी, और आगे की किस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपने सोच रखा है?
0: हमारा जो अभी पूरा गांव में

0: कई जगह ऐसे हैं जहां पे अभी स्ट्रीट लाइट्स लगे नहीं है, थोड़ा अंदर अंदर के जगह रिमोट एरियाज है वहां पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहां पे हम लोग मीन पालन कर सके लोगों को और जीविका हम लोग निकाल सके उनके लिए। साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गांव के आसपास जितने भी घर हैं उन सब में अभी भी जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेक श्योर करेंगे, बस यही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधियां हैं वो भी इसी तरह जैसे आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहे हैं, वैसे आगे भी करते जाए। हमारे जितने भी गांववासी हैं वो लोग भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे, हम लोग जितना भी जो भी हम लोग कर रहे हैं गांव के लिए ही कर रहे हैं, हमारे राज्य हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इसी भावना को मन में रख के अगर आगे भी वो यही ऐसे ही काम करते जाए तो सबके साथ मिलकर हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
1: सनकदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही थी जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

फिल्म जिगरी दोस्त का ये गीत आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब इस चैनल पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता

दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे, जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती

ने थी। इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरिचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगेई गोमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है इंटरनेशनल योगा डे और इस अवसर पर हमें योगा के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु योगी गुलशन कुमार जी। गुलशन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गुलशन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मुझे लग रहा है इस बार भी बात नहीं हो पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू होगा। फिलहाल गीतों का ये जो सफर है ये जारी रहेगा। लीजिए अगला गीत सुनिए, फिल्म उपकार से महेंद्र कपूर की आवाज में।

फिर कभी जरूर ये कोशिश करेंगे और होगी, जरूर होगी बातचीत। फिलहाल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर वक्त हो चला है समाचारों का, तो आइए जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमरीका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep-water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. Defence Minister Rajnath Singh has said that the tri-commissioning of INS Dunagiri, INS Agra and INS Sanshodhak is going to be a defining moment in India's maritime capability development. In a social media post, the minister said that these state-of-the-art platforms are a testament to the country's robust defence manufacturing ecosystem and its unwavering resolve towards Atmanirbhar Bharat. The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June the 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become the largest community celebration day because of yoga.
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
3: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. Meanwhile, several union ministers, organizations and eminent personalities are participating in yoga sessions across the National Capital Region to celebrate the 12th Annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar participated in a yoga session at Nehru Park in New Delhi. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination will be conducted today. It will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held in the afternoon from 2 to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that 22 lakh students are appearing for the NEET UG re-examination. Talking to media in New Delhi, he urged students to take the exam without fear and wish them the very best. The Education Minister also

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है आज के मेहमान और आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान हैं जिनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे योग के बारे में। आप जानते हैं, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में अगर आपको फिट रहना है और आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए तो आवश्यकता होती है योग की। लेकिन केवल फिटनेस ही नहीं होता है योग, इससे भी बहुत परे बहुत विशाल संसार है योग का। योग है चित्त वृत्ति का निरोध करना और बहुत सारी बातें होंगी योग के बारे में। क्यों महेश जी?
1: जी, आज जो हमारा विषय है भारतीय योग दर्शन और परंपरा। जैसा हम सभी जानते हैं कि योग एक ऐसा विषय है जिसमें भारत की देन संपूर्ण विश्व को रही है। इसी कारण से कुछ विशेष दिवस भी योग पर जो भारत ने दिए वो संपूर्ण विश्व में मनाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं।
0: जी, मैं इंतजार कर रही हूँ।
1: हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर राजेश राज। आप गत 35 वर्षों से भी अधिक एक शिक्षाविद के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में और एक योगाचार्य के रूप में अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं, शिक्षा का कार्य, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। मानव चेतना पर आपका अध्ययन प्रमुख विषयों में रहा है। इसके अलावा योगिक जो विधाएं हैं अलग अलग, उस पर आपके बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी शोध हैं। हॉलिस्टिक हीलिंग में आपने बहुत कार्य किया है। इंडियन माइथोलॉजी और फिलॉसफी में आपका लंबा अनुभव रहा है। तो आज के जो हमारे डॉक्टर राजेश राज हैं, आपका हम रश्मि जी की तरफ से और हमारी तरफ से स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद, आप सब लोगों को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ मैं योग पर वार्ता करूं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखूं जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।
1: डॉक्टर राजेश, आज भारतीय योग दर्शन और परंपरा इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। इस विषय को थोड़ा सा आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो भारतीय योग दर्शन का एक इतिहास है वो रहा है, किस तरह से ये योग हमारी जीवन शैली बना, हमारी परंपरा बना और आज हमारी धरोहर बन चुका है।
2: अगर भारतीय शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब से सृष्टि है तब से योग विद्या है और योग विद्या प्रकृति और पुरुष के संयोग से शुरू होता है और कहीं न कहीं प्रलय तक होता है। तो इसलिए हम यूं कहें कि ये विद्या सतत या सनातन है और हम सबके जीवन में इसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर एक आयाम में हर एक पक्ष में इसका उपयोग होता रहा है। वैदिक ग्रंथों से लेकर उपनिषदिक ग्रंथों में कई बार योग के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन आया है, विशेष रूप से ऋग्वेद और पीछे उपनिषदों में काफी प्रयोग देखे गए हैं। लेकिन इसका विस्तृत वर्णन यदि देखा जाए तो हमें उपनिषदों में मिलता है, विशेष रूप से 20 योग के उपनिषद हैं मानक रूप से, जिसको हम कहते हैं योगोपनिषद, और इसमें योग के बारे में पूरे विस्तार से वर्णन है।
1: जी,
0: ये जानना चाह रहे थे डॉक्टर राजेश कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग विद्या को आप लेकर गए हैं और केवल भारतीय ही नहीं बल्कि जो और, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय परंपरा है उसको मानते हैं, तो विदेशों में किस प्रकार से देखा जाता है योग को? क्योंकि इस प्रकार माना जाता है कि केवल

0: कुछ आसन या कुछ व्यायाम या कुछ पोज समझ आ जाता है, लेकिन हमें समझ में आता है कि योग इससे कहीं परे है, इससे कहीं बड़ा है, इससे कहीं विस्तृत है, जो चेतना है उस तक को छूने की बातें होती हैं। तो ये बड़ा थोड़ा सा रहस्यमय है, इसको स्पष्ट कीजिए हमारे श्रोताओं के लिए।
1: जी रश्मि जी, देखिए योग की कई विधाएं हैं, विदेश तो मैं पीछे आता हूं, भारत में ही अगर आप देखें तो योग की कई परंपराएं हैं और अलग अलग तरीके से हमारे सिविलाइजेशंस उसको अपनाए और प्रयोग किए। जब योग धीरे धीरे भारत से बाहर फैला तो भी वहां की परंपराओं के अनुकूल, वहां के लोकाचार के अनुकूल योग फैलता चला गया। विशेष रूप से जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए और उन्होंने ज्ञान योग पर बोला तो बहुत लोगों की जिज्ञासाएं योग के प्रति बहुत बढ़ गई। उसके बाद एक से एक महानुभाव योगी हमारे देश से बाहर गए, चाहे उस पे योगानंद जी हों या अन्य कोई ऋषि, और उन्होंने योग को एक ज्ञान योग के रूप में ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया। पीछे जब कुवलयानंद के शिष्यों ने एक प्रैक्टिकल योग कि हम योग करके स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं, ये 1940s और 50s का दशक था जिसमें योग एक प्रैक्टिकल अप्रोच कि हम जीवन में इसको कैसे लागू करें, ये ज्ञान योग से उतर के कर्म योग में उतरना शुरू हुआ।
0: यानी साधारण व्यक्ति भी उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकता
1: जी
0: था।
1: जी, और मेडिकल साइंस ने इसको हाथों हाथ लिया। बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो मेडिकल साइंस उस वक्त बहुत उलझन में थी, बहुत पजल्ड थी, पहेलियां बनी हुई थी, योग ने बड़े सरल आसनों और प्राणायाम के अभ्यास से उसको बहुत सहज कर दिया। इस वजह से योग बहुत तेजी से चारों ओर फैलता चला गया। और यही नहीं, जब इसके विशेष रूप से इसका ज्ञान और इसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी जब विदेशों ने जाना देखा तो भारत की कई परंपराओं का स्वागत किया गया वहां पर। भारत से कई बड़े बड़े धार्मिक परंपराएं वहां पे गई, पूरे विदेश में गई। मैं कुछ एक दो अपना अनुभव बताऊंगा।
2: जी जी,
1: जब मैं पहली बार 2008 में मैं यूरोप गया था, उस वक्त वहां पर एक बहुत बड़े योगी वो वहां पर योग करा रहे थे और लोगों को सामान्य रूप से ये मालूम था कि योग का अर्थ जैसा कि आपने बताया कि कुछ आसन कर लेना या कुछ फिजिकल प्रैक्टिस कर लेना, तो उन्हें लगता था कि ये एक फीमेल एक्सरसाइज है। मेल एक्सरसाइज मतलब जिम जिसमें आप बहुत हैवी वर्क करते हो, और योग मतलब एक फीमेल एक्सरसाइज जिसमें ज्वाइंट एक्सरसाइज या सिंपल मूवमेंट्स होते हैं,
0: हल्का फुल्का
1: व्यायाम के रूप में लिया गया। दो दर्जन देशों में मैंने कई बार सेमिनार लिया और बताने की कोशिश की। मेरे पीछे बहुत सारे स्कॉलर्स आए और ये बताने की कोशिश की कि नहीं, आप इसको एक फीमेल एक्सरसाइज ना लो, बल्कि इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो सकता है यदि इसको प्रॉपरली किया जाए। मतलब योग आपको सब कुछ दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, ये आपको अगर आप बॉडी बिल्डर होना चाहते हैं वो भी सुविधाएं हैं, और अगर यदि आप जीवन में कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आपस में रिलेशनशिप इम्बैलेंस है, ऐसी कई अनेकानेक चीज इसमें कि योग आता ही चला गया। अगर हम हेल्थ का डेफिनेशन WHO की तरफ से माने तो हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो और स्पिरिचुअल हेल्थ हो, इन पांचों एरिया को योग टच करता है। और मुझे ऐसा कोई विधा आज तक नहीं पता जो इन पांचों एरिया को टच करता हो। योग पांचों एरिया को स्पर्श करता है, इसलिए योग हमको लगता है कि पिछले 50 सालों में पूरे विश्व पे छा गया।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आपने बताया कि जो योग है वो न केवल तन पर कार्य करता है बल्कि मन और आत्मा पर भी कार्य करता है। एक समग्र स्वास्थ्य की बात जो WHO की परिभाषा भी है उसको सही मायने में योग ही, जिसे कहते हैं, जस्टिफाई करता है। आपने अभी शास्त्रों की बात की, बहुत सारे उपनिषदों की बात की, लगभग 20 से ज्यादा उपनिषदों में योग का वर्णन आता है। महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, योग दर्शन है, उसकी विशेष चर्चा आज के समय में होती है। किस तरह से आज के समय में ये जो महर्षि पतंजलि का जो कार्य था वो आज मानव समाज के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: महर्षि पतंजलि ने योग विद्या को संकलित किया। बहुत लोग कुछ गलत परिभाषा करते हैं कि ही वॉज द फाउंडर, वो फाउंडर नहीं थे, उन्होंने संकलन किया
2: जी,
1: कंपाइल किया, और अलग अलग परंपराओं से उन्होंने योग के ज्ञान को और उनको सूत्रों में बना करके हमारे सामने बहुत वैज्ञानिक, बहुत मैथमेटिकली उन्होंने सामने रखा। जब मैं बहुत वैज्ञानिक और मैथमेटिकली कह रहा हूं तो उसके पीछे तर्क है। एक तो सारे के सारे

0: सूत्र अपने आप में ऐसे फार्मूली हैं जो कि आपके जीवन में बहुत गहरे तक असर डालता है, इसलिए वो फार्मूली है। और गणित इसलिए है कि वो इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड है कि आप एक भी सूत्र को आगे पीछे नहीं कर सकते
1: जी,
0: या हटा नहीं सकते, वो फिक्स है। 196 सूत्र है और हर एक सूत्र जैसे मानो कि एक मैथमेटिक्स का विद्यार्थी एक के बाद एक सूत्र पढ़ता जाता है और उससे बड़ा गहरा, वैसे ही उस तरह से सूत्रबद्ध है वो।
2: इसका कुछ उदाहरण अगर देंगे डॉक्टर?
0: बिल्कुल मैं दूंगा। जैसे मैं शुरुआत से ही कहता हूं कि पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब यहां पर जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि योग एक ऐसा अनुशासन है जो पूर्ववत, जो पहले से चला आ रहा है। अनुशब्द का होता है जो पहले से शासित हो, जो पहले से शासित हो वो ऐसा अनुशासन। सामान्य रूप से आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये किस प्रकार का अनुशासन है, अगर कोई अनुशासन है तो किस प्रकार का है। अगला है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये चित्त के वृत्ति के निरोध करने का अनुशासन है। आपके मन में सामान्य सवाल उठेगा कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आप सवाल पूछे नहीं कि अगला उत्तर उसी सीरीज में आपको मिलेगा, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, तब जो है दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और अगर अवस्थित नहीं हुआ तो क्या होगा, सवाल तुरंत उठता है आपके मन में। तो उसके बाद उत्तर भी उसी प्रकार से आप देखेंगे आगे, वो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वृत्ति के जैसा वो हो जाएगा, आपकी चेतना जो है वृत्ति जैसी हो जाएगी।
2: ये
0: तो
2: बहुत ही रोचक लग रहा है और मन कर रहा है कि इस पुस्तक को मुझे लगता है श्रोता जरूर ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, अपनाएंगे। वाकई बड़ा रोचक लग रहा है कि एक के बाद एक सूत्र निकलकर, और ये बहुत ऐसे सूत्र हैं जो कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के हमेशा से रहे हैं, सिर्फ हम एक बार ही उनको रिविजिट कर रहे हैं, उनको दोबारा जान रहे हैं जी।
0: इसलिए मैं सभी से एक बार तो अनुरोध जरूर करूंगा कि एक बार इस पुस्तक को सामान्य रूप से पढ़ें, आपको इतना मजा आएगा आप रुक नहीं सकते। एक के बाद आपके मन में जो प्रश्न आता जाएगा उसका उत्तर आपको अगले में मिलता जाएगा। और सरल भाषा में सारी बातें उन्होंने जिंदगी की एक से अंत तक A to Z उस बुक में आपको मिल जाएगा
1: जी।
0: और मैं यहीं से मानवीय चेतना की बात, जो चित्त शब्द है उसका अर्थ है यहाँ पे चेतना, मानवीय चेतना, उसमें वृत्तियां होती है और उसका निरोध किया जाता है। ये पहले ही दूसरे ही सूत्र से प्रारंभ हो गया ये बात कि हमारे मन की वृत्तियों का निरोध करना, ये पतंजलि साहब इसको योग मानते हैं। तो फिर आप पूछ सकते हो कि भाई ये आसन फिर क्या है, फिर आप आसन क्यों करा रहे हो? अगर ये मन के वृत्तियों को ही रोक रहा है तो आसन क्यों करा रहे हो, प्राणायाम क्यों करा रहे हो? देखो हमारे जितने भी आसन है, चाहे वो आगे झुक के आसन करना हो, पीछे बेंट होके करना हो, लेटरल बेंड होके करना हो, ट्विस्ट करके करना हो, सर नीचे इन्वर्टेड करना हो, ये जितने भी पोस्चर है, ये कहीं ना कहीं आपके वृत्तियों को अवरोध करता है या वृत्तियों को रोकता है। अब देखिए मैं कैसे इसका उत्तर आपको मजेदार ढंग से बताऊंगा।
2: हाँ, बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल हम समझेंगे तो
0: ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग जो थोड़े इगोइस्टिक होते हैं या थोड़ा उनमें अभिमान या दंभ या घमंड रहता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखो, वो थोड़ा ऐसे उचक करके थोड़े कंधे को हल्का सा उचका के चलेंगे, वो उनका बॉडी लैंग्वेज है। अगर हम उनको कहें कि आप आगे झुक के जैसे पश्चिमोत्तान आसन करें तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं आप पीछे झुकने वाला करा दो, आगे झुकने वाला तो बहुत कठिन है। आप समझ रहे हैं? देखिए हमारा जो व्यवहार होता है, पर्सनालिटी, वो हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी लैंग्वेज पे झलकता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई बहुत धब्बू किस्म का इंसान है तो थोड़ा झुक के चलेगा, उसकी जो कंधे हैं वो 45 डिग्री का कोण बनाएगी ठुड्डी से, वो थोड़ा झुक के रहता है वो। अगर उसको कह दे पीछे बेंट होकर के करिए तो उनको दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि आसन आपके बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करती है, और जब आपका बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होता है तो उससे जुड़ी हुई जो आपकी मानसिक आदतें हैं, जो आपका स्वभाव है, उस पर उसका सीधा सीधा असर हो जाता है।
2: यहाँ पर एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है महेश जी मेरे भी कि ये तो आपने आसनों की बात करी, पर जो प्राणायाम है वो किस तरह से जोड़ता है, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में भी हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं।
0: देखो श्वास जो है ना, ये मन और शरीर का है, ब्रिज है, यानी आप जैसा सोचते हो वैसा ही श्वास रिफ्लेक्ट करता है। यानी आप यदि बहुत क्रोधित हैं तो श्वास अलग तरीके से चलेगा, अगर आप बहुत शांत हैं, प्रेमपूर्ण हैं, तो अलग तरीके से श्वास रिफ्लेक्ट होगा। इस विद्या को योग में स्वर विद्या कहते हैं या स्वर योग कहते हैं। ऐसे जो विद्यार्थी या विद्वान लोग हैं वो नाक से किस प्रकार से श्वास आ जा रहा है उस पर वो गणित करते हैं कि दाएं नासिका से चल रहा है ज्यादा श्वास या वाम नासिका से चल रहा है या दोनों से चल रहा है, तो उसको वो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। मानो अगर आपका बायां ज्यादा स्ट्रांगली फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी मानसिक शक्तियां प्रबल है, आप ज्यादा अच्छा चित्र बना सकते हो, अच्छी वक्तव्य दे सकते हो, संगीत गा सकते हो, कोई भी कला वो ज्यादा अच्छा कर सकते हो। वहीं अगर आपका राइट नोस्ट्रिल बहुत डोमिनेंट है तो आप मेहनत काम जैसे प्ले है, दौड़ना है, भागना है, जिसमें मस्कुलर एनर्जी है, वो आप ज्यादा कर सकते हो। अगर दोनों बराबर चल रहा है जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग श्वास को जान पाए, और यही नहीं जो स्वर विज्ञानी है वो नाक किस कोण से हवा बाहर निकलता है उन्होंने इतना वर्क किया, इतना मेहनत किया, उन्होंने बताया कि श्वास जो है नाक से 5 कोणों में बाहर निकलता है और उससे ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व आपके इस वक्त शरीर में हावी है। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको नियंत्रित करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव है या इस प्रकार का कोई डिप्रेशन है, सप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नाना प्रकार की स्ट्रेस जनक बीमारियां हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो धीरे से हम इन पर नियंत्रण करते जाते हैं। और यही नहीं, हम शरीर, क्योंकि ये शरीर और मन का ब्रिज है, इसीलिए इसको पकड़ने से हम दोनों तरफ को बैलेंस कर लेते हैं, शरीर को मन से बैलेंस कर लेते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन में, हम लोग सोचते कुछ हैं वो कर नहीं पाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी संकल्प शक्ति कमजोर होती है, लेकिन ये प्राणायाम करके आप अपने अंदर और बाहर दोनों को बैलेंस कर लेते हैं।
1: श्वास की बात आपने की, योग से और प्राणायाम से शरीर को और मन को कैसे संतुलित किया जाए, इसके बारे में आपने बहुत रोचक तरीके से ये बातें बताई। डॉक्टर राजेश, होलिस्टिक हीलिंग की एक बात आती है, मतलब योग और प्राणायाम का अगर हम आज के समय में स्वास्थ्य से जोड़ के देखें तो हीलिंग एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य स्वस्थ करने की दिशा में लेके जाता है। होलिस्टिक हीलिंग में आपका काफी कार्य रहा है। सबसे पहले आपसे ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि होलिस्टिक हीलिंग की अवधारणा क्या है, क्या योग अपने आप में परिपूर्ण है एक मानव शरीर को स्वस्थ करने के लिए, या प्राणायाम की भी आवश्यकता रहती है, क्या ध्यान की भी आवश्यकता रहती है? तो ये होलिस्टिक हीलिंग किसे कहते हैं, किस तरह की अवधारणा है, और योग से हम किस तरह से इस दिशा में जा सकते हैं?
0: देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक जो गहरी अवधारणा है योग की, कि योग ये नहीं मानता है कि शरीर रोग का जनक है, यानी शरीर रोग का कारण नहीं है। योग विज्ञान ये मानता है कि रोग का कारण हमारा मन है।
2: अच्छा,
0: हाँ। अब देखिए, एक शब्द है व्याधि, व्याधि का मतलब होता है वी प्लस आधि, आधि का मतलब होता है कॉन्शियसनेस या इंटेलेक्ट। जब इंटेलेक्ट या कॉन्शियसनेस आपका विकृत होता है तो उसको व्याधि कहा जाता है, और यदि वो सम्यक होता है तो उसको समाधि कहते हैं। तो जो हमारा चेतना है वो दो रूपों में होता है, या तो समाधि में या तो व्याधि में। तो चलिए, समाधि तो बहुत ऊंची बात है, हम व्याधि की बात करते हैं।
1: आज के समय में व्याधि ज्यादा देखने में आती है
0: जी। तो क्या होता है कि जब हम इसको प्रज्ञा अपराध भी शब्द देते हैं, जब ऐसी कोई क्रिया करते हैं जो हमारे मनोमय कोश को कमजोर करती है, तो उसके प्रतिस्वरूप हमारा प्राण कमजोर पड़ जाता है और बीमारी हमारे प्राणों में फैल जाती है। ये बात यहां मैं नोटिस फिर से करूंगा कि बीमारी सदैव प्राण को होती है, जड़ उसका मन होता है, और उसके रिजल्ट, उसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं शरीर पे। इसीलिए होलिस्टिक हीलिंग टर्म आया। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, यानी सरल भाषा में कहें तो शरीर, प्राण और मन, ये तीनों पर कार्य करता है। जहां हम आसन करके अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, वहीं प्राणायाम करके हम प्राणों को स्वस्थ करते हैं, और ध्यान करके हम मानसिक विकृतियों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से ये होलिस्टिक हीलिंग एक समग्र चिकित्सा हुआ, जिसमें कि हम चारों ओर से रोग को पकड़ रहे हैं और मूलतः रोग की बीमारी जो मन में है उससे दूर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दूंगा, एक साउथ इंडियन राइटर है
2: जी।
0: उन्होंने 5 वॉल्यूम में किताब लिखा कि दुनिया के हर प्रकार के रोग साइकोसोमेटिक हैं। जबकि विज्ञान ये मानता है कि कुछ एक रोग साइकोसोमेटिक है, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया के हर एक प्रकार के रोग साइकोसोमेटिक है। उन्होंने अपनी बुक में ये बताया कि आपके कौन कौन से व्यवहार या मानसिक विचार किस किस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। जैसे आप किस तरह के विचार रखते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर हुआ, आप किस तरह के बिहेवियर रखते हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हुआ, या जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उन्होंने उसको किस प्रकार के विचार धारणा या किस प्रकार की बिहेवियर आपकी है, आदतें हैं, उस पे वो आधारित है। और योग विज्ञान इसको सत्य मानता है। अगर हम जड़ से

0: अपने विचार धारणाओं में बदलाव लाए तो हम अमुक अमुक रोग से बच सकते हैं।
1: मुझे लगता है यही कारण है कि भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को और योग और आयुर्वेद को एक पुल बनाने का, सेतु बनाने का कार्य कर रहे हैं।
0: इंटीग्रेटेड मेडिसिन की जो हम बात करते हैं,
1: कि हम अपनी जो भारतीय संस्कृति से दी हुई प्राचीन जो ज्ञान है उसको लेकर चलें और आधुनिक जो विज्ञान है उसको भी जोड़े चलें ताकि समस्त मानव जाति का कल्याण हो। आपकी जो बातें हैं ये बिल्कुल ऐसी लग रही हैं कि एक थोड़ा सा अनसुनी भी है, थोड़ी जान पहचानी भी है, एक जादू जैसी बातें लग रही हैं कि वाकई हमारा मन से ही सारी व्याधियां अगर उत्पन्न होती हैं तो बहुत जरूरत है मन को जानने की। और एफएम गोल्ड में हम श्रोताओं के मन को जानते, उन्हें गीत संगीत सुनवाते चलते हैं। तो मैं चाहूंगी हम इस समय कुमार गंधर्व का ये भजन सुन ले, निर्भय निर्गुण।

0: व्याधि की और समाधि की डॉक्टर राजेश आपने बात की। व्याधियों पर हम सभी जानते हैं बीमारियां रहती हैं, अलग अलग तरह से उपचार है, भारतीय दर्शन में भी योग है, प्राणायाम है, ध्यान। समाधि का जब हम जिक्र करते हैं तो क्या ये जो स्थिति है ये एक आम व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? किस तरह की यात्रा रहती है, किस तरह के व्यवधान है, किस तरह की बातें उसे अपने जीवन में उतारनी चाहिए जिससे ये जो स्थिति है समाधि की वो भी अपने जीवन में प्राप्त कर सके?
1: देखिए, समाधि की बात तो मनुष्यों के लिए की गई है, मानवीय चेतना के लिए की गई है
0: जी,
1: निश्चित रूप से देवी देवताओं के लिए नहीं कही गई है। इसलिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तड़पते हैं
2: जी,
1: क्योंकि वो उस स्टेट में समाधि को नहीं पा सकते, इसीलिए ये मनुष्यों के लिए ही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम इसको कैसे समझे, सम का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, भली भांति जो प्रॉपर हो उसको हम लोग समवट, तो समाधि का मतलब सम्यक आधि इति समाधि, मतलब जब आपका इंटेलेक्ट, यहाँ पे इंटेलेक्ट वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ चेतना के लिए, ये शब्द चेतना का कॉन्शियसनेस और इंटेलेक्ट के बीच में आता है। देखो दरअसल बात क्या है ना कि इंग्लिश बहुत सारे शब्दों का ठीक ठीक ट्रांसलेशन नहीं है, ना प्राण का मुझे आज तक ठीक ठीक ट्रांसलेशन मिला, ना चेतना का ठीक ठीक ट्रांसलेशन मिला। चेतना का कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी 12 डेफिनेशन दिए हुए हैं कॉन्शियसनेस के, जो एक भी हमारी चेतना से मैच नहीं खाता है। दरअसल इन भाषाओं में हमारे शब्द नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये इंटेलेक्ट और कॉन्शियसनेस के बीच का मैटर है कोई। तो ये जो चेतना है हमारे अंदर जो हम सब में व्याप्त है, इसको अगर हम भली भांति समझ पाते हैं या भली भांति हमारा बोध इसके प्रति जग पाता है, ये बोध शब्द भी पकड़ना, हम ये कह सकते हैं कई बार हम बेहोश होते हैं, अनकंसियस में, सब कंसियस स्टेट में होते हैं, कई बार हमारी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से पुष्पित नहीं होता है और इस वजह से कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें होती है और हम अपने पूर्णत्व को नहीं महसूस कर पाते हैं। और जब कोशिश, हमारे जितने भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं वो चाहे वो भक्ति मार्गी हो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे और अन्य प्रकार के मार्ग हो, वो हमें कोशिश करते हैं कि हम अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जान पाए, समझ पाए। इसके लिए अनेकानेक प्रयास है, कभी हम मंत्रों का सहारा लेते हैं, कभी तंत्र में देवी देवताओं का सहारा लेते हैं, कभी सजगता और धारणा के अभ्यास से कई बार हम अपने चेतना के गहरे उतर के हम चेतना को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। पर ये भारत में इतना रिच है इस मामले में कि सभी प्रकार के अवधारणाएं जितनी संभावित हो सकती है वो सब भारत में खोजे गए हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, रुद्रयामल तंत्र में एक बड़ा सुंदर बात भगवान शिव के द्वारा कही गई है। वो कहते हैं कि 125 करोड़ प्रकार का मेथड्स है, धारणाएं हैं अपने चेतना को पूर्ण रूप से जानने के लिए। अब आप कल्पना करें 125 करोड़ मेथड्स हैं, एक दो नहीं अब इतने सारे मेथड्स हैं। और हमारे इसीलिए कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि देखो परमात्मा अनंत है तो परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते भी अनंत होने चाहिए।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो ये सारे जो रास्ते हैं ये जब परमात्मा तक पहुंचने के ही है, आप यूं समझें योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है या अपनी चेतना को पूर्ण रूप में, जिसको आप कह सकते हैं कि हम अपने पूर्णत्व को महसूस कर पाते हैं, उसी को दूसरे शब्दों में परमात्मा बोल लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए। मूल बात यह है कि जब आप अपनी चेतना को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, और उसकी 125 करोड़ विधियां हैं आप कोई भी विधि पकड़े और आप पूर्णत्व को प्राप्त करें
0: जी, मार्ग उसी तरफ जाता है
2: जी। हाँ, और मुझे लगता है ये जो जीवन मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीय योग दर्शन में ही है।

0: मुझे लगता है विश्व में कहीं भी जीवन मुक्ति का सिद्धांत है, या तो जीवन है या मृत्यु है, इसके बाद खत्म है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, उसमें मुक्ति भी एक अलग प्रकार का सिद्धांत है और एक विशेष ही सिद्धांत है। तो क्योंकि भारतीय दर्शन तो पूरे विश्व के लिए एक एक बहुत बड़ी देन है।
1: जी तो डॉक्टर राजेश, हम बात कर रहे हैं आज योग पे, योग से जुड़ी अलग अलग विधाओं पे, इसका जो प्रासंगिकता आज के समय में है, इन सब विषयों पे। योग की जब हम बात करते हैं तो इन योगासनों के अलावा, प्राणायामों के अलावा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, यानी गीता में जो योग दर्शन है उसकी बात भी आती है। भारत में, बल्कि यूं कहें कि पूरे विश्व में गीता की जो बातें हैं उसका प्रसार है। इस पर हम आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो गीता में योग दर्शन है इस पे आप किस तरह के विचार रखते हैं।
2: देखो, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत में जितने भी सनातनी परंपरा है वो उसको जोड़ देता है। कोई भी ऐसी परंपरा भारत में नहीं है जो ये कहे कि गीता अधूरा है या गीता उनको मैच नहीं करता है, जोड़ता नहीं है। गीता में सभी प्रकार के प्रश्न अर्जुन से पूछवाए गए हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। और जो सबसे पहला ही एरिया है जहाँ पे अर्जुन अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा है, उसके अंदर में मोह इतना व्याप्त है कि वो उसके गांडीव, उस धनुष उनका हाथ से छूटता जा रहा है और वो कह रहे हैं कि अब वो डिप्रेशन में आ चुके हैं और अब वो युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। और वहां से भगवान श्री कृष्ण ने जो पहला वक्तव्य दिया गीता में, वो ज्ञान योग के विषय में दिया। और ज्ञान योग सबसे दुर्लभ और यूं कहें कि सबसे उच्च स्तरीय योग है जिसमें हम परमात्मा को समझ या जान अपने अनुभवों के आधार पे पाते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान योग को बताते हुए, कि अगर हम आत्मा की सत्ता को जान लेते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि एक अविनाशी सत्ता हमारे भीतर है जिसको न जलाया जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना उसका नाश हो सकता है, वो सदैव है और सनातन है। वास्तव में भारत के धर्म को सनातन धर्म इसीलिए कहा गया क्योंकि हम उस आत्मसत्ता को मानते हैं जो सनातन है।
1: जी
2: इसीलिए हमें सनातन धर्म कहा जाता है इस धर्म को, क्योंकि हम आत्मसत्ता को स्वीकार करते हैं जो सदैव से है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता, बल्कि आत्मा ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो देह या शरीर धारण करते हुए हम सबके समक्ष मौजूद होता है। तो ज्ञान योग के विषय में जब अर्जुन को बताया गया तो उद्देश्य ये था कि अर्जुन के अंदर में जो मोह रूपी अंधकार है कि मैं किसी को मारूंगा या मेरे द्वारा कोई मारा जाएगा या कोई मारा ही जाएगा, इस बात को हटाते हुए भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि न कोई मरता है न मारा जाता है, या न तुम क्यों कर्तापन का भाव करते हो, ये सब कुछ जो है वो प्रकृति प्रदत्त है। इस प्रकार से अनेकों अनेक तरीके से उन्होंने ज्ञान को सामने रख करके या हम लोगों को सीखने के लिए एक रास्ता छोड़ा कि यदि हम आत्मा को जान लें तो हम परमात्मा को जान लेते हैं, स्वयं को जान लेते हैं और इस सृष्टि के सत्य को जान लेते हैं। आत्मा को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, ये पहली बात थी। लेकिन यहां पर अर्जुन, गीता में आप जाएंगे तीसरे अध्याय में, तो अर्जुन कुछ संतुष्ट नहीं है, या यूं कहें कि और भी प्रश्न ऐसे हैं जो उस वक्त अर्जुन श्री कृष्ण से जानना चाह रहे हैं, और यही द्वार खोलता है आपके कर्म योग का और आगे भक्ति योग का। क्योंकि वो उनका प्रश्न ही ऐसा था कि अगर ज्ञान योगी सब कुछ है तो मुझे ऐसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो, मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो हमारे जीवन में भी संघर्ष ही है, युद्ध ही है, लेकिन वहां पर श्री कृष्ण की बातों को अगर हम समझेंगे तो हम अपने जीवन के कर्म को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरती की बात है। इसको बताते हुए भगवान कहते हैं कि देखो, हमें अगर फल की इच्छा छोड़ दो और सिर्फ कर्तव्य कर्म को करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आप कर्म योग में प्रवेश करते हो, तब आपको वही ज्ञान प्राप्त होता है जो ज्ञान योग आत्मा को जानने से प्राप्त होता है।
1: जी
2: इसीलिए भारत में कर्मठता, कर्तव्य बोध या समत्व का बहुत विकास हुआ और हर प्रकार के संप्रदाय में, जीवन में, सिविलाइजेशन में इस बात को मूल रूप से रखा गया कि पति के क्या कर्तव्य है, पत्नी के क्या कर्तव्य है, बच्चों के क्या कर्तव्य है। ये सब कर्तव्य बोध इसलिए है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को भी पूर्ण करते रहें तो भी हम समाधि की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
1: जी, मार्ग बहुत से हैं रश्मि जी, जो भारतीय दर्शन की जब हम बात करते हैं तो योग के अनेकानेक मार्ग हैं, 125 करोड़ मार्ग आपने शास्त्रोक्त बताए, इसके अलावा भी जो योग दर्शन है हमारा, जो गीता में जिस योग की बात करते हैं, इन सबको मिला के बात

0: यही निकल के आती है कि योग जो है वो तन मन और उससे ऊपर आत्मा के एक उद्विकास का एक निरंतर क्रम है, चेतना के उत्थान का क्रम है जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि ये केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि ये तो हम कहेंगे एक आध्यात्मिक तकनीक है जिसके जरिए हम अपने मन और मस्तिष्क तक को समझ सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और मुझे लगता है आज जो भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे वो एक बारी नए सिरे से योग को जानेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे। और जो महर्षि पतंजलि की जो किताब है मैं तो उसको जरूर खरीद कर पढ़ने वाली हूँ, हालांकि मेरे पास एक प्रति मौजूद है घर में, दोबारा उसको फिर एक नई दृष्टिकोण के साथ पढ़ूंगी। योग बने जुड़ना, और आज हम जुड़े नई विचारधाराओं से, पुरानी बातें थी लेकिन फिर एक नए कलेवर नए दृष्टिकोण से उनको देखा।

0: तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर राजेश राज। एक योगाचार्य के रूप में आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है। जो बातें आपने अनुभव से आपने बताई, आपने जो एक नया दृष्टिकोण एक योग के लिहाज से हमारे श्रोताओं के लिए उपलब्ध करवाया, आकाशवाणी FM गोल्ड की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
1: धन्यवाद।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today, India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है नई क्षमता तैयार कर रहा है नई कनेक्टिविटी बना रहा है नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है
3: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace.
1: 2014 tak desh ka kul defense production 40,000 crore rupiye ke aas paas tha aaj yeh badhkar lagbhag 1,80,000 crore rupiye tak pahunch gaya hai और साथियों एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है
3: Defense Minister Rajnath Singh also said that the tri-commissioning of the three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the

12:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी, और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं, बेहद ही सफल फिल्म रही है, अपने जमाने की सुपर टूपर हिट फिल्म मानी जाती है। 1964 में बनी एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है जिसका नाम है संगम। इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर राज कपूर साहब, आरके स्टूडियोज के बैनर तले ये फिल्म बनी। पटकथा लिखी इंदर राज आनंद ने, और इसमें राज कपूर, वैजंतीमाला, राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिकाओं में रहे। साथ में थे इफ्तिकार, राज मेहरा, नाना पलसिकर, ललिता पवार, अचला सचदेव और हरी शिव दासानी। राधु कर्माकर ने इसका किया सिनेमाटोग्राफी का पक्षभार, कैमरा पक्षभार, और एडिटर खुद रहे राज कपूर। यादगार संगीत शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। राज कपूर ने किरदार निभाया इस फिल्म में लेफ्टिनेंट सुंदर खन्ना का। वैजंतीमाला बनी राधा, राजेंद्र कुमार थे गोपाल वर्मा के किरदार में, इफ्तिकार भारतीय वायुसेना के अधिकारी के रूप में थे, राज मेहरा जज मेहरा के रूप में थे, नाना पलसिकर ने नथू का किरदार निभाया, ललिता पवार थी श्रीमती वर्मा के किरदार में, और राधा के पिता के रूप में थे हरी शिव दसानी, और राधा की मां के किरदार में अचला सचदेव। कहानी शुरू होती है तीन मासूम बच्चों के मासूम जीवन से, सुंदर, राधा, गोपाल। बचपन के तीन बेहद गहरे दोस्त, मानो तीन जिस्म एक जान, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और बचपन से ही सुंदर का राधा के प्रति एक जुनूनी प्रेम रहा, लेकिन राधा गोपाल की तरफ आकर्षित रही, वो गोपाल को पसंद करती थी। खैर, ये बचपन की जो लड़कपन वाली बातें हैं, वो धीरे धीरे करते हुए जब जवानी की दहलीज पर तीनों दोस्त पहुंचते हैं तो गोपाल चला जाता है आगे की वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश, और पीछे सुंदर, जो बिल्कुल ही मस्त, जिसे कह सकते हैं मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो राधा को कोई भी मौका नहीं गवाता उसको अपने दिल की बात कहने के लिए, और चाहता है कि राधा उसके दिल की बात समझ जाए और उसकी ओर वो भी खींची चली आए। लेकिन राधा है कि वो तो अपना दिल दे बैठी है गोपाल को, और वो सुंदर की हर बात को

एक बार को तो राधा जो है वो सुंदर की इन अटकेलियों को, इन मजाक को नजरअंदाज कर देती है। वो सोचती है कि केवल सुंदर अपनी आदत की वजह से ही उसके साथ ये मजाक करता है, उसे परेशान करता है, उसे तंग करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि सुंदर किस कदर टूटकर उससे प्यार करता है, मानो राधा की वो इबादत करता है। सुंदर के अनुसार इस दुनिया में केवल दो ही चीजों पर उसका जीवन टिका है, एक है गोपाल की दोस्ती और दूसरा है राधा का प्यार। अगर इनमें से एक भी उसकी जिंदगी से निकल जाए तो उसकी जिंदगी बेमानी हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी।

इसी बीच खबर आती है कि वकालत की पढ़ाई पूरी कर बैरिस्टर बनकर वापस आ रहा है गोपाल अपने देश। सभी खुशी से झूम से उठते हैं और सबसे ज्यादा खुशी होती है राधा को। उसको तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। जिस पल का वो सालों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी आखिर वो पल आ ही गया। उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं लेकिन सुंदर नहीं जाता। सुंदर अपने अंदाज में अपने यार के इस्तकबाल के लिए उसके स्वागत की तैयारियां कर रहा है। गोपाल आता है, सबसे मिलता है और उसके आने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है। और उससे पहले सुंदर अपने मन की बात बता देता है गोपाल को कि मेरे जीवन में राधा से बढ़कर और कोई नहीं है। एक तुम्हारी दोस्ती और राधा का प्यार, यही मुझे दो चाहिए और इसमें तुम मेरी मदद करो। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ तुम ही हो और राधा को मिलाने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। उस पार्टी में हर कोई अपने दिल की बात कहता है, गोपाल भी कहता है, सुंदर भी और राधा भी। राधा को यह है कि आज वो इस पार्टी के माध्यम से अपने दिल की बात गोपाल को बता देगी और सुंदर ये सोचता है कि गोपाल उसके दिल की बात राधा तक पहुंचा देगा। लेकिन वो दोनों ये कतई नहीं जानते कि गोपाल के दिल में क्या तूफान समझा है।

गोपाल ने सोच लिया है कि वो अपने दोस्त के लिए अपने प्यार का बलिदान दे देगा, भूल जाएगा राधा को और राधा को भी अपने जीवन से निकाल देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। राधा जो बचपन से ही अपने मन मंदिर में गोपाल की मूरत बिठा चुकी है, वो भला इतनी आसानी से कैसे मानेगी। और उधर सुंदर रोजाना राधा से मिलने का कोई ना कोई बहाना खोजता है, लेकिन राधा उससे दूर रहती है। अब सुंदर गोपाल से कहता है कि किसी तरह से राधा से उसकी मुलाकात करा दो ताकि मैं अपने मन की बात उसे कह सकूं। अभी तक उसे लगता था कि मैं मजाक में उसके साथ हर बात कहता हूं, लिहाजा गोपाल उसकी मदद करने के लिए राधा को फोन करता है, पत्र लिखता है कि हम सभी दोस्तों ने बोटिंग का प्रोग्राम बनाया है, तुम भी आओ। गोपाल के कहने पर राधा दौड़ी चली आती है, लेकिन दरअसल वो प्लान बना था, वो प्रोग्राम बना था सुंदर के लिए। सुंदर की बोट में राधा को बिठाकर किसी बहाने से गोपाल वहां से अलग हो जाता है। वो चाहता है कि आज सुंदर अपने मन की बात राधा को बता दे। राधा इस बात से नाराज भी होती है, खफा भी होती है कि क्यों गोपाल ने अकेला बोटिंग में करने के लिए उसे

के लिए। सुंदर की बोट में राधा को बिठाकर किसी बहाने से गोपाल वहां से अलग हो जाता है। वो चाहता है कि आज सुंदर अपने मन की बात राधा को बता दे। राधा इस बात से नाराज भी होती है, खफा भी होती है कि क्यों गोपाल ने अकेला बोटिंग में करने के लिए उसे सुंदर के साथ भेज दिया। अब वो क्या जाने, सुंदर अपने प्यार का बलिदान देना चाहता है ताकि गोपाल का दोस्त सुंदर

के लिए। सुंदर की बोट में राधा को बिठाकर किसी बहाने से गोपाल वहां से अलग हो जाता है। वो चाहता है कि आज सुंदर अपने मन की बात राधा को बता दे। राधा इस बात से नाराज भी होती है, खफा भी होती है कि क्यों गोपाल ने अकेला बोटिंग में करने के लिए उसे सुंदर के साथ भेज दिया। अब वो क्या जाने, सुंदर अपने प्यार का बलिदान देना चाहता है ताकि गोपाल का दोस्त सुंदर अपनी तमाम जिंदगी की खुशियों को हासिल कर सके। गोपाल का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है।

सुंदर की इन बातों को राधा फिर से एक बार नजरअंदाज करती है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके जीवन में आने वाले जीवन में क्या तूफान आने वाला है। उधर राधा के घर वाले पूरी तैयारियां कर रहे हैं राधा और गोपाल के ब्याह की, और इधर राधा अनजान है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। क्या होगा बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स, उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क, डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आती है कि सुंदर जिंदा है, सुंदर वापस आ गया है। एक तरफ दोस्त के जिंदा होने की खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्त से किया हुआ वादा वो याद आता है। एक बार फिर सुंदर के आने के बाद गोपाल उसके रास्ते से हट जाता है और राधा को बताता है कि क्यों वो अपने प्यार का बलिदान दे रहा है। तब राधा कहती है, मैं हरगिज इस बात को नहीं मान सकती। तब गोपाल अपनी कसम देता है कि मेरा दोस्त मर जाएगा तुम्हारे बिना। और राधा के माता पिता भी खुशी खुशी सुंदर को अपना लेते हैं, क्योंकि अब वो एक फौज में बड़ा अफसर बन चुका है, परमवीर चक्र विजेता है। राधा अपने अरमानों पर पत्थर रख लेती है और सुंदर के साथ विवाह कर लेती है। शादी के बाद सुंदर की ट्रांसफर भी सरकारी तौर पर लंदन की जाती है, यानी एक पद दो काज। नौकरी की नौकरी सुंदर सोचता है और साथ में हनीमून भी। राधा भी सब कुछ भुलाकर, अपना अतीत भुलाकर केवल सुंदर की हो गई है और सुंदर को अपना देवता मानती है और उसके घर को ही अपना घर संसार। बेहद दोनों खुश हैं, लंदन की गलियों में घूम रहे हैं, गा रहे हैं और आने वाले मुस्तकबिल के सुंदर हसीन सपने बुन रहे हैं। कभी कभार छेड़छाड़ में राधा कोई कसर नहीं छोड़ती सुंदर को सताने की भी।

अल बताता है कि वो खत मैंने लिखा। सुनने के बाद सुंदर तो मानो जैसे पहाड़ की चोटी से खाई में गिर गया। उसे कानों पर विश्वास नहीं होता। तब गोपाल बताता है कि वो किस कदर सच्चा प्यार करता था राधा से, लेकिन उसके प्यार के लिए, दोस्ती के लिए उसने अपने प्यार का बलिदान दिया। तब सुंदर कहता है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और उसे वो वाक्य

चाहकर भी सुंदर के मन से शक का जहर गोपाल नहीं निकाल पा रहा। सुंदर एक तरफ कहता है कि अगर तुम राधा से इतना प्यार करते थे तो मुझे कहा होता, मैं कभी तुम्हारे रास्ते ना आता। और उधर गोपाल कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्ती की खातिर ही अपने प्यार का बलिदान दिया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं ऐसा करता। इसी बीच राधा बिफर कर रोकर चिल्ला कर कहती है कि तुम दोनों ने मुझे समझा क्या है, एक अपनी दोस्ती के प्यार की खातिर बलिदान करता है अपने प्यार को तो दूसरा उस बलिदान का मोल नहीं आंकता। आखिर में नुकसान में तो मैं ही रही, जिसे प्यार किया उसे पा न सकी, जिस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, मन मंदिर का देवता माना, वो मुझे नहीं समझ पाया। रोती है फूट फूट कर। अब गोपाल देखता है कि ये शक का जहर सुंदर और राधा का बसा बसाया घर उजाड़ रहा है। कुछ और न देख उसके सामने एक ही रास्ता बचता है कि अब वो कुछ ऐसा कर जाए कि जिससे हमेशा हमेशा के लिए सुंदर और राधा एक हो जाएं। बस फिर क्या था, गोपाल नजरें बचाकर सुंदर की पिस्तौल लेता है और खुद को गोली मार लेता है। और इस दुनिया से जाने से पहले सुंदर के हाथ में राधा का हाथ देता है और कहता है ये पाक दामन साफ है, पवित्र है गंगा की तरह, इसको अपनाना, इसको कभी कोई दुख ना देना। और राधा से भी वादा लेता है कि सुंदर ही तुम्हारी जिंदगी है, इसका ख्याल रखना। यह कहकर गोपाल इस दुनिया को अलविदा कह जाता है और एक बार फिर सुंदर और राधा गोपाल के इस बलिदान के बाद एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म संगम की। उम्मीद है आपको कहानी और गीत दोनों पसंद आए होंगे। अब आशीष को फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्स। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और 1:10 पर आप ही के पसंदीदा गीतों का एक कार्यक्रम होगा, दिल ढूंढता है। इंतजार रहेगा मुझे आपका। जो गीत आप बार बार सुनना गुनगुनाना पसंद करते हैं वो गीत आपके पेश नजर होंगे 1:10 पर।

0: अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया।

1:03 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz मधुर तरानों का कार्यक्रम दिल ढूंढता है। आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कटी पतंग के उस गीत से जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सवारा आर डी बर्मन ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से अनजाना होता है। और जब प्यार किसी अपने से हो जाए तो बेखुदी में कदम उस तरफ बढ़ ही जाते हैं अपने का दामन थामने के लिए। जैसा कि कहा गया है हसीना मान जाएगी इस गीत में, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने अपनी पुरनम और पुरजोर आवाजें दी हैं इस गीत को, और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और अख्तर रुमानी है इस गीत के गीतकार।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: एक बजकर 24 मिनट और 50 सेकंड, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं दिल ढूंढता है। और इस कार्यक्रम की आज की अंतिम पेशकश आपके लिए है फिल्म अनजाना के इस गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। संगीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। और दोस्तों, इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: अहिक्या नूतनम् अंकम् आदाय उपस्थिता अहम् कार्यक्रम प्रस्तोत्री डॉक्टर साधना शर्मा अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाभिः सह सस्नेहम् अभिवादये संस्कृत साप्ताहिक्याः अस्य अंकस्य प्रारम्भम् कुर्मः भोः सुधियः श्रोतारः आइज़क दिसराली महोदयस्य मतम् सुभाषितानि महताम् ज्ञानानुभव सारभूतानि भवन्ति तर्हि शृणुमः सुभाषितम् अस्माकम् सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना
1: भ्रातॄणामप्ययम् भावो यः परस्परमुक्तवान् न विनाशाय कल्पन्ते वृक्षा संघातचारिणः। अर्थात महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों के बीच भी आपस में ऐसा ही प्रेम और एकता का भाव होना चाहिए जिस प्रकार एक साथ समूह में उगे हुए वृक्षों को तेज आंधी तूफान भी नष्ट नहीं कर पाते।
0: अधुना प्रसंगे प्रभागे शृणुमः शंकराचार्य विरचिताम् शिव मानस पूजाम् याम् प्रस्तौति अस्माकम् सहयोगी श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्यायः।

0: प्रियाः साधकाः श्रोतारः, अधुना सप्ताहस्य प्रमुखवार्ताः शृणुमः। प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी कामना झाः।
1: केन्द्रीयमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः उद्घोषयत् यत् जम्मू कश्मीरस्य कठुआ मण्डलं शीघ्रमेव दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस कॉरिडोर इत्यनेन सह सम्बन्धं भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः नागपुरस्य अम्बाझरी आयुद्ध क्षेत्रे यन्त्र इण्डिया लिमिटेड परिसरे 10,000 टन क्षमतायुतस्य अल्मूनिया एक्सट्रूजन प्रेस इत्यस्य आधारशिलां स्थापितवान्। नवदिल्ल्यां आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधि इत्याख्यै 10वें संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जया ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृतानि।
0: अधुना ज्ञान विज्ञान प्रभागे अस्माकं मध्ये विराजते जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म

0: ने आज योग के 12वें बैन अल-अक्वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क्यादत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज में नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। ईरान की जानिब से आबनाए हुरमुज को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर एमबी कालिबाफ अमन बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में दम्बुला में 3 मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां बैन अल-अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद सरगर्म और बावकार अंदाज से बढ़ती उम्र के लिए जिंदगी भर योग को अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से योग का बैन अल-अक्वामी दिन मनाने में मुल्क की क्यादत की। मुश्तरका योग प्रोटोकॉल योग अभ्यास में हिस्सा लेते हुए जनाब मोदी ने इस तारीखी मुकाम पर हजारों लोगों के साथ योग आसन किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी कसरत नहीं और न ही ये किसी मखसूस उम्र तक महदूद है, बल्कि ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरीसन ग्राउंड पर योगासन किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदार और शहरी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का एक जश्न है। उन्होंने कहा कि योग ने लोगों को एक सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: बांग्लादेश में योग का असल प्रोग्राम ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में मुनक़िद हुआ, जहां सैकड़ों योग शायकीन कॉमन योग प्रोटोकॉल सेशन में शिरकत के लिए जमा हुए। इस तकरीब की क़यादत IGCC के योग असातिज़ा और तलबा ने की। आर्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश और एवरग्रीन योग समेत 8 सरकर्दा योग तंजीमें इस तकरीब में शामिल हुई, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी होती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। रियाज में भारतीय सिफारत खाने ने कल सऊदी योग कमेटी और मुकामी इदारों के साथ मिलकर प्रिंस फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में योग से मुतालिक तकरीब मुनक़िद की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने शिप बिल्डिंग शोबे के लिए एक नए नज़रिए के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने आज मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देने के बाद इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। बहरिया के जंगी जहाजों के डिजाइन से मुतालिक ब्यूरो ने इनका डिजाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया है। इन जंगी बहरी जहाजों का मकसद मुकाबला करने की सलाहियत, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निजाम को मुस्तहकम बनाना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने कई पॉलिसी इसलाहत की हैं। वजीर आजम ने कहा कि अंदरून मुल्क तामीर करने की सलाहियत को बढ़ाने की खातिर खसूसी इकदाम किए गए हैं।

0: नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि इन जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल किया जाना भारत के मुस्तकबिल का एक इशारा है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में न सिर्फ दिफाई सामान की तैयारी में तेजी के साथ इजाफा हुआ है बल्कि दिफाई सामान की बरामदात भी तेजी के साथ बढ़ गई हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को बहरिया में शामिल किया जाना भारत की बहरी सलाहियत के फरोग में एक अहम लम्हा है। आज मुल्क भर में 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार ये इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG का दोबारा इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो खौफ होकर इम्तिहान दें। अमरीका के नायब सदर JD वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमरीका ईरान के साथ मुजाकरात का ढांचा तैयार करेगा और इसके साथ ही न्यूक्लियाई मामलात पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। ईरान से भी एक वफद स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और उसने खबरदार किया है कि लेबनान में जंगबंदी से पहले बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा था कि लेबनान में इसराइली हमलों की वजह से अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम और मेघालय में कहीं कहीं तेज से लेकर बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, साहिली कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। क्रिकेट में दाम्बुला में तीन मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर धुआंधार 94 रन स्कोर किए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आज योग के 12वें बैन अलाक्वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. Leads the national observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across the country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks.

0: UPA has said that student-friendly facilities are being provided at centres, including drinking water, ORS, ambulances and shaded waiting areas for parents. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan is assured that all necessary arrangements were already made for the smooth conduct of the exam. President Draupadi Murmu today attended the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University in Jabalpur, Madhya Pradesh. On the occasion, she awarded gold medals to meritorious students from different faculties. Madhya Pradesh Governor and Chancellor Mangubhai Patel, Chief Minister Dr. Mohan Yadav and Higher Education Minister Inder Singh Parmar were also present at the ceremony. Addressing the gathering, the President said that Rani Durgavati, after whom the university is named, was a symbol of courage, bravery and valour. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रति वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Minhap 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूं। ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
5: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
6: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
2: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण

0: वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज हम आपको जो नाटक सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है खिड़की। ये नाटक सोक्रेटिस के वालत्य की मलयालम कहानी जनाला पर आधारित है। इस नाटक को पहले मलयालम भाषा में ही तैयार किया गया था, जिसे आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार समारोह वर्ष 2017 में मेरिट सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ था। हिंदी में तैयार किए गए इस नाटक के निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक खिड़की।

0: अरे ये खिड़की तो खुली नहीं रही कल्याणी।
1: भूल जाते हो कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, रहने भी दो, हाथ में मोच आ जाएगी। अरे साल भर से बंद है, पल्ले फूल गए हैं। मेरी मानो तो एक बार जोर से हथौड़ा मारो सिटकनी के पास, खुल जाएगा।
0: हथौड़ा? अरे ये तो ऐसे अटक गया है कि हाथी भी धक्का दे तब भी नहीं खुलेगा। लगता है इसके पल्लों को रंधा मारने की जरूरत है, लेकिन अभी कोई मिलेगा भी कहाँ। अरे बड़े ही भी तो आजकल ईद के चांद जैसे हो गए हैं।
1: अरे छोड़ो ना, इतना कष्ट करके खिड़की खोलने की जरूरत ही क्या है।
0: अरे क्यों नहीं है, है? खिड़की बनवाई है तो खुलनी भी तो चाहिए ना, इस कमरे में भी तो ताजा हवा।
1: हाँ हाँ रहने भी दो, सब समझती हूँ मैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें ये देखना है कि बारिश में जयप्पन की झोपड़ी की क्या हालत है, अब तक उसके घर में पानी घुसा कि नहीं।
0: हाँ हाँ यही देखना है मुझे, और क्यों ना देखूं, है? उस अहंकारी घमंडी दो टके के जयप्पन की कच्ची झोपड़ी मुझे पानी में डूबी हुई देखनी है, और वो इस दूसरी मंजिल की खिड़की से ही साफ साफ दिखेगा, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं।
1: पिछली बरसात में भी डूब गई थी, इस बार भी डूब जाएगी, और क्या। खिड़की मत ही खोलो तो अच्छा है, देख नहीं रहे बाहर कितनी तेज बारिश है। छत से कपड़े नीचे लाने में तुम्हें पता भी है कितनी दिक्कत हुई मुझे, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है।
0: अच्छा ठंड लग रही है, फिर एक काम करो, नीचे जाओ और जाकर अपने लिए मेरे लिए एक एक कप चाय बना के लाओ। और हाँ उसमें इलायची भी डालना, स्वाद भी और गर्माई भी।
1: चाय और वो भी इस समय? पंकना मुझे और भी बहुत काम है, जाके दिया जला लूं पहले।
0: ठीक है ठीक है, मैं जरा ये खिड़की खोलूं। खुल गई खिड़की, वाह बारिश तो तेज हो रही है।

0: कर्नल कर्नल आंखें खोल बेटा।
1: ये तो जयप्पन और इसके बेबी बिंदु की आवाज लग रही है।
2: जयप्पन देख देख उपास इसका माता कैसे खतरा है। बिंदु तू भी साथ जा, जल्दी जाओ।
3: ये मैं क्या देख रहा हूँ?
1: वाह वाह वाह क्या दृश्य है। अब आएगा मजा।
3: कल्याणी कल्याणी अरे कल्याणी इधर आओ सुनो।
1: कल्याणी कल्याणी
4: हरे दीपम
1: कल्याणी कल्याणी
2: दो मिनट चुप नहीं रह सकते, देख नहीं रहे दिया जला रही हूँ।
3: अरे लगता है जयप्पन के घर में कुछ हो गया है।
2: हाँ?
3: अरे जयप्पन की बीवी बिंदु बारिश में खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही है।
2: क्या?
3: और वो जयप्पन वो तो बच्चे को कंधे पर लिए पानी में ऐसे कूद रहा है कि पूछो ही मत। और उसकी झोपड़ी तो अभी से आधी से ज्यादा पानी में डूब गई है।
2: हाँ?
3: अरे देख तो सही, एक बार चलकर देख तो सही।
2: हाँ,
3: बिल्कुल
2: हाँ।
3: झील जैसा हुआ पड़ा है। जल्दी आ जल्दी आ।
2: हे भगवान उसके बच्चे को क्या हुआ है? कहीं उसे सांप वाप ने तो नहीं काट लिया?
3: अरे मुझे क्या पता क्या हुआ है, है?
2: अरे उसके बच्चे को तुम्हारी हाय लगी है। अब तो खुश हो ना, जैसा चाहते थे हो गया वैसा ही जयप्पन के साथ। अब हो गई तसल्ली तुम्हें? जश्न मनाओ, अपने प्यारे दोस्तों को भी खबर कर दो। अरे जाओ जाओ, जयप्पन की ये हालत अकेले देखने का क्या मजा। हाँ
3: अरे हाँ हाँ जाऊंगा जाऊंगा और सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। हाँ यही करूंगा मैं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल।
2: हे भगवान पता नहीं उस गरीब की झोपड़ी क्यों अखरती है रईसों को। मखमल में टाट का पैबंद, बेचारा जयप्पन क्या होगा अब उसका।

0: अरे आ रही हूं बाबा, आ रही हूं। अरे शारदा कुंजम मां बूढ़ी हो गई है रे, टरंग टरंग करता रहेगा तो क्या दौड़ कर उठा लूंगी, बजता रहे आ रही हूं। अरे बजता है। हेलो,
1: शारदा, पंकना पिल्ले बोल रहा हूँ। हाँ,
0: बोलो क्या हुआ?
1: क्या हुआ? अरे जरा अपनी खिड़की खोल कर से देखो, जयपन के घर में क्या हो रहा है। अरे देखो देखो
0: अरे तुम ही क्यों नहीं बता देते क्या हुआ?
1: शारदा, जो मजा देखने में आएगा वो सुनकर थोड़ी आएगा। फटाफट जाकर खिड़की खोलो और खुद ही देखो।
0: अरे मैं नहीं जा रही, तुम ही बता दो जो दिख रहा है।
1: जयपन की झोपड़ी पानी में डूब गई है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: है? अरे पंकना, मैंने भी देखा है, पानी बहुत भर गया है। आज अगर पूरी रात बारिश हुई तो कल तो वो हाथ जोड़े खड़ा रहेगा, अपनी पूरी जमीन हम दोनों में से किसी एक को बेचकर पक्का भाग जाएगा यहाँ से।
1: अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक कहती हो, यहाँ से छोड़कर भाग जाएगा अब तो वो।
0: अरे पंकना, जयप्पन के बच्चे को क्या हुआ वो तो बता, उसे कहीं डेंगू तो नहीं हो गया?
1: अरे मुझे क्या मालूम, पर था वो बेहोश।
0: अच्छा
1: जयप्पन बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा है। हाँ
0: हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, दया करो उस मासूम पर, मेरा बेटा कन्नन।
2: अरे वो एक्सीडेंट वाले पेशेंट राघवन के साथ कौन आया है?
0: कन्नन के पापा, देखो नर्स आ गई, अपने कन्नन के बारे में भी पूछो ना उससे जरा।
3: हाँ, पूछ तो बिंदु। नर्स जी,
2: अरे वो एक्सीडेंट वाले पेशेंट के साथ कौन है? पेशेंट को आईसीयू में पटक कर भाग जाते हैं।
0: नर्स जी
2: क्या है?
0: मेरे बच्चे ने आंखें खोली क्या?
2: आंख खोली मतलब आंख का इलाज कराने लाई है क्या उसका? तेरा बच्चा आईसीयू में है, सीरियस है, समझी? डॉक्टर देख रहा है उसे, मेरा टाइम खराब मत कर। ए, तू इसका मरद

0: है ना?
1: जी जी।
0: इसको बोल मुंह बंद करके उधर कोने में जाकर बैठ जाए,
1: जी।
0: कोई बात होगी तो डॉक्टर खुद बुला लेगा।
1: जी चल बिंदु।
2: कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचाओ नर्स जी।
1: अरे बिंदु बैठ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा अपने कन्नन को, ठीक हो जाएगा वो, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा।
2: पता नहीं अम्मा कैसी होंगी।
1: अम्मा?
2: अरे जब हम कन्नू को लेकर अस्पताल के लिए दौड़े थे तब अम्मा बरामदे पर खड़े होकर खिचक खिचक कर सांस ले रही थी, उनको दमा का झटका आया हुआ था। पता नहीं हमारे पीछे अम्मा का क्या हुआ होगा, भगवान करे सब ठीक हो बस।
1: हे भगवान, कन्नन के चक्कर में तो मैं उनके बारे में एकदम ही भूल गया था।
2: कन्नन के पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे।
1: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मेरी माँ और बच्चे की जान तेरे हाथों में है भगवान, रक्षा कर, रक्षा कर भगवान, रक्षा कर।
2: कल ही अम्मा मुझसे कह रही थी बाढ़ के बारे में एक शिकायत लिखकर नगर निगम में जाकर देने को। अम्मा ने एक एक बात कही थी जो लिखना था, मैंने ध्यान नहीं दिया।
3: नगर निगम अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं अपने बेटे जयपन, बहु बिंदु और अपने 7 साल के पोते कनन के साथ नीचे लिखे पते पर कई वर्षों से रह रही हूँ। ये एक झोपड़ी है जिसमें एक कमरा, रसोई घर और बरामदा है। मेन रोड से हमारी झोपड़ी तक सीधी गली है। हर साल जब बारिश होती है तो पानी हमारी झोपड़ी तक पहुंच जाता है और हमारी झोपड़ी डूब जाती है। पहली बारिश में हमारे घर में घुटनों तक पानी भर जाता है और हमारा सारा सामान पानी में तैरने लगता है। पहले गली के साथ साथ एक नाला भी था, लेकिन जब से पैसे वालों ने यह कोठियां बनवा ली हैं तो उन्होंने हाल ही में मिलकर उसे बंद करवा दिया है और हमारी झोपड़ी नीचे की जमीन पर है। उस नाले के बंद हो जाने से बारिश के पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, जिसके कारण बारिश में हर साल हमारी झोपड़ी और आसपास की जगह डूब जाती है। मुझे अस्थमा की तकलीफ भी है और मेरे पोते को भी फेफड़े की शिकायत है,
0: जिसके कारण ये हमारे सेहत के लिए भी ठीक नहीं। आकाशवाणी पर सुना है कि इस बार भी ज्यादा बारिश होने का अनुमान है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पानी की निकासी के लिए नाले को फिर से खुलवा दें या कोई और उचित कदम उठाएं। भवदीय बल्लोन की विधवा पत्नी कलित कुट्टी। अम्मा, हर साल यही निवेदन पत्र आप भिजवाती हो, कुछ नहीं करने वाले वो।
3: बिंदु, वो कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएंगे।
0: अम्मा, किसी से लिखवा कर खुद ही दे आओ, आपको तो सिर्फ चारपाई पर बैठकर कुछ न कुछ बोलने की आदत सी हो गई है बस।
3: अरे अरे, इन बेचारे बर्तनों को इस तरह क्यों सता रही हो बहू?
0: ओहो अम्मा, बस चुप करके बैठो, चूल्हे भी पानी में डूब जाए उससे पहले चावल पका लेने दो, सारी लकड़ी भी सील गई है।
4: दादी,
3: अरे आजा आजा मेरे लाडला कन्नू, आजा आजा।
4: बाढ़ आ गई है, मंदिर के तालाब में मछली भर जाएगी, पापा उसे पकड़कर बाजार में जाकर बेचेगा, उस पैसे से चिकन बिरयानी आएगा, माँ फिर चावल बनाने की क्या जरूरत है।
3: ओए ओए ओए, देख तो बच्चा छोटा है पर दिमाग खूब है इसमें। अरे बिंदु, कौन कहेगा अपना कन्नू अभी सिर्फ 4th कक्षा में है।
0: हाँ हाँ, इतनी बारिश में तो इसके पापा को मंदिर के तालाब तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

0: तालाब का पानी यहाँ तक पहुँच ही जाएगा, यहीं पकड़ेंगे मछलियाँ।
1: लगता है जयपनपुर काम से लौटते लौटते इधर पानी भर जाएगा।
0: आएंगे मेन रोड से यहाँ तक तैरते हुए। पंखना पिल्ले जो दाम दे रहा है ना हमारे जमीन का, अगर हम उतने पर भी बेच दें और थोड़ी दूर ऊंची जगह पर झोपड़ी बना लें, तो हर साल ये सब तो न झेलना पड़े ना।
1: बिंदु, फिर वही बात, पंखना पिल्ले हमारी जमीन की आशा छोड़ दी, हमें उसे जमीन नहीं बेचनी है, नहीं, कभी नहीं। जो भी है, जैसी भी है, जयपन का बाप और उसके दादा को दफन की गई मिट्टी है ये, समझी?
0: हाँ ठीक है, तो ओढ़ कर बैठे रहो ये मिट्टी, ये जमीन। खुद बीमार हो और मेरा बेटा कन्नू तो बीमार रहता ही है। मच्छर, बाढ़, गंदा पानी, मर जाएंगे पर हिलेंगे नहीं। पूर्वजों की मिट्टी है ना, कैसे छोड़ सकते हैं?
1: हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। तुम जैसी लड़कियों को ये सब समझ में नहीं आएगा। याद रखो बहू, ये चाहिए वो चाहिए के पीछे अगर एक बार दौड़ना शुरू कर दिया तो जिंदगी भर दौड़ना ही पड़ेगा।
2: समझी? दादी,
1: कन्हू,
2: पानी आ रहा है। अलोशी भैया का आंगन पूरा डूब गया, रास्ते में मेरे सीने तक पानी भर गया है।
0: कन्हन, तुझसे बाहर जाने को किसने कहा? पानी में गिर गया तो कौन बचाएगा? हा? चुप करके यहीं बैठ जा, बैठ, हिला तो पीठ उधेड़ दूंगी तेरी, समझा?
1: लो, बरामदे तक पानी आ गया। बिंदु देखो, पानी भर रहा है। हाँ देखो बिंदु,
0: किस्मत है चावल तो पक गया है।
1: तो उसे मेज पे रखो, अब रसोई में पानी भरेगा। नाले और मंदिर के तालाब का पानी एक साथ मिलकर पहुंचते ही होंगे अगले एक घंटे में।
2: दादी, सीढ़ी डूब गई, पानी अंदर घुस रहा है।
0: अरे कन्नन, अपनी किताबें और बैग ऊपर रख, पानी भर रहा है। सब भीग गया तो कल स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा कहकर चिल्लाता फिरेगा। जाओ जाओ ना ऊपर।
2: मार क्यों रहे हो माँ मुझे? जा तो रहा हूँ रखने।
1: अरे बहु बिंदु, चाय की पत्ती और चीनी के डब्बे ऊपर रख दिए है ना।
0: चाय पत्ती की जरूरत क्या है, नाले का पानी भी तो अब चाय की तरह ही लगेगा ना, बस सिर्फ चीनी ही तो डालनी होगी।
1: तुम ठीक कह रही हो बहू, तुम्हें तो मजाक करना भी आता है।
0: अरे कन्नन, तूने बैग ऊपर रखा?
2: रख दिया।
0: तो फिर कमरे में क्या कर रहा है?
1: अरे मेज पर बैठकर पानी वाले जहाज बना रहा होगा, हर बार यही तो करता है ना।
0: कन्नू, दादी के पास जाकर बैठ।
2: अच्छा,
0: जल्दी आ, अगर मैं वहाँ आई ना तो पानी में गिरा कर पीटूंगी तुझे।
2: आ रहा हूँ ना।
1: अरे कन्नू बेटा, आना यहाँ दादी के पास। ऐसे मेरे कन्नू को अब ठंड नहीं लगेगी ना कन्नू बेटा। की बार ये बारिश हो रही है कि प्रलय बरस रही है।

0: हेलो
1: शारदा, घर के सामने उस गंदी झोपड़ी में क्या चल रहा है? आंखों देखा हाल तो बताओ।
0: अरे देख रही हूँ कि जयप्पन ने केले के पेड़ों को जोड़कर एक बेड़ा बनाया है। उसका बेटा उस पर बैठकर बहुत खुश है। उसकी माँ और बीवी बिंदु दोनों साथ मिलकर छोटी जाल से मछली पकड़ रहे हैं।
2: ये रहा जाल।
3: पापा पापा आओ इस बेड़े पर बैठो।
2: अरे वो गई बड़ी वाली मछली, जाल नीचे कर। अरे नीचे कर।

0: ही नीचे कर और नीचे देख। आ गई मछली, आ गई मछली, आ गई आ गई।
1: ला मैं भी मदद करती हूँ बहू।
2: अम्मा रहने दो, ये देखो माँ केले के पेड़ वाला मेरा बेड़ा, टाइटैनिक जहाज, ये देखो देखो कितना अच्छा है।
0: मैं बाजार जाकर मछलियाँ बेच कर आता हूँ, आज के लिए तो बहुत सारी पकड़ ली हमने। हाँ
2: पापा। हाँ चिकन बिरयानी।
0: जी जी राजकुमार जी, चिकन बिरयानी, उसी के लिए तो जा रहा हूँ बाजार मछलियाँ बेचने। हाँ
3: अरे ये सब क्या हो रहा है पंकना, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्या?
4: चलने दो चलने दो, ये प्यारे दृश्य इन फटे हालों के चलने दो, थोड़ी बारिश और होते ही ये सब बंद हो जाएगा, वीणा की जगह सारंगी बजने लगेगी।
3: ठीक कहते हो, रेडियो में भी कहा था कि बारिश ज्यादा होने की संभावना है।
4: मैंने भी सुना था, फिर करूंगा फोन थोड़ी देर में, ठीक है?
5: बड़े खुश हो रहे हो, बेचारे जयप्पन का पूरा परिवार पानी में डूब रहा है और तुम हो कि?
4: अरे तो किसने कहा उन्हें डूबने के लिए, अपनी जमीन बेच कर कहीं और जाते क्यों नहीं है? अरे हम जैसे रईसों के बीच रहने की जरूरत ही क्या है, है? मैंने कहा था ना उसे मैं अच्छा दाम दे दूंगा, मुझे जमीन बेच दे, पर उसे तो जिद है, जिद है तो भुगत।
5: तुम्हारा तो एक ही राग अला पड़ो,

0: जरा देखूं तो जयप्पन के घर क्या हो रहा है। अरे जयप्पन और उसका परिवार पानी में तैरते हुए जा रहे हैं। हे भगवान, कहीं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहे?
1: अरे वो शौच के लिए जा रहे हैं, मेन रोड के पास के सरकारी अस्पताल के शौचालय तक।
0: हो, लगता है बाढ़ में उनका शौचालय भी डूब गया।
1: वहां जाकर लाइन में खड़े होंगे भिख मंगो की तरह। हाँ? अरे कितने दिन तक झेलेंगे ये सब है। अरे भागना तो पड़ेगा ही।
0: तुम फिर शुरू हो गए।
2: निकालो 5 रुपया, अभी हो गया ना लेट्रिन, निकालो 5 रुपया।
3: एक मिनट भाई, जरा पीछे। भाई हम 4 लोग हैं। अरे ये लो 8 रुपए।
2: पीछे लाइन में लगो। ओ भैया ये का है? अब एक का 2 रुपए? अरे कौन से जमाने में जी रहे हो भाई?
3: अरे
2: 5 भाई, अब एक का 5 रुपया लगता है, समझे?
3: 5 रुपए
2: कहां से आ जाता जो?
3: अरे देखो देखो, 2 खाली हो गए वो सामने वाले। माँ कलू, चल चल तुम दोनों जाओ। बिंदु,
4: मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ, ये तंबाकू बीड़ी का गंध सहन नहीं होता मुझसे। परेशान हो गई हूँ, क्या क्या सहन करना पड़ता है। अगर तुमने जमीन नहीं बेची ना तो मुझे मालूम है कि क्या करना है। शौचालय के सामने ऐसी बेशर्मी से इंतजार, अरे मैं नहीं झेल सकती।
3: बिंदु धीरे बोलो, सुन रहे हैं सब लोग।

0: 아니
1: 하긴 이거냐 왜 어저께 이거냐 아니 뭐 찍으면 되나 너무 끝나
0: 이분 아니 문제 대도 끝난 미라빌자 미라빌자 끝난 아자아자 마마키까 내 번 열자고 지니 오가 또지
1: 아니 전생전호가
2: हे भगवान हे भगवान मेरी जान ले लो मेरी बच्चे को बचा लो भगवान मेरे बच्चे को बचा लो
3: बच्चे के साथ वाले कहाँ हैं हैं यहाँ
0: हाँ नरसी हम हैं ना
1: हाँ नरसी
3: बच्चे का बाप अंदर आओ और दीदी तुम इधर ही बैठो
0: जी जी क्या हुआ नरसी
3: क्या हुआ है ये तो डॉक्टर ही बताएगा
0: जी अब तो यहीं बैठ मैं जाता हूँ अंदर वो कराता हूँ भी
1: अम्बे नारायणी देवी नारायणी लक्ष्मी नारायणी पुत्र नारायणी अम्बे नारायणी देवी नारायणी
0: बिंदु बिंदु हमारा बच्चा बच गया उसे कुछ नहीं हुआ बिंदु
1: भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद
0: हाँ बिंदु डॉक्टर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है सब ठीक है हमारे डॉक्टर साहब उसको कह दे रहे
1: माँ हम नानी के घर क्यों जा रहे हैं पापा और दादी हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे दादी चलो ना माँ हम क्या यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे हम क्यों जा रहे हैं मैंने गलती से दादी की दवा खा ली थी इसलिए जा रहे हैं क्या कसम से फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा
2: दादी का प्यार है मुन्ना यहाँ बेटे
4: चंदन जूते हाथ में रखो रोड पर पहुंचने के बाद पहना दूंगी
2: जय अपा अरे बेटा तो बिंदु को समझाना अब और बारिश थोड़े ही होगी धीरे धीरे ये चढ़ा हुआ पानी भी निकल जाएगा बेटा
4: एक बार फिर पूछती हूँ अम्मा और आप भी आ जाइए वहाँ हम एक साथ रहेंगे ये जमीन अच्छे दाम पर बेच देंगे
0: देख बिंदु अपना घर छोड़कर रिश्तेदार के घर में मैं नहीं रह सकता देखो भगवान की दया से कल कनन की जान बच गई इसी जमीन के कारण हाँ
4: जाती हूँ
1: पापा पापा पापा
4: कनन चल
1: दादी
0: बिंदु पापा। तो इस पानी को आते देखकर यहां से जाना चाहती है ना ये देख मैं इसी पानी को पीता हूँ
1: माँ पापा बहते हुए पानी को पी रहे हैं
4: पागल हो गए जो मन करे करने दे चल यहाँ से
0: ये पानी सिर्फ पानी नहीं तीर्थ है तीर्थ मेरे बच्चे के प्राण इसी पानी ने बचाए हैं इसी गंदे पानी ने बचाया है उसे डॉक्टर ने अंदर बुलाकर मुझसे क्या कहा था जानती हो तूने मौका ही नहीं दिया मुझे पहले बताने का सुबह से लड़े जा रही है घर छोड़कर जा रही है अरे पर अब तो सुन ले
5: आप उस बच्चे के पिता है ना
0: जी
5: बच्चे को यहाँ कैसे लेकर आए थे किसी रिक्शा में
0: जी नहीं डॉक्टर साहब हमारे घर तक रिक्शा आ ही नहीं सकता

0: नहीं था, मेरा बेटा।
1: आपने अच्छा किया, गाड़ी में लेकर आते तो बच्चे को कुछ भी हो सकता था।
0: जी
1: हाँ, पानी में कूद कूद कर आए, इस कारण बच्चे के पेट के अंदर जो भी गया था सब कुछ उल्टी होकर बाहर आ गया। सच में हमको कुछ नहीं करना पड़ा, अगर ऐसा ना हुआ होता तो कुछ भी हो सकता था।
0: अच्छा,
2: माँ के हाथ से बैग नीचे पानी में गिर गया है।
0: अब अगर अब भी बच्चे को लेकर जाना है तो जाओ, लेकिन इस पानी को बुरा मत बोलना।

0: दादी सब ठीक हो गया, देखो दोनों कैसे गले मिल रहे हैं, लगता है नानी के घर जाना नहीं पड़ेगा दादी।
1: कभी कभी दुर्भाग्य भलाई के लिए भी होता है, समझी?
2: आप ठीक कह रही हैं अम्मा, ठीक कह रही हैं आप।
3: हेलो
4: शारदा, सुना है वो बच्चा बाढ़ के कारण ही बच गया है। मैं आज ही मेड़ तोड़कर रोड से पानी नाले की ओर बहाने का इंतजाम करूंगा। उन लोगों का वो बेड़ा बनाकर चलाने वाला खेल, मछली पकड़ना, सब कुछ खत्म करवा दूंगा। देखता हूं कैसे खुश रहते हैं वो बारिश में भी। अरे पानी की एक बूंद भी झोंपड़ी और उसके आसपास नहीं दिखेगी। हाँ,
3: ये कैसी आवाज थी?
4: वो हवा से खिड़की बंद हो गई।

खिड़की। अभी आप सोक्रेटिस के वालत्त का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे अशोक मलकानी, नीरू अग्रवाल, परवेज गौहर, शोभना भारद्वाज, शिमाइला परवेज, राज शर्मा, नितिन भसीन, मास्टर सजग अरोड़ा और निर्देशक थे विनोद कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा

0: है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इससे अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 8वें ओवर में 2 विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing a pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
1: Yoga केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
2: President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh today. Addressing the event, the President said that yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. Vice President C.P. Radhakrishnan also performed yoga at the Spituk Stadium in Leh, Ladakh, along with hundreds of participants. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodak and INS Agra in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है नई क्षमता तैयार कर रहा है नई कनेक्टिविटी बना रहा है नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है
2: Defence Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. President Draupadi Murmu today attended the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University in Jabalpur, Madhya Pradesh. On the occasion, she awarded gold medals to meritorious students from different faculties. Addressing the gathering, the President said that Rani Durgavati, after whom the university is named, was a symbol of courage, bravery and valour. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. Delegation from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf, has been named Menab 168 in a tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The Director of Enforcement, ED, has provisionally attached movable and immovable properties worth 1,000 crore rupees in the matter pertaining to large-scale illegal iron ore mining in Goa by the Salgaonkar Group and its associates, the AVS Group. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्मी तराने, पहला नगमा है फिल्म आ गले लग जा से, स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

लीजिए सुनिए बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स। आज जो चर्चा के विषय हैं, योग से स्वस्थ बचपन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ये चर्चा रहेगी। और दूसरा जो चर्चा का विषय है वो है इंटरनेशनल फादर्स डे। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और दोस्तों, शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विराट मोहन शर्मा और मेरे साथ हैं
1: आपकी दोस्त प्रिशा अग्रवाल।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम,
2: जिसका नाम है
3: रेडियो प्रेस।
1: पता है विराट, भारत की

0: कहानी ऋषि मुनि देवों की है।
1: हाँ प्रिशा, इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध है। सभी सुखी रहे की भावना को लेकर ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को सुखमय और स्वास्थ्य बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें प्रमुख प्रयास है योग। और तुम्हें पता है, योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। इस पहल के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को प्रकाश में लेना चाहते हैं। उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया था। अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है।
0: विराट, आपने मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या आप और जानकारी देना चाहते हो योग के बारे में?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताओ।
0: योग का मतलब है जोड़ना, मतलब किसी अच्छे काम से अपने आप को जोड़ना। अपनी हेल्थ के लिए अपने शरीर और मन से किया गया काम होता है योग।
1: हाँ, इसलिए तो कहते हैं सुबह सुबह जो कसरत करता जीवन में वो आगे बढ़ता। विटामिन डी की कमी पूरी होती, जिस तन सूर्य की किरणें लगती। तुम्हें मालूम है प्रशा कि आजकल मनुष्य अनियमित दिनचर्या के कारण अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने हेतु योग की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
0: हाँ विराट, मैं अपने पापा के साथ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती हूँ योग करने। मैंने देखा है पार्क, बगीचों, घर की छत पर लोग योग करते हैं। लोग योग संस्थाओं, टीवी, मोबाइल से सीख रहे हैं।
1: हाँ प्रशा, तुमने बिल्कुल सही बोला। विद्यालयों में बच्चों को योग शिक्षा दी जा रही है एवं योग कराया जा रहा है। योग स्वास्थ्य की कुंजी तो है ही, और यह भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। इसलिए तो कहते हैं मिलती ऊर्जा और सफूर्ति, दिन भर रहता शरीर एक्टिव। योग हमें सुंदर मार्ग दिखाता, रोगों से मिलता छुटकारा। दोस्तों, हमने योग दिवस पर तो बहुत जानकारी दे दी। चलो दोस्तों, आज हम एक मजेदार क्विज खेलते हैं जो योग पर आधारित है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने योग ज्ञान की परीक्षा देने के लिए?
2: हाँ।
1: तो चलिए पहला प्रश्न पूछते हैं, सबसे पुराना योग कौन सा है?
3: मैं बताऊं।
4: मुझे पता है।
1: हाँ हाँ प्रशा बताओ।
0: प्राणायाम।
1: बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, भगवान शिव को किस आसन में बैठना प्रिय है?
4: मुझे पता है विराट।
1: हाँ हाँ बताओ।
4: शिव जी आलती पालती कर बैठते हैं।
1: अरे आलती पालती मार कर तो बैठते ही हैं, लेकिन उस आसन का नाम क्या है?
4: अरे हाँ याद आया, पद्मासन।
1: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने स्तुति। तीसरा प्रश्न, योग के कितने मुख्य आसन होते हैं?
0: मुझे पता है विराट।
1: हाँ हाँ बताओ।
0: योग के प्रमुख 84 आसन होते हैं।
1: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। अच्छा स्तुति, मैंने तो अब इतने सारे प्रश्न पूछ लिए, क्या तुम कुछ प्रश्न या फिर पहेलियाँ लाई हो योग के ऊपर?
4: हाँ हाँ लाई हूँ।
1: तो जल्दी से पूछो।
4: हम इतनी देर से योग की बात कर रहे हैं कि योग क्या है?
1: हाँ हाँ स्तुति, मेरे को पता है, हमारे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ बनाने में योग हमारी बहुत मदद करता है।
4: अगला सवाल, योग करने से क्या हासिल होता है?
5: मुझे पता है।
1: आर्ची, मैं देख रहा हूँ तुमने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पता है?
5: हाँ मुझे पता है विराट।
1: तो बताओ।
5: योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरती है, तनाव कम होता है और ध्यान बढ़ता है।
1: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने आर्ची।
4: अगला सवाल, योग दिवस कब मनाया जाता है?

0: पता, मुझे पता।
1: हाँ हाँ सोमचंद बताओ।
2: 21 जून।
1: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया सोमचंद। तो दोस्तों अब मैं आप सब से एक एक आसन का नाम पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं बताने के लिए?
3: हाँ, तैयार है।
1: तो प्रिशा बताओ किसी एक आसन का नाम।
0: सूर्य नमस्कार।
1: स्तुति तुम?
4: ताड़ासन।
1: और प्रिशा कश्यप तुम?
5: प्राणायाम।
1: और आरशी तुम किसी एक आसन का नाम बताओ।
6: त्रिकोण आसन।
1: और इतिका तुम?
7: पद्मासन।
1: अरे वाह, सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया।
8: अगला सवाल, योग करने से क्या लाभ है?
1: मैं बताऊं क्या स्तुति?
8: हाँ, बताओ विराट।
1: योग करने से हमारा शरीर मजबूत और लचीला बनता है, तनाव कम होता है और हमें शांति भी मिलती है, हमें स्वस्थ और खुश रहने में मदद मिलती है, शरीर अपना रोग मुक्त करे, कपाल भाती आप रोज करें, सभी आसन योग के असरदायक, अनुलोम विलोम अति लाभदायक।
0: ऐसे दोस्तों कहते हैं योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें, वरदान मिला जो हमको हम उसका उपयोग करें, तन मन स्वस्थ बनाता है, आलस दूर भगाता है, सदा सुखी वह रहता है जो इसको करता है।

0: हमारे स्टूडियो में एक साथी आए, चलिए पूछते हैं उनका नाम।
1: मेरा नाम इतिका है।
0: अब क्या सुनाने वाला है?
1: आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ,
2: तो चलिए सुनते हैं।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
0: यह तो बहुत आनंद आया सुनने में,
1: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, मैं आज कुछ मजेदार पहेलियां लाया हूँ, क्या तुम चाहते हो कि वो पहेलियां मैं तुमसे पूछूं?
3: हाँ, हम चाहते हैं।
2: तो पहली पहेली, बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आँखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती हूँ, बताओ बताओ।
1: मैं बताऊँ? हाँ, इसका उत्तर पुस्तक है।
2: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। दूसरी पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, बीच कटे तो रिश्ते का नाम, आखिरी कटे तो सब खाएं, भारत के 3 तरफ दिखाएं। स्तुति, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका उत्तर पता है।
2: तो बताओ।
4: सागर।
2: अरे वाह, तुमने भी एकदम सही उत्तर दिया। अगली पहेली, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार।
4: विराट, क्या मैं क्या बताऊं?
2: हाँ आरशी, बताओ।
5: इसका उत्तर 4 पाई है।
2: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आरशी। अगली पहेली, नकल उतारे सुनकर वाणी, चुप चुप सुने सभी की कहानी, नील गगन है इसको भाए, चलना क्या उड़ना भी आए। तुती, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका भी उत्तर पता है।
2: बताओ फिर।
4: तोता।
2: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगली पहेली, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, प्रिशा क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
6: हाँ
2: हाँ हाँ बताओ।
6: सांप।
2: अरे सांप कैसे हो सकता है इसका उत्तर? सांप नहीं होगा इसका उत्तर। सोम, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
7: सपना।
2: अरे वाह सोम, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो दोस्तों, अब चलते चलते मैं आप सबसे आखिरी पहेली पूछता हूँ, देखते हैं अब इसका उत्तर कौन देता है। वह क्या है जिसका नाम ले तो टूट जाती है?
7: क्या मैं बताऊँ?
2: हाँ हाँ बताओ।
7: खामोशी।
2: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा।

0: नमस्कार, मेरा नाम मन्ना शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं पर्यावरण विषय पे एक बहुत सुंदर प्रस्तुति करने वाली हूँ। कुछ पंक्तियों में बंधा हुआ है जीवन का यह वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण। काट कर वृक्षों को देखो, बना दिया सब रेगिस्तान, करके प्रकृति का शोषण, धरती कर दी है सुनसान। सृष्टि अंत को रोकने का कोई नहीं है निवारण, क्षण क्षण देखो नष्ट हो रहे प्रकृति और पर्यावरण। जब धूप से बदन तपा तो याद आए छायेदार वृक्ष, जब धुएं से दम घुटा तो याद आए हरे वृक्ष, जब भूख से पेट सूखा तो याद आए फलदार वृक्ष। जब ये सब याद आया है तो हे मानव, तू क्यों पछताया है? तूने ही तो अपने हाथों से ये सब विनाश फैलाया है। अब भी समय है, जाग जाओ, पेड़ न काटो, पेड़ उगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। धन्यवाद।
1: अब मैं चुटकुला सुनाऊं?
2: हाँ हाँ, जरूर सुनाओ।
1: इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं?
2: मेरे को तो नहीं पता प्रिशा, तुम ही बता दो।
1: इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स इसलिए होते हैं ताकि मच्छर उनके अलग अलग खून के फ्लेवर एंजॉय कर पाए।
2: प्रिशा, मैं तो तुम्हारे चुटकुले सुन के लोटपोट हो गया।
3: अब मैं क्या एक चुटकुला सुनाऊं?
2: हाँ हाँ इतिका सुनाओ।
3: टीचर, संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा।
2: अब मैं चुटकुला सुनाऊं?
4: हाँ आशी सुनाओ।
2: टीचर, गोलू से, पांच में से पांच घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास पांच भटूरे हैं और पांच भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू, छोले।
5: अरे वाह।

0: आरशी, तुमने तो बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। तुमने तो आरशी जैसे छोले भटूरे की बात करी, मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया।
1: मेरा नाम अरहम है। आज मैं अपने पापा के लिए एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। पापा मेरे सबसे प्यारे, लगते मुझको सबसे न्यारे, जब मैं गिरता हाथ बढ़ाते, हिम्मत देकर मुझे उठाते, खुद मेहनत दिन रात है करते, मेरे सारे सपने हैं भरते, कंधों पर जब मुझे बिठाते, दुनिया की सैर भी कराते, मेरी खुशियों का है खजाना, पापा जैसा नहीं ठिकाना, रब से बस यही दुआ है, खुश रहे पापा सदा सदा। फादर्स डे पर कहता हूँ, दिल से आपसे प्यार मैं करता हूँ, लव यू पापा।
2: जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है, और आज मैं अपने जीवन के सबसे खास इंसान अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कहते हैं कि माँ ममता की छांव होती है, तो पापा उस मजबूत पेड़ की तरह होते हैं जो हर धूप और हर तूफान से हमें बचाते हैं। आज सुबह जब मैंने पापा को फादर्स डे विश किया, तो उनके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा दिन बन गया। फिर हमने साथ बैठकर बातें की, पुरानी यादों को ताजा किया और कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा, क्योंकि सबसे कीमती चीज जो मैंने पापा को दी वो था अपना समय। मैं अपने पापा के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूंगी। मेरी हर खुशी में आपका ही नाम है, मेरे हर सपने में आप ही मुकाम है, मैं जो आज मुस्कुरा कर दुनिया से मिलती हूँ, उस मुस्कान के पीछे मेरे पापा का प्यार तमाम है। खुद धूप में रहकर छांव हमें दे जाते हैं, अपनी खुशियां भूलकर हमें हंसा जाते हैं। पिता का प्यार शब्दों में कहां बयां होता है, वो तो खामोशी से पूरी दुनिया लुटा जाते हैं। पापा आपने मुझे चलना सिखाया, सही और गलत में फर्क समझाया, गिरने पर संभलना सिखाया और सपने देखने भी सिखाए। जब भी मैं घबराती हूँ, आपकी एक बात मुझे हिम्मत दे देती है, कोशिश करो बेटा, तुम जरूर करोगी। आज फादर्स डे के इस खास मौके पर मैं दिल से बस इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू पापा, मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, मेरा हर सपने को अपना सपना बनाने के लिए और हर हाल में मेरा साथ देने के लिए। आप मेरे पहले शिक्षक हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। अंत में बस दो पंक्तियाँ, नसीब वालों को मिलता है आपके जैसा सहारा, मेरे पापा हैं मेरी दुनिया, मेरा चांद मेरा सितारा। हैप्पी फादर्स डे पापा। और दोस्तों, अगर आपके पापा आपके पास हैं, तो आज उन्हें गले लगाइए और दिल से कहिए, पापा आप मेरी दुनिया हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और हम मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक गाना साथ में गा लें।
1: हाँ ठीक है,
2: स्टार्ट करते हैं।

0: अरे विराट, बातें करते करते हमें तो पता ही नहीं चला हमारे जाने का समय हो गया।
1: हाँ प्रशा, अब वक्त हो चुका है हमारे जाने का और किसी और के आने का। दोस्तों, मैं और प्रशा लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए
2: बाय बाय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स। बाल प्रतिभागियों ने आज जिन विषयों पर चर्चा की वो विषय थे योग से स्वस्थ बचपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में और इंटरनेशनल फादर्स डे। आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश

0: निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वांस ने कहा है कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। तीन मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई को इंग्लैंड के एस्बेस्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्मी तराने, पहला नगमा है फिल्म आपकी कसम से। जी हां, स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: लीजिए सुनिए, अगला नगमा फिल्म है अजनबी, स्वर है किशोर दा, लता मंगेशकर का।

0: Patient details and forms available at www.aimsrbl.edu.in. I repeat the website, kindly look up the website, that is at www.aimsrbl.edu.in. The National Institute of Siddha, Tambram Sanatorium, Chennai, invites applications for multiple Group A and Group C posts, including Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Joint Director Admin, Deputy Medical Superintendent, Medical Officer and Lower Division Clerk on direct recruitment or deputation basis. Pay levels range from Level 2 to Level 13 as per the 7 CPC. For details, kindly download the forms from the website, that is at www.nischennai.org. And the last date for submission of applications is 45 days from the notification in the Employment News. Headquarters Southern Command invites applications for the post of Stenographer Grade 1 on deputation, including short-term contract basis, with vacancies at Pune, Mumbai and Nagpur. Total number of posts are 5 in pay level 6. Eligible officers from central, state governments, PSUs, universities and autonomous bodies holding analogous posts or with 10 years of regular service in level 4 may apply. Maximum age limit is 56 years as on the closing date. Applications in the prescribed format along with cadre clearance certificates and ACRs and APRs from the last 5 years may be sent through proper channel to Ordnance Depot, Pune within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website at www.indianarmy.nic.in. Maharana Pratap Horticulture University, Karnal, Haryana invites applications from eligible candidates working on regular basis in central or state universities, institutes, government departments, semi-government departments or PSUs for various non-teaching posts on deputation or transfer basis as per Haryana state government terms and conditions. Applications should be forwarded through proper channel to the registrar, MHU, HTI campus, Uchini, Karnal, 132001 by 30th June 2026. Late applications will not be considered. For details on the number of posts, qualifications, pay scales, terms and conditions and the application form, kindly refer to the website at www.mhu.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड नियमित आधार पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों के नाम हैं वरिष्ठ अधिकारी वित्त एवं लेखा, वरिष्ठ अधिकारी संविदा एवं खरीद, वरिष्ठ अधिकारी परियोजना और वरिष्ठ अधिकारी परिचालन एवं अनुरक्षण। विस्तृत सूचना के लिए आप देख सकते हैं हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.hngpl.in। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रहेगी 3 जुलाई 2026। कृषि विज्ञान केंद्र तिरुनेलवेली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ वैज्ञानिक अथवा प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, विशेषज्ञ बागवानी, विशेषज्ञ पशु विज्ञान और कार्यक्रम सहायक प्रयोगशाला तकनीशियन। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.rvskvk.org। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, सहायक कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एक पद उपलब्ध है जो अनारक्षित है। अन्य आवश्यक योग्यताओं, महत्वपूर्ण तिथियों और सामान्य अनुदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आईआईटी गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जुलाई 2026। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है महाप्रबंधक सिविल, महाप्रबंधक भवन एवं परिरक्षण, उप महाप्रबंधक सिविल भवन, उप महाप्रबंधक एमईपी भवन सेवाएं एवं समन्वय, उप महाप्रबंधक लेखा, सहायक महाप्रबंधक संरचना, सहायक महाप्रबंधक जियोटेक, सहायक महाप्रबंधक नगर नियोजन और सहायक महाप्रबंधक पीएसटी। इन पदों को भरने के लिए विस्तृत विज्ञापन, भर्ती नियम, पात्रता आवश्यकताएं और अन्य निर्देशों के लिए देखिए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट corporate.mmrcl.com। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट सदाशिव नगर बेंगलुरु इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है निजी सचिव 1 पद, सहायक 6 पद। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। अधिक विवरण के लिए देखिए वेबसाइट rri.res.in/careers/other-openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल

0: let's talk a bit about the origins of Father's Day. Well, Karishma, Sonora admired her father, William Jackson Smart, a Civil War veteran who raised her and her siblings alone after her mother died. And seeing the need to honor dedicated fathers like hers, Dodd began a rigorous campaign to establish Father's Day as a counterpart to Mother's Day. So Father's Day is a day set aside for honoring one's father, as well as fatherhood, paternal bonds, and the influence of fathers in society. For children, it's a day to show appreciation for their fathers and father figures. So a very happy Father's Day to all our listeners. We begin our program with the news headlines at this hour.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी कमीशन्स 3 इंडिजिनसली बिल्ड इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स इन कोलकाता, सेज स्पेशल स्टेप्स बीन टेकन टू एनहांस डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी.
1: कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी.
0: यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस एंड ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर एमबी गालिबाफ अराइव इन स्विट्जरलैंड टू होल्ड पीस टॉक्स एज तेहरान क्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन.
1: मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया.
0: And in cricket, India set a target of 378 runs for Sri Lanka in the final match of the Tri-Nation A-Series in Dambulla. Vaibhav Suryavanshi smashes fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Yoga Day. Well, Karishma, when we imagine a healthy nation, we often think of modern hospitals, breakthrough technologies and a thriving economy. Certainly, these are important markers of progress. But perhaps it is also a nation where millions of people begin the day by investing a few quiet minutes in their own well-being, isn't it?
1: बिल्कुल. और इसके साथ ही श्रोताओं, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है. योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकतव्य स्थापित करना. यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक समग्र प्रक्रिया है. और इसके साथ ही भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मेशु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है. व्यवहारिक स्तर पे योग जीवन में संतुलन और सामंजस्य का माध्यम है.
0: Yes, and rightly said, Karishma, yoga is not merely a practice of the body. It is a journey towards the source of creation itself. And no figure symbolizes that eternal quest more profoundly than Adi Yogi, the first yogi.

0: Yes, and today as the world celebrated the 12th International Day of Yoga under the theme Yoga for Healthy Aging, it highlighted an important truth that longevity alone is not enough. What matters is the quality of those years. And Karishma, we have all encountered people whose age seems secondary to their energy, resilience and peace of mind. Their secret is often rooted in discipline, mindful breathing and yoga.
1: बिल्कुल. और श्रोताओं, यह थीम हमें याद दिलाती है कि वृद्धावस्था में अच्छा स्वास्थ्य किसी चमत्कार से नहीं बल्कि जीवन भर रोजाना लिए गए सही फैसलों से मिलता है. योग भारतीय ज्ञान परंपरा की हजारों वर्ष पुरानी विरासत है. इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य, बौद्ध और जैन दर्शन तक में प्राप्त होते हैं. और इसके साथ ही भगवद गीता में अनेक स्थानों पर योग का उल्लेख मिलता है. योग के प्रमुख ग्रंथों में महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र और वेद व्यास का योग भाष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
0: यस, एंड महर्षि पतंजलि सिस्टमेटाइज्ड द स्कैटर्ड नॉलेज ऑफ योगा, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ साइंटिफिक पाथ फॉर ह्यूमन वेलफेयर. एंड डिफाइनिंग योगा, ही स्टेटेड दैट इट इज द

0: stabilization of the fluctuations of the mind. He explained that the mind can be stabilized through practice, that is abhyasa, and detachment, that is vairagya, where when the restlessness of the mind ceases, an individual realizes their true self.
1: और भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने इसी विचार पर बल देते हुए कहा कि योग एक ऐसी सदाबहार विधा है जो शरीर मन और आत्मा में तालमेल बिठाती है। देशभर में नेता और आम नागरिक इस प्राचीन अभ्यास को मनाने के लिए एक साथ एकजुट हुए। अपर शिलांग में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योग दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से योग को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाने की अपील की।
0: Yes, and in Jammu and Kashmir, the stunning banks of Dal Lake witnessed thousands participating in yoga sessions led by Lieutenant Governor Manoj Sinha. In Gujarat, yoga sessions were held even aboard Vande Bharat Express trains.
1: और इसके साथ ही योग के आठ अंगों को अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये केवल अभ्यास के अलग अलग चरण नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और अनुशासित बनाने की पूर्ण प्रक्रिया है। इनमें प्राणायाम का विशेष महत्व माना जाता है, प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयाम अर्थात नियंत्रण, और श्वास की विशेष तकनीकों द्वारा प्राण शक्ति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। अनुलोम विलोम, कपाल भाति और भ्रामरी इसके प्रमुख रूप है।
0: Absolutely, and in Odisha, where the magnificent Konark Sun Temple served as one of the flagship venues, Chief Minister Mohan Charan Majhi encouraged young people to spend at least 30 minutes practicing yoga instead of endlessly scrolling through social media. After all, how many health problems could be prevented if people devoted even 30 minutes each day to their physical and mental well-being?
1: और इसी के साथ अभिषेक, जिस तरीके से आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि योग का महत्व अब और भी बढ़ गया है। आज का मनुष्य तनाव, प्रदूषण, भागदौड़ और मानसिक दबाव से घिरा हुआ है। ऐसे समय में योग केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता भी बन गया है। यह तनाव और चिंता को कम करता है, शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। साथ ही यह प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सहायता भी करता है।
0: Yes, and at the Red Fort, nearly 20,000 participants joined yoga and meditation sessions organized by the Brahma Kumaris. And in Madhya Pradesh, President Draupadi Murmu attended the state-level celebrations in Jabalpur, further underscoring the national significance of the occasion. And across ministries, institutions and communities, the message remained the same, that wellness is everyone's responsibility.
1: और इसी के साथ श्रोताओं, योग किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है। यह जीने की एक कला है। इसका लक्ष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना है। यही कारण है कि जैन, बौद्ध और अन्य भारतीय दार्शनिक परंपराओं में भी योग के महत्व को स्वीकार किया गया है। योग व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है और अंततः व्यापक चेतना से भी जोड़ता है।
0: So June 21st is celebrated as International Yoga Day, primarily because it coincides with the summer solstice, which is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and holds immense spiritual and natural significance across many cultures. The date was chosen by the United Nations after a specific proposal from India for several key reasons. In yogic traditions, this transition represents a period of increased energy, heightened awareness and a time to realign physically and mentally.
1: और योग विद्या को वेदों में विशेष स्थान भी प्राप्त था। वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आध्यात्मिक उन्नति करना है। इसके लिए यज्ञ, उपासना, पूजा और अन्य कार्यक्रमों का वर्णन किया गया है। इन सब से पूर्व योग साधना का विधान किया गया है। इसके संदर्भ में ऋग्वेद में कहा गया है कि बिना योग परमात्मा में चित्त की एकाग्रता या उनसे जुड़ने की अवस्था के किसी भी विद्वान का कर्मकांड या यज्ञ अधूरा है। इस बात से पता चलता है कि वेदों में योग को कितना महत्व दिया गया। विष्णु पुराण में भी कहा गया कि जीवात्म तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन भी योग है।
0: Yes, absolutely. And yet perhaps the most inspiring aspect of today's celebrations was not where yoga was practiced. It was who practiced it. students, teachers, soldiers, government employees.

0: We also remember Martyr Nawab Qadir Ali Khan. Qadir Ali was an eminent Amir of Nagpur. He took a leading part in the First War of Independence in 1857. Qadir Ali organized the rebels of his region, provided financial support to them, and led them in attacking the British establishments at several places.
1: He was caught by the company troops during their attack on the rebels and charged with treason and rebellion. He was sentenced to death and was executed by hanging on the 21st of June, 1862.
2: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं विष्णु प्रभाकर को, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार और जीवनीकार थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्तांत तथा बाल साहित्य सहित अनेक विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय चेतना का चित्रण देखने को मिलता था। और आपको बता दें कि उनके सबसे चर्चित कृति अवारा मसीहा, जो बांग्ला साहित्यकार शरद चट्टोपाध्याय की जीवनी है, इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी लेखनी की और उन्होंने आकाशवाणी और रंगमंच के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। पद्म भूषण, मूर्ति देवी पुरस्कार, तमाम ऐसे अवार्ड्स थे जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया।
3: Niccolo di Bernardo de Machiavelli passed on this day, 1527. He was a Florentine diplomat, author, philosopher and historian who lived during the Italian Renaissance. He is best known for his political treatises, The Prince, written around 1513, but not published until 1532, 5 years after his death, and he has often been called the father of modern political philosophy and political science.
2: इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम विनीता सोरेन को भी याद कर रहे हैं, जो भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा था। और आपको बता दें कि झारखंड के सरायकेला जिले के केसोरासो गांव से उनका जन्म हुआ था, जहां पर वो एक साधारण किसान परिवार से आने वाली थी। और इसके बाद भी उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष पहचान बताई। और विनीता सोरेन ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई अभियानों में भाग लिया। वर्ष 2012 में उन्होंने इको एवरेस्ट स्प्रिंग अभियान के तहत 26 मई 2012 को माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया था।
3: Leon Uris passed on this day in 2003. He was a best-selling American author of historical fiction, best known for his sweeping, extensively researched novels that tackled major 20th century conflicts, the Holocaust, and the Middle Eastern and Irish history. His work often explored resilience and ideologies, with his stories heavily influenced by his own life experiences and heritage.
2: इसके साथ ही आज हम मुद्रास का वास्तविक नाम उन्हें याद कर रहे हैं, सुभाष चंद्र था। उनका जन्म आज ही के दिन 1933 में लखनऊ में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार थे। और उन्होंने अपने वैचारिक दृष्टि, सामाजिक सरोकार और मान्यताओं पर तीखी टिप्पणी की, और इसके लिए वे विशेष रूप से जाने जाते थे। उन्होंने साहित्य, रंगमंच, पत्रकारिता और सांस्कृतिक विमर्श के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने आकाशवाणी और पत्रकारिता से भी जुड़कर कार्य किया। उनके प्रमुख उपन्यासों में अचला, शांति भंग और हम सब मनसाराम उल्लेखनीय है। नाटकों में उन्होंने तेंदुआ, मर्जीवा और आला अफसर विशेष रूप से चर्चित रहा, जिसके बाद उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भारतेंदु सम्मान और यश भारतीय सम्मान शामिल है।
3: Prince William, William Arthur Philip Louis, celebrates his birthday today. He is, of course, the heir apparent to the British throne. As the eldest son of King Charles III and Diana, Princess of Wales, he stands first in line to become the King of the United Kingdom and 14 other Commonwealth and realms, and also Karishma Group Captain, formerly Wing Commander Abhinandan Vardhaman, also celebrates his birthday today. He is an officer in the Indian Air Force, IAF, who became a national hero in 2019. And Vardhaman, during an aerial dogfight, he courageously shot down a Pakistani F-16 fighter jet before his own MiG-21 Bison was hit, forcing him to eject and land in Pakistan. His time in enemy captivity and his composed, resilient demeanor upon his release captivated the Indian public and highlighted military bravery. And also, of Dibakar Banerjee was born on this day in 1969. He is a highly acclaimed Indian film director, screenwriter, producer, and advertisement filmmaker. He is widely recognized for redefining Indian independent cinema and bringing a sharp, realistic portrayal of the Indian middle class to Hindi films. Before joining the film industry, he was

0: Successful ad filmmaker and copywriter, eventually left advertising to co-found the production company Watermark, and he subsequently founded his own independent production house, Dibakar Banerjee Productions.
1: इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम जीत सिंह नेगी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। उन्हें उत्तराखंड का पहला लोकप्रिय लोक गायक माना जाता है। उन्होंने गढ़वाली लोक संगीत को नई पहचान दिलाने और उसे देश विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी मधुर आवाज और लोक जीवन से जुड़े गीतों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। जीत सिंह नेगी ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने गीतों को व्यापक पहचान दिलाई। उनके प्रसिद्ध गीतों में तैके लानी रहना, बेडू पाको, तमाम ऐसे गाने शामिल हैं। वे केवल गायक ही नहीं बल्कि गीतकार और संगीतकार के रूप में सम्मानित भी थे। उनके योगदान के कारण गढ़वाली लोक संगीत को नई पीढ़ी में लोकप्रियता मिली और इसके चलते उन्हें कई सम्मान भी मिले, जिसमें उत्तराखंड गौरव सम्मान और गढ़वाली लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया।
0: Yes, and Jean-Paul Sartre was born on this day.

0: to Europe, he famously rejected the 1964 Nobel Prize in Literature. He argued that a writer should not allow themselves to be turned into an institution. And of course, Karishma, Rima Lagu also was born on this day. She was a celebrated Indian stage, film and television actress. She's best known for her endearing modern screen mother roles in blockbuster Bollywood movies like Maine Pyar Kiya, Hum Aapke Hai Kaun and Kuch Kuch Hota Hai. So let's go ahead and listen to a dialogue from one of her movies.
1: Suman, zara chal to.
2: Kahan ke ji?
1: Chal zara prem se uski shaadi ki baat kar aaye.
2: Ji. Ji?
1: Haan, sochti hoon jitni jaldi ho sake is ghar mein bahu le aao. Chal aaja.
2: Ji.
1: Aaja. प्रेम
3: हाय माँ
1: दफ्तर जा रहा है बेटे
3: हाँ क्यों
1: कुछ नहीं नाश्ता कर ले और थोड़ी देर बैठ हमारे साथ
3: श्योर माँ
1: आओ क्या हुआ
3: ना कुछ भी थोड़ी
1: प्रेम हम लोग तेरी शादी की बात करने आए हैं
3: शादी
1: हाँ तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है ना मैंने क्या हुआ रे जैसी तूने कहा था बिल्कुल वैसी है वो लड़की सलवार कमीज चूड़ीदार वूड़ीदार कुछ नहीं पहनती पहनती है तो बस जीन्स स्कर्ट मीडी मिनी बस
3: लेकिन माँ मेरी बात तो सुनना
1: अरे घबरा मत उसके बाल बिल्कुल बड़े नहीं है छोटे छोटे पॉप कट अरे वो ये है वो है खुश
4: और श्रोताओं अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का तो अनुमति दीजिए मुझे और अभिषेक मुखोपाध्याय को नमस्कार
0: नमस्कार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों

0: में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrey in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic, surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Defence Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of 3 indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. The main event in the country was held in Kolkata's Red Road, led by Prime Minister Narendra Modi, who performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness.
2: Yoga केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: Highlighting the International Yoga Day theme for this year, Yoga for Healthy Aging, the Prime Minister said yoga is not just a physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. She said yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life.
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
1: Vice President C.P. Radhakrishnan participated in the Yoga Day celebrations in Leh. The Vice President said that yoga is much more than a form of physical exercise and represents an ancient gift from India to humanity. Thousands of residents across the UAE marked International Yoga Day today with the mega yoga sessions that transform community venues into hubs of wellness and cultural exchange. In Dubai, the Consulate General of India organized a yoga session at the Dubai Police Officers Club in association with Dubai Police. More than 1,500 people of all ages took part in the event. So the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is currently underway at over 5,000 centres across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates amid tight security. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. The NTA has said that student-friendly facilities are being provided at centres including drinking water, ORS ambulances and shaded waiting areas for parents. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has assured that all necessary arrangements were already made for the smooth conduct of the exam. In cricket, India A have set a target of 378 runs for hosts Sri Lanka in the summit clash of the Tri-Nation A series at the Ranagiri Dambulla International Stadium. In reply, Sri Lanka were 243 for 6 in 33 overs when reports last came in. In FIFA World Cup, Spain will take on Saudi Arabia in Group H fixture tonight at Atlanta in United States. The match will begin at 9:30 p.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, गाते गुनगुनाते के इस सफर में आपके साथ मैं हूं शिव प्रकाश। जी हाँ, आगाज करते हैं एक ऐसी फिल्म से, एक ऐसे नगमे से जिसने बहुत शोहरत बटोरी अपने गानों के लिए, अपने संगीत के लिए। ये फिल्म थी 1990 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म आशिकी। जी हाँ, महेश भट्ट का शाहकार। वो इस फिल्म के निर्देशक के रूप में थे और निर्माता थे गुलशन कुमार, संगीत की दुनिया के बादशाह। और इस फिल्म ने बहुत कम बजट में काम पूरा हुआ इस फिल्म का, वो लगभग बताते हैं कि 30 लाख के करीब था। और फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई उस वक्त में की जब ये एक बहुत बड़ी रकम होती थी। आइए इसी फिल्म का एक बहुत बहुत ही प्यारा सा नगमा आप तक पहुंचाते हैं। स्वर है कुमार सानू का।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। आपके साथ हूँ मैं शिव प्रकाश। और अगला नगमा हमने ले लिया है फिल्म लम्हे से, एक बेहतरीन नगमा, एक शानदार नगमा आप सबके लिए। यश चोपड़ा इस फिल्म के निर्देशक थे और शिवहरि का संगीत, श्रीदेवी, अनिल कपूर, वहीदा रहमान और अनुपम खेर जैसे कलाकार इस फिल्म में थे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, गाते गुनगुनाते का ये सफर आज अब समाप्त होने जा रहा है, और अगला जो नगमा है वो आज का आखिरी नगमा होगा। फिल्म है आज का अर्जुन, स्वर है लता मंगेशकर और शबीर कुमार का, और फिल्म को बनाया था KC बुकाड़िया, इसके निर्देशक। फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन, जयाप्रदा, राधिका, शरद कुमार, संगीत बप्पी लहड़ी का।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
1: श्रोताओं, इस बार भी हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पद्म सम्मान प्राप्त विभूतियों की कहानी से और हम इन दिनों पूर्वोत्तर भारत के उन विभूतियों से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया और 2026 में उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आज कहानी सुनते हैं जोगेश दुरे की। जोगेश दुरे ने पूर्वोत्तर भारत में रेशम को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया और उन्हें खेती और सिल्क हेरिटेज के क्षेत्र में 2026 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आइए हमारे सहयोगी उत्पल और निशा द्वारा तैयार इस रिपोर्ट को आपको सुनवाते हैं।
2: दशकों से डॉक्टर जोगेश दुरे असम की अनमोल रेशम परंपरा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। कृषि और रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री मिलने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए डॉक्टर जोगेश दुरे ने कहा कि यह सम्मान असम के मूगा और एरी रेशम को दुनिया भर में पहचान दिलाने तथा एरी रेशम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने के उनके वर्षों के प्रयासों की सराहना है।
3: 33 इयर्स मेरा ये रेशम डिपार्टमेंट में काम किया है। मेरा लक्ष्य था कि हमारा जो असम का मुगा का साथ एरी को भी पूरा ये विश्व में फोकस में लाने के लिए हम 11 साल हम डायरेक्टर का रूप से हम सर्विस किया था ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कोकराझार में। इसमें हम एरी को लेके ही हम ये बोडोलैंड सिल्क पार्क विश्व में कहीं पे नहीं है, सिर्फ एरी को लेके ही हम ये कोकराझार में ये सिल्क पार्क हम एस्टेब्लिश किया है।
2: डॉक्टर दुरे एक सम्मानित रेशम विशेषज्ञ शोधकर्ता और प्रशासक हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में खास तौर पर एरी और मूंगा रेशम के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। ये दोनों रेशम असम की संस्कृति और अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए हैं। शोध, प्रशिक्षण, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से उन्होंने किसानों और कारीगरों को बेहतर तकनीक अपनाने में मदद की, साथ ही रेशम उत्पादन की पारंपरिक विधियों को भी सुरक्षित रखा। उनके प्रयासों से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उद्योग से जुड़े हजारों लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा हुए। उन्होंने कोकराझार में बोडोलैंड सिल्क पार्क के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और असम की पारंपरिक रेशम किस्मों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार काम किया। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का समन्वय करके डॉक्टर देवरी ने रेशम क्षेत्र को मजबूत बनाया और असम की समृद्ध वस्त्र विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निशा साहू।
1: बारह जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और देश भर की तरह त्रिपुरा में भी इस दिशा में बहुत से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी ने हमें त्रिपुरा में आयोजित इस दिवस के अवसर पर हुई गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: त्रिपुरा बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य भर में बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहा है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। दुनिया के अन्य हिस्सों के तरह त्रिपुरा में भी इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना था। बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर अगरतला के निकट जिरानिया में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्रिपुरा बाल अधिकार संरक्षण आयोग TCPCR द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान बाल श्रम और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई, जो आज भी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं। वक्ताओं ने बताया कि ये सामाजिक बुराइयां विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा, आत्मविकास और बेहतर भविष्य के अवसरों से वंचित कर देती है। गरीबी और सामाजिक दबाव के कारण कई बार परिवार ऐसे निर्णय लेने को मजबूर हो जाते हैं जिनका बच्चों के विकास और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम में कहा गया कि बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बच्चों का समय पढ़ाई, खेलकूद और जीवन की मजबूत नींव तैयार करने में लगना चाहिए, न कि मजदूरी करने में। सभी ने परिवारों, समुदायों, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों से मिलकर बाल श्रम और बाल विवाह रोकने की अपील की। त्रिपुरा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जयंती देव वर्मा ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के लिए आयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र विकास के अधिकारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को बाल श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों और बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न संरक्षण तंत्रों की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा आयोग पूरे वर्ष बाल शोषण, बाल तस्करी, बाल विवाह और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों से जुड़े मामलों पर भी काम करता है। साथ ही पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आयोग नियमित रूप से विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है, ताकि सरकारी योजनाओं और बाल संरक्षण सेवाओं का लाभ जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। TCPCR के सदस्य सचिव माधव पॉल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और सुरक्षित वातावरण के निर्माण के लिए लगातार जागरूकता बेहद जरूरी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हर बच्चे को बिना किसी शोषण या मजदूरी के बोझ के सीखने, बढ़ने और सपने देखने का अधिकार है। ये दिन पूरे वर्ष सतर्क रहने और सामूहिक प्रयास जारी रखने का भी संदेश देता है। जिरानिया में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम ने एक बार फिर ये स्पष्ट किया कि बच्चों का स्थान कार्यस्थलों पर नहीं

0: बल्कि विद्यालयों और खेल के मैदानों में है। बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में त्रिपुरा के प्रयास लगातार जारी हैं। संदेश स्पष्ट है, एक बाल हितेशी समाज तभी बन सकता है जब हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और आशापूर्ण भविष्य जीने का अवसर मिले। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ नॉर्थ ईस्ट डायरी के लिए मैं वैष्णवी।
1: श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं नागालैंड, और नागालैंड के वोखा जिले में माउंट तेई, ये एक अनूठा पर्यटन स्थल है। और इस पर्यटन स्थल में देश विदेश से लोग ट्रैकिंग के लिए जाते रहते हैं, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व भी है। नागालैंड की लोथा जनजाति के बहुत से विश्वास इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस अनूठे पर्यटन स्थल की आज हम आपको यात्रा करवाते हैं। हमारी कोहिमा संवाददाता ने हमें ये खास रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: वोखा जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट तेई एक प्राकृतिक आश्चर्य होने के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र भी है। लोथा समुदाय के लिए ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक पवित्र धरोहर है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसे एचुई ली यानी मृतकों की भूमि और आत्माओं के निवास स्थान तक जाने वाला मार्ग माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर तीन पवित्र स्थल मौजूद हैं। पहला है एचुई फारी, जिसे मृतकों का बागीचा कहा जाता है। दूसरा है एचुई कू, जिसे आत्माओं की दुनिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। तीसरा है एचुई चू, एक पवित्र झरना जो मृत्यु, भाग्य और आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ माना जाता है। घने जंगलों के बीच स्थित मृतकों के बगीचे से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। बुजुर्गों के अनुसार यहां आने वाले लोग फलों को खा सकते थे, लेकिन उन्हें अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने वहां से मनके जैसे दिखने वाले फल को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे पर्वत से बाहर नहीं निकल सका, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अंततः फल वापस रखने के बाद ही वो वहां से जा पाया। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मृतकों का मार्ग है, जिसे आत्माओं के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। परंपरा के अनुसार केवल प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त लोगों की आत्माएं ही इस मार्ग से गुजर सकती हैं, जहां अदृश्य रक्षक उनके परलोक का निर्णय करते हैं। इसके पास ही एक पवित्र झरना है, जिससे कई शुभ अशुभ संकेत जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि यदि झरने की एक बूंद किसी व्यक्ति की हथेली पर गिर जाए तो ये मृत्यु का संकेत माना जाता है। वहीं झरने के आसपास दिखाई देने वाली पद चिन्हों को भी भाग्य का संकेत समझा जाता है। यदि पद चिन्ह गांव की ओर हो तो उसे लंबे जीवन का प्रतीक माना जाता है, जबकि पवित्र मार्ग की ओर जाते पद चिन्ह आसन्न मृत्यु की चेतावनी माने जाते हैं। आज माउंट तेई वोखा जिले के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी लोक कथाओं का अनुभव करने पहुँचते हैं। साथ ही पर्वत की नाजुक पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण के सख्त उपाय भी किए जा रहे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियाँ आज भी लोथा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं। यही कारण है कि माउंट ती केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि स्वदेशी विरासत, लोक आस्था और आध्यात्मिक विश्वासों का एक जीवंत केंद्र भी है। असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है, और बहुत सारी ऐसी पहल बीते वर्षों में हुई हैं जिससे पूर्वोत्तर भारत के राज्य पर्यावरण संरक्षण के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में एक ऐसी पहल हुई, तवांग जिला प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने को लेकर एक खास कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने इस संबंध में ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: प्लास्टिक कचरे को कम करने और टिकाऊ उपभोग के तरीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तवांग जिला प्रशासन ने सिंगल यूज पीईटी पॉलीथिलीन टेरेफेटलेट पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो द्वारा जारी आदेशानुसार 1 जुलाई से जिले भर में 2 लीटर से कम

0: क्षमता वाले सिंगल यूज प्लास्टिक की पानी की बोतलों की बिक्री, वितरण और सप्लाई पर रोक रहेगी। ये आदेश सभी सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों, कमर्शियल प्रतिष्ठानों, इवेंट ऑर्गेनाइजर, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, वेंडरों और आम जनता पर लागू होता है, ताकि वे पानी के डिस्पेंसर, रिफिल स्टेशन, वाटर फिल्टर या ज्यादा क्षमता वाले कंटेनर जैसे उचित विकल्प का इंतजाम कर सके। आदेश में ये भी चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026, अरुणाचल प्रदेश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बाय लॉज 2023 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रतिबंधित सामान जब्त करना और कानून के अनुसार जुर्माना लगाना शामिल है। प्रशासन ने इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सहयोग का पान किया है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर समय मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत का विकास बहुत तेजी से हुआ है। जहां एक तरफ ढांचागत विकास को हमने देखा है, वहीं पर्यटन और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में भी पूर्वोत्तर भारत ने अपने विकास की गति को हासिल किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में निवेश और उद्योगों के अवसरों को भी खोला गया है। तो आज हम कार्यक्रम के अंत में आपको एक विशेष साक्षात्कार सुनवा रहे हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ। आइए ये खास बातचीत सुनते हैं।
2: पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप
3: कैटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
2: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में पीएम डिवाइन, तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
3: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स, और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके,

0: ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएमडीवाई योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर

0: पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड वेन दे डू दैट They also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.

हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीम

0: लोगों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Talks between the US and Iran aimed at strengthening the fragile interim agreement and advancing efforts to end the West Asia conflict began in Switzerland's Bergenstock today. US Vice President J.D. Vance is leading the US delegation, while Iranian delegation is led by Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. Qatar and Pakistan are mediating the talks. The meeting comes after Tehran closed the Strait of Hormuz again over Israel's continued attacks on Lebanon. However, the US military said that the waterway remains open to all vessels. Tehran and Washington are set to participate in quadrilateral talks later in the day with representatives of Qatar and Pakistan. Ahead of the four-party talks, the US delegation, which also comprises Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, held a meeting with the Pakistani mediating team. Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Defense Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of 3 indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted amid tight security arrangements today. It was held across 551 cities in India and 14 cities abroad for more than 22.7 lakh candidates. The examination was conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in English and 12 Indian languages. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The National Disaster Response Force, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit a report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. The main event in India was held in Kolkata's Red Road, led by Prime Minister Narendra Modi, who performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Prime

कुछ गीत मौसम की तरह होते हैं, कभी ठंडी हवा बनकर सुकून देते हैं तो कभी किसी पुरानी याद की तरह चुपचाप दिल के करीब आकर आ बैठते हैं। सदाबहार गीतों की यही तो खूबसूरती है, वक्त चाहे जितना बदल जाए ये गीत और इनके एहसास हमेशा नए से लगते हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ हूं मैं नूपुर, सुन रहे हैं आप फिल्म सपनों का सौदागर से ये गीत जिसे गाया मुकेश शारदा और साथियों ने, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

अगला गीत फिल्म शहनाई से आवाज है मोहम्मद रफी, आशा भोसले की, संगीत बनाया रवि ने और गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने। गीत के बाद ठीक 6:20 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार।

0: Good evening, listeners, and welcome to this yet another fresh edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2371-7117 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7117 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: यूएस एंड ईरान टॉक्स टू स्ट्रेंथन इंटरिम डील बिगिन इन स्विट्जरलैंड। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस एक्सटेंड डाउनवर्ड स्लाइड लास्ट वीक। And domestic investors to focus on macroeconomic data and geopolitical developments for cues next week.
1: अंतरिम समझौते को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत शुरू। सराफा बाजार में पिछले हफ्ते भी सोने और चांदी में गिरावट जारी और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक घटनाओं पर।

0: समाप्त करने के प्रयासों और अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते को मजबूत करने के उद्देश्य से आज स्विट्जरलैंड में महत्वपूर्ण वार्ता शुरू हुई। इन वार्ताओं में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की ओर से स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची बातचीत में शामिल हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब तेहरान ने दावा किया है कि इसराइल द्वारा लेबनान पर जारी हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। ईरानी सरकार के अनुसार स्विट्जरलैंड में ईरानी वार्ता दल और कतर के मध्यस्थों के बीच एक बैठक हुई है।
1: एंड आवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, यशपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। यशपाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें?
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: सवाल पूछें।
2: हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन।
1: जी, गुड इवनिंग।
2: माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो मैंने 2 साल पहले बजाज मल्टी एसेट में इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न तो ठीक है 10% के करीब है, और उसके बाद मैंने 1 by 1 3 और ले लिए विद इन मतलब लास्ट 6 मंथ्स में। एक निपॉन इंडिया का है, एक फ्रैंकलिन इंडिया, और अभी रिसेंट DSP लिया है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा सा एडवाइस लेनी थी कि ये चारों फंड में आई कैन कीप इट, और इनमें से कोई 2 कंटिन्यू करूँ और 2 से एग्जिट कर लूँ, और 2 कौन से बेस्ट रहेंगे इनमें से, कैन यू एडवाइस प्लीज, थैंक यू।
3: यशपाल जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपने एक मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के ही 4 फंड्स में अलग अलग में निवेश कर दिए, तो देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जो ज्यादातर फंड्स होते हैं एक कैटेगरी के अंदर, उनमें बहुत संभावना होती है कि उनके जो स्टॉक्स है वो काफी सारे कॉमन हो। अगर आप इनका एक मंथली फैक्टशीट निकाल के देखेंगे जहां पे इनका जो पोर्टफोलियो होता है, आप ये पाएंगे कि बहुत हद तक एक ही तरीके के स्टॉक्स आपके हर 4 फंड्स में है। इसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि बजाय इसके कि आप 4 अलग अलग फंड्स में निवेश करें एक ही कैटेगरी के, आप खाली 2 फंड्स चुन सकते हैं जिनका थोड़ा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो नए ना हो, कम से कम उनमें कुछ 3 से 5 साल का, 3-4 साल का उसमें एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, और उसके हिसाब से आप 2 फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं ये 3 प्रकार के एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, जो कि आमतौर पे इक्विटी, डेट, फिक्स्ड इनकम और साथ में कमोडिटीज रहते हैं। कमोडिटीज में ज्यादातर गोल्ड रहता है, तो एक आपके पोर्टफोलियो को एक थोड़ा स्टेबिलिटी भी देता है।
0: जी, अगले कॉलर है उत्तर प्रदेश से राजेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: सर, मेरा एक सवाल है।
0: जी,
4: मैं राजेंद्र, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और मैं SIP करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड के हिसाब से। मेरा SIP नहीं होता है अंगूठा लगाने की वजह से, इसका क्या उपाय हो सकता है कि मैं SIP कर सकता हूँ पर मंथ?
3: राजेंद्र जी, आपको देखिए आजकल तो ऑनलाइन भी SIP हो जाती है, काफी सारी फिनटेक एप्स आ गई, आप अपने किसी रिलेटिव की सहायता से या फिर जो आप है एक एम्फी की वेबसाइट पर जाकर के वहां पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक वहां पे आपका पिन कोड डाले और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी है नियरेस्ट वहां की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। और मेरी समझ में इसके वजह से नहीं रुकना चाहिए, अगर आपका बैंक में खाता एक ऑलरेडी है और आपके पास जरूरी दस्तावेज है जो KYC के लिए होते हैं हमारे पास, अगर आपके पास एक आधार है, एक पैन कार्ड है, तो उसके बाद आजकल तो सारा डिजिटली हो जाता है, तो ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप एक दफा मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो एम्फी की वेबसाइट पे किसी की सहायता लेकर के वहां से डिटेल्स निकलवाएं और उनको संपर्क करें।
0: हाँ, क्योंकि हम भी जब निवेश हमने भी जब शुरू किया, जब ऑनलाइन किया है, तो हमें भी कहीं हस्ताक्षर करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, कहीं साइन नहीं करना पड़ा, इसलिए कभी अंगूठा लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को।
3: जी जी, वो ज्यादातर तब होता है जब हम ऑफलाइन तरीके से जाते हैं, जब पूरा पेपर वर्क करते हैं, वहां पे फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, बट आजकल डिजिटली सारी चीजें संभव है, और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स है तो मेरी समझ में उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
0: जी
1: जी, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, केशव जी, सवाल पूछें।
5: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार
5: जी, मेरा एक सवाल है और एक आपसे शिकायत, समझ लीजिए जानकारी लेनी है। पहला सवाल तो ये है कि आप कोई नया अगर

0: म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाना चाहे तो उसको बैंक के थ्रू लगाना चाहिए कि आप कोई एजेंट को हमें खोलना पड़ेगा या उससे राय लेनी पड़ेगी। और जैसे आप कार्यक्रम, दूसरा सवाल यह है कि जैसे आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद बोलते हैं कि ये आकाशवाणी की जिम्मेदारी नहीं है, आप एक्सपर्ट से राय लें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब हमारे एक्सपर्ट आप लाते हैं, उनसे हम सवाल करते हैं, उन्हीं से ही हम राय लेते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्यों आपने लास्ट में डालते हैं, इसके बारे में जरा सवाल का जवाब दीजिएगा। क्योंकि आप कोई सवाल ऐसा होता है जो आपको नहीं बताना होता और एक्सपर्ट को बताना होता है, पर आप एंकर लोग ही आप उसका जवाब देते हैं। धन्यवाद
1: जी। पहले इनके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि ये निवेश का मसला होता है और रुपए पैसे से संबंधित बात है, और इसमें हर किसी का अपना फैसला होता है, क्योंकि वो पैसा उसका होता है, इसलिए जिम्मेदारी उसी को लेनी पड़ेगी। आप अपनी समझ से हमारे एक्सपर्ट जो कुछ बताते हैं, आप उससे अपनी राय कायम करके अपनी समझ से अपनी जिम्मेदारी से निवेश कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी से, तो फिर आप किसी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के पास जाकर उससे सीधे सलाह लेकर आप निवेश कर सकते हैं। जी
2: केशव जी, जो आपका पहला सवाल था कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए क्या बैंक के जरिए करना बेहतर है या किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए करना बेहतर है, देखिए मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीकों से अगर आप जैसे जब निवेश करेंगे तो वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है। जो बैंक है, जो म्यूचुअल फंड एजेंट है, ये केवल एक म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आपके लिए एक फैसिलिटेशन करेंगे, जो भी सारा पेपर वर्क है और जो एक बेसिक राय होती है कि आपको किस फंड में निवेश करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। दोनों ही जगह से सेम रहेगा। यहां पे जरूरी है कि आप जिससे राय ले रहे हैं, जिसकी सहायता आप ले रहे हैं, उस आदमी का, उस पर्सन का कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर उन पे आपको कितना भरोसा है। कई दफे ऐसा होता है कि आपकी जान पहचान में कोई होते हैं जिनकी बातों पे आपको काफी भरोसा होता है, तो बेहतर यह रहेगा कि आप या तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, चाहे आप बैंक जाकर के, अगर बैंक में आपका कोई ऐसा मैनेजर है जो कि जिनकी बातों पे आपको बहुत यकीन है, आपने पहले भी देखा है कि उनकी चीजें सही रहती है, आप वहां से भी कर सकते हैं, वो रेगुलर प्लान में आपका निवेश कराएंगे। और अगर आप म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू जाते वहां से भी सेम रहेगा। बाकी जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका यह है कि आप खुद भी निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली। फर्क यह रहेगा दोनों में, जब आप खुद निवेश करेंगे आपको एक डायरेक्ट प्लान मिलेगा, और अगर आप बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए करेंगे वहां पे आपको रेगुलर प्लान मिलेगा। दोनों में फर्क एक थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो का होता है। देखिए, जब भी आप निवेश करेंगे तो बैंक के जरिए करेंगे, बैंक को और म्यूचुअल फंड एजेंट, उन लोगों को थोड़ा सा कमीशन मिलेगा जिसका असर आपके खर्चे पे पड़ेगा, एक्सपेंस रेशियो पे। ये आपको कुछ अलग से नहीं देना पड़ेगा, ये आपकी डेली एनएवी में एडजस्ट होता है, बट देखा गया कि एक बहुत ही लंबे समय में इसका एक कंपाउंडिंग के जरिए थोड़ा सा अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। पर वहीं पर अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं, अगर आप खुद किसी फिनटेक ऐप से या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से एमएफ सेंट्रल के जरिए निवेश करते हैं, तो वहां पर जो भी सारी एक बेसिक फॉर्मेलिटीज है, और फॉर्मेलिटीज से ज्यादा ये सब चीजें तय करना कि आपको किस फंड में निवेश करना चाहिए या किस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, वो बताने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर तो आप इन सब चीजों की जानकारी रखते हैं तो आप इसके जरिए जा सकते हैं, नहीं तो शुरुआती तौर पे बेहतर रहेगा कि आप किसी की सहायता लें और उनसे निवेश करें। रेगुलर प्लान के जरिए ही सही, आप म्यूचुअल फंड एजेंट या बैंक के थ्रू आप उसमें निवेश जारी करें।
3: Listeners, you are tuned to Market Mantra, the program which brings to you all the economic news. And today being Sunday, we entertain queries on mutual funds. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2371-7117 and 2371-7106, and do prefix the code 011. We have in our studios today mutual fund expert Akar Rastogi.
1: और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखें सोने और चांदी का क्या हाल रहा। पिछले हफ्ते सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव बना रहा। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उनके आधे से ज्यादा नीति निर्धारकों ने संकेत दिया है कि इस साल आगे चलकर दरों में वृद्धि हो सकती है। ताजा आर्थिक अनुमानों में सख्ती की वजह से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और डॉलर इंडेक्स 101 पर पहुंच गया। अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड्स में भी बढ़त दिखाई दी, इसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोना वायदा पिछले सप्ताह 2.2% गिरकर 1,47,203 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जुलाई अनुबंध

0: across the sectors. So definitely between the two, a Nifty 50 fund or a Sensex index fund would be a better choice.
1: Okay, Akar, coming back to the discussion where we left, SIP inflows continue to hit record levels. Are we seeing a fundamental shift in how Indian households save and invest? Is there a shift in the risk appetite? What's your expert comment on this?
0: So as we were discussing, one is that the awareness has definitely increased. And because of the awareness, I believe, investors have, now started investing more into mutual funds, more into the equity products as compared to many, many years back. And SIP is definitely making it very easy for them because, you don't have to invest a lump sum. You don't have to have a huge amount. Now, SIP is possible with just 100 rupees a month. So that is helping.
2: Yeah. और देखें एफपीआई का क्या हाल रहा. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने जून में अब तक 60,471 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं, लेकिन उनके रुख में इस लिहाज से बदलाव आया है कि हफ्ते के 5 कारोबारी दिनों में से 3 दिन उन्होंने लिवाली की. भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की दोबारा दिलचस्पी कायम करने में रुपए की स्थिरता का बड़ा हाथ रहा. सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों को कैपिटल गेन्स और ब्याज से होने वाली आय पर मिली छूट से और निवेश की सीमा हटाए जाने से इस महीने अब तक भारतीय ऋण बाजार में रिकॉर्ड विदेशी निवेश देखने को मिला है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस महीने अब तक एफए रूट से 18,780 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो अक्टूबर 2025 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. डेट जनरल लिमिट श्रेणी में 8,104 करोड़ रुपए और वीआरआर में 4,028 करोड़ रुपए का निवेश आया. आकार, ये जो एफआईआई के हम एफपीआई के आंकड़े जो देख रहे थे पहले, चलो शेयर बाजार में तो हमें पता है कि स्टॉक मार्केट से उनके पैसे निकल ही रहे थे, लेकिन ये जो नया स्टेप हमने देखा जो सरकार ने अभी उठाया था, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए सिक्योरिटीज के लिए कैपिटल गेन्स में रिलैक्सेशन दी है उनको और लिमिट हटाया गया, इससे क्या हमारा बॉन्ड मार्केट अभी विदेशी निवेशकों के लिए काफी आकर्षक बन गया है और ये अभी कायम रहेगा?
0: जी देखिए, आकर्षक तो डेफिनेटली बन गया है क्योंकि काफी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं. एंड बाकी कितना कायम रहता है उस पर थोड़ा सा कमेंट करना भी मुश्किल रहेगा
2: क्योंकि अभी जापान का खतरा भी है.
0: जी जी जी, तो वो देखना पड़ेगा.
2: तो क्या जापान में आगे अगर फिर ब्याज दरें बढ़ी तो फिर से पूरी दुनिया में हम देखेंगे पूंजी इधर से उधर होने के कुछ संभावनाएं?
0: जी देखिए, वो भी है और वहीं पे एक अभी फेड की भी अगर जो अभी लेटेस्ट मीटिंग थी तो वहां पे काफी हॉकिश टोन था और उसमें ये बोला गया है कि 2026 में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक रेट हाइक तो होगा
2: ही.
0: और अभी पिछली जो हमारी आरबीआई की भी मीटिंग थी उसमें भी चीजें थी, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा संभल कर देखना पड़ेगा. बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि उनको बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए. जो आपका फिक्स्ड इनकम का पैसा भी है उसके लिए वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड फंड में निवेश करना उनके लिए बेहतर रहेगा.
1: All right, now let's take a look at how the markets are expected to show up next week. Domestic markets are expected to focus on economic releases, geopolitical developments, commodity prices, trends in foreign investment flows, and movements in the rupee for cues during the upcoming holiday shortened week. Market participants will track the core industries data scheduled to be released tomorrow. Meanwhile, stock markets will remain closed on 26th of June on account of Muharram. In the United States, the Personal Consumption Expenditures Price Index for May and the third estimate of the first quarter GDP print will be closely watched. Stronger than expected data could reinforce the Federal Reserve's hawkish stance and influence global market sentiment. Akar, we've always been repeatedly saying that when you invest, forget, don't watch it very, very closely. You just said this a short while ago in this program also. So what is the importance of time horizon when we are investing in the mutual fund industry? What's your advice to our listeners on this?
0: So I would like to talk about two things parallelly. One is a time horizon and then one is choosing the right asset class. Because quite often what happens

0: interim deal begin in Switzerland. In bullion market, gold and silver prices extend downward slide last week, and domestic investors to focus on macroeconomic data and geopolitical developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट हैज रिलेंटलेसली बीन वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise, and of course the concept which has been reiterated time and again that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
2: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे, हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, वो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा लास्ट ईयर का, अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट

0: आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया।
1: सुरेश जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं। तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है। अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है। जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है। तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था। और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो। एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के,
0: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
1: बिल्कुल। आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्गत एक स्कीम था जो कोविड में में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओज और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था, अभी देखिए कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन
0: जी।

0: ठीक है, पीपीए किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो औरों देशों से बहुत, सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेज और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी। और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट पे इम्प्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
1: Yes.
2: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
1: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव,
2: जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है. नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी. हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्ष

0: में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान 863 बिलियन डॉलर का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन ए रो। तो एक बहुत बड़ी चीज है, जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारा आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ नई बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
0: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमईज है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: ओके, अनदर पॉइंट मिस्टर चिनॉय विच आई वुड लाइक योर यू नो व्यू ऑन दैट लॉजिस्टिक्स, यू नो पीएम गति शक्ति, वेयर दे हैव टेकन अ मल्टी मॉडल अप्रोच टू फिजिकल कनेक्टिविटी, देन देयर इज लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, यू नो द वे द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड वेयर यू कैन जस्ट ट्रैक रियल टाइम कार्गो, और देयर आर सो मेनी रिफॉर्म्स फॉर फास्टर कस्टम क्लियरेंसेज एंड स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट सपोर्ट। हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज फॉर क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, बोथ फॉर डोमेस्टिक and for the foreign investors?
2: So Sunil ji, you've talked of 3 different things and I'll answer each one separately. So first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, you know, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown. A lot of our exports were import dependent. I mean, even take gems and jewelry. You know, we import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. Now the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
2: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
1: Yes.
2: And the third was that when you exported, you didn't have access to credit and there was no guarantee for the export. Now, all these three issues have been actually addressed by the government in the ease of doing business. And particularly the first is you have computerize the customs forms. Second, you've increased the turnaround, decreased the turnaround time, which was like 14 days, 21 days to less than 7 days of cargo vehicles in some ports. Again, number of ports has been increasing. And the third, you've digitized most of the processes where you don't have to be physically present and you can do this online. And interestingly, and this is very interesting for your listeners to actually understand, if you don't clear your goods or you don't pay on time, there's a penalty on you. So you're actually putting the onus on the businessman to help in this going forward. So, you know, that is the customs thing. And there's been a lot of streamlining of the customs thing, and more is in store going forward. There were multiple chapter heads. There were multiple things here. There's a rationalizing going in, and a lot of

0: विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसवी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
7: PLI है ना?
8: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दिल्ली पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की। और ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट।
9: नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। आयुष मंत्रालय ने बताया कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। इसके अलावा कर्तव्य पद, लोधी गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, सिरी फोर्ट खेल परिसर, यमुना खेल परिसर और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज सहित कई प्रमुख स्थानों पर भी योग सत्र आयोजित हुए। मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण के बाद प्रतिभागियों ने 45 मिनट के सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। आयोजन ने स्वास्थ्य जीवन शैली और योग के प्रति लोगों की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया। योग सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि लगभग 190 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तब से सभी देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं।

0: श्री नड्डा ने कहा कि योग से मानसिक जागरूकता बढ़ती है।
1: योग मैं भी दिन प्रतिदिन करता हूं, इससे बहुत शारीरिक एजिलिटी आती है, मानसिक जागृति आती है और शांत मन से, शांत चित्त से लंबे समय तक काम करने की प्रेरणा मिली। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस योग दिवस पर हम संकल्प लें कि हम कम से कम अपने दैनिक जीवन में योग का उपयोग करते हुए अपने जीवन को और उत्तम बना सकें, अपने शरीर को और अच्छा बना सकें, अपने मन को शांत रख सकें।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज पूरी दुनिया कहा कि आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से एकजुट हो रही है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ता है।
3: आज पूरा विश्व योग के माध्यम से जुड़ रहा है, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी योग से बढ़ता है। जब मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है तो सामाजिक और राष्ट्र का स्वास्थ्य भी बढ़ता है और प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुम्बकम की बात की है तो पूरे विश्व का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए 100 दिन योगा का भी आह्वान किया है। पूरे देश में, पूरे विश्व में करोड़ों लोगों ने योग किया है।
0: इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आसोला भाटी स्थित नीली झील पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वस्थ, सक्रिय और तनाव मुक्त बनाने की दिशा में योग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है जो तन, मन और जीवन में संतुलन प्रदान करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। इसके अलावा योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि योग को 365 दिन का कार्यक्रम बनाने पर बल देते हुए कहा कि योग से हमारी जीवन शैली बदलने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर होगा।
4: योगा का देखिए फिजिकल फिटनेस एक चीज है, खासतौर पे आज योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम जिसके थ्रू ये अचीव हो सकता है। बैलेंस हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बैलेंस से मेंटल बैलेंस निकलता है, फिजिकल बैलेंस निकलता है, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। श्री संधू ने कहा कि लोगों का जबरदस्त उत्साह और सामूहिक भावना दर्शाता है कि योग एक ऐसी शक्ति है जो उम्र, पृष्ठभूमि और भूगोल की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ती है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय सहित राजधानी के विभिन्न जिलों में योग सत्र आयोजित किए। पुलिस के अनुसार पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ईशा फाउंडेशन ने देशभर में कई योग कार्यक्रमों का आयोजन किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित आदि योगी परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि योग में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित प्रतिभा और क्षमता को जागृत करने की अपार शक्ति है।
5: What we call as yoga.
6: जिसे हम योग कहते हैं वह कोई फिलॉसफी नहीं है, वह कोई विचारधारा नहीं है, ना ही कोई बिलीफ सिस्टम है, ना ही कोई धर्म है और निश्चित रूप से ये आपके शरीर मोड़ने और घुमाने के बारे में भी नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। जैसे बाहरी खुशहाली के लिए एक विज्ञान और तकनीक है, वैसे ही आंतरिक खुशहाली के लिए भी एक पूरा विज्ञान और तकनीक है। यदि आप एक इंसान हैं तो ये तकनीकें आप पर लागू होती हैं। यदि आप केवल इसका उपयोग करना चाहते हैं या यदि आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो एक पूरा विज्ञान यहाँ मौजूद है जो जीवन भर की खोज

0: खोज का विषय है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे तीन प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कोली समाज के 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय कोली समाज को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि कोली समाज ने अपने परिश्रम, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परम्परा से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि समग्र और स्वस्थ जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर दादा ने कहा कि योग से तनाव भी कम होता है और वजन नियंत्रण तथा प्रजनन स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है।
2: बहुत बढ़ रहा है और इंडिया में तो अबाउट 3.6 to 22.6% पाया गया है। बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारी एविडेंस बेस्ड रिसर्च ने क्लियरली दिखाया है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है तो योग एक आर्ट ऑफ लिविंग है, इट्स अ प्रोफाउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसको अगर हम अपने दिनचर्या में अपनाएं तो इस पे बहुत ज्यादा इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ अजीत कुमार सिंगला ने की, जिसमें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान रूट सुरक्षा, कांवड़ियों की सुगम आवाजाही, यातायात डायवर्जन, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वतंत्रता दिवस के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों और राष्ट्रीय समारोह स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों आयोजनों के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करेंगी। दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस अधिनियम 1985 पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में 71 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शेयर बाजार में अधिक मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से कई किस्तों में लगभग 80 लाख रुपए निवेश करवाए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपराध ठगी की रकम को छिपाने के लिए उनको अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते थे। मामले की जांच जारी है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम के समय हल्के बादलों के साथ धीमी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल दोपहर हल्के बादल छाए रहने की संभावना बताई है और शाम में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न, 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दिल्ली पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योग अभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 4 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ऑकलैंड में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने टूर्नामेंट में टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं AIRFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ हूं मैं नूपुर। स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। मधुरिमा की इस महफिल में आज सजेगा एक रंग अनूठा, मधुवंती की मधुर छटा में डूबेगा मन का हर एक कोना। जी हाँ, आज का ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम का ये अंक समर्पित है एक अत्यंत भावपूर्ण, कोमल और मनमोहक राग, राग मधुवंती को। राग मधुवंती का नाम सुनते ही ना जैसे मन में मधुरता, विरह, अनुराग और एक अलौकिक शांति का संचार होने लगता है। ये राग प्रायः अपराह्न और संध्या के मिलन काल में गाया बजाया जाता है और अपने कोमल गांधार और तीव्र मध्यम के प्रयोग से एक अद्भुत रस उत्पन्न करता है। तो आइए राग मधुवंती की इस सुरमई यात्रा का आरंभ करते हैं इस सोलफुल गजल से। फिल्म दिल की राहें से ये गजल है लता जी की आवाज में। संगीत बनाया मदन मोहन जी ने और लिखा नक्श लायलपुरी जी ने।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
5: बिल्कुल, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, प्रोग्राम मधुरिमा साथ, मैं नूपुर। बात राग मधुवंती की।

जो कि अपेक्षाकृत नया राग है। पूर्व में ये राग अंबिका के नाम से जाना जाता था, ऐसा मानना है। ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण होने के कारण श्रोताओं पर अपना गहरा प्रभाव डालता है और इस राग के पास का राग मुल्तानी माना गया है। राग मुल्तानी में ऋषभ और धैवत को कोमल प्रयोग किया जाता है, जबकि राग मधुवंती में इन्हीं दोनों स्वरों को शुद्ध कर दिया जाता है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण राग मधुवंती सुनने में अत्यंत शांत और आनंददायक है। राग का परिचय ले लेते हैं। थाट है तोड़ी, जाति ऑडव संपूर्ण, आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वर लगाए जाते हैं। स्वर गंधार और कोमल, मध्यम तीव्र और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित छोड़ने की प्रथा है और वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर ऋषभ। इस राग को गाने का समय दिन का तीसरा या चौथा प्रहर यानी दोपहर से शाम तक का समय अनुकूल माना गया है। इसकी प्रकृति श्रृंगार रस है और करुण रस से ओतप्रोत है। तो आप तक पहुंचाते हैं एक और वानगी इसी राग की। संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन ने इस राग को आधार मानकर संगीत बनाया। इस गीत का जो है फिल्म सांझ और सवेरा से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में।

और श्रृंगारस का अत्यंत सुंदर संगम मिलता है। संगीतविदों का मानना है कि मधुवंती का विकास अपेक्षाकृत आधुनिक काल में हुआ, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सुगम संगीत और इसके बाद फिल्म संगीत में भी इसका व्यापक प्रयोग हुआ। जब कोई कलाकार मधुवंती में आलाप करता है तो ऐसा लगता है मानो कोई मधुर स्मृति धीरे धीरे मन के द्वार पर दस्तक दे रही हो। फिल्म संगीत में जब किसी राग का प्रयोग संवेदनशीलता के साथ किया जाता है तो वो गीत समय की सीमाओं को पार कर जाता है, अमर हो जाता है। और ऐसा ही गीत आप सुन रहे हैं पार्श्व में, फिल्म दिल से ये गीत है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। ये गीत और इसका संगीत जो है वो प्रेरित है राग मधुवंती से, जिसकी विशेषता ये भी है कि इसमें विरह की वेदना और मिलन की आशा दोनों भाव साथ साथ चलते हैं। और यही कारण है कि इस राग पर आधारित अनेक बंदिशें और गीत सीधे हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। तो सुनिए ये गीत, स्वरों की ये शीतल छाया मन में यूं ही बनी रहे, रागों की अमृत धारा जीवन भर यूं ही बहे, मधुवंती की मधुर महक से हर संध्या सुवासित हो, संगीत की साधना में हर हृदय प्रकाशित हो। फिर मिलेंगे हम किसी राग की सुर भी लेकर किसी नई संगीत में कहानी के साथ। मैं अनुपुर, आप सुन रहे थे मधुरिमा, केवल FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। भारत ने त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अपने नाम की। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर गर्जा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना सऊदी अरब से होगा। अन्य मुकाबलों में जर्मनी और जापान ने जीत दर्ज की। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उस दिन नाद लाबिम ग्रांपी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने कुल 12 पदक जीते और अभय वेलावन ने लगातार तीसरी बार एशियन डबल स्क्वैश खिताब पर कब्जा किया।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं योग दिवस से, जहां कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रमुख कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योग किया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्रों में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। ऋचा घोष 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ अरुंधति रेड्डी दे रही हैं। भारत ने इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। प्रतियोगिता में भारत ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से, वहीं दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया था। और अब रुख कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच हुए त्रिकोणीय श्रृंखला पर। दाम्बुला में त्रिकोणीय

0: एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का फाइनल मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 66 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित ओवर में 377 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में धमाकेदार 94 रन की पारी खेली। कप्तान तिलक वर्मा ने 67 रन बनाए। वैभव ने अपना अर्धशतक सिर्फ 11 गेंदों में पूरा किया। इस तूफानी पारी के साथ ही वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
1: जब मैच बड़े होते हैं तब वैभव खड़े होते हैं और ये लंबा मारा है एक और छक्का और इसी छक्के के साथ केवल 11 गेंदों में सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक पूरा किया है वैभव सूर्यवंशी ने।
0: अनुकूल रॉय ने भी 39 रन की अहम पारी खेली। 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 48वें ओवर में 311 रन पर सिमट गई। यश ठाकुर और विपराज निगम ने तीन तीन विकेट अपने नाम किए। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और उधर बीसीसीआई ने आज इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय सीनियर टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज इंग्लैंड के साथ होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। तीन मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई को इंग्लैंड के एजबेस्टन में खेला जाएगा। कर लेते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच के मुकाबले में आज स्पेन का सामना सऊदी अरब से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप जी के मैच में बेल्जियम का सामना ईरान से होगा। अन्य मुकाबलों में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को और नीदरलैंड्स ने स्वीडन को हराया। सुनते हैं इन मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
2: फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ के मुकाबले में जापान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्यूनिशिया को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से हराया। विश्व कप के इतिहास में ये पहला मौका है जब जापान ने एक मैच में 4 गोल किए। इस हार के साथ ही ट्यूनिशिया का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। इस जीत के साथ ही जापान ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपनी दावेदारी और पुख्ता कर ली है। जापान की ये जीत वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी एएफसी टीम की सबसे बड़ी जीत भी है। जापान की बड़ी जीत की शुरुआत अयासे उएदा ने की। उन्होंने ऊंची छलांग लगाते हुए ट्यूनिशिया के डिफेंडरों के ऊपर से बेहतरीन हेडर लगाया और गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए जापान को 1-0 की बढ़त दिलाई। दाइची कामदा ने खिलाड़ियों को छकाते हुए जापान की बढ़त को दोगुना कर दिया। कामदा का 4th मिनट में किया गया गोल फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी जापानी खिलाड़ी द्वारा किया गया सबसे तेज गोल है। दूसरे हाफ के 69वें मिनट में जूनिया इतो ने शानदार स्लाइड लगाते हुए जापान की टीम की ओर से तीसरा गोल किया। मैच के 83वें मिनट में उएदा ने अपना दूसरा और मैच का चौथा गोल करते हुए जापान की आसान जीत पर मोहर लगा दी। ग्रुप ई के मुकाबले में जर्मनी ने शानदार वापसी करते हुए कोटे डी आइवर को 2-1 से हराया। टीम की इस जीत के हीरो डेनिस उंदाव रहे जिन्होंने 2 गोल दागे। इस रोमांचक जीत के साथ ही जर्मनी ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये मुकाबला शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद रोमांचक रहा। मुकाबले में कोटे डी आइवर ने गोल करके 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर डेनिस उंदाव ने 2 गोल करते हुए मैच का पासा पलट दिया। 8 मिनट के भीतर उंदाव ने पहला गोल दागते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मैच जब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था तभी स्टॉपेज टाइम में जर्मनी के लिए उंदाव ने निर्णायक गोल किया। उंदाव के लिए ये प्रदर्शन खास रहा क्योंकि जर्मनी के लिए उनके पिछले 8 मैचों में ये 9वां गोल रहा।
3: After dismantling Curaçao, they dug in against Cote d'Ivoire.
2: ग्रुप एफ के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 5-1 से पराजित किया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स ने ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है। नीदरलैंड्स ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपने दावेदारी और मजबूत कर ली है। नीदरलैंड्स की ओर से इस मुकाबले में ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो दोनों ने दो दो गोल किए। मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स आक्रामक अंदाज में खेलता नजर आया। टीम ने 5वें मिनट में ही पहला गोल कर बढ़त बना ली। इसके बाद 17वें मिनट में ब्रॉबी ने नीदरलैंड्स की बढ़त को दोगुना कर दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। 47वें मिनट में कोडी गैपको ने शानदार फिनिश के साथ टीम के लिए तीसरा गोल दागा। इसके सिर्फ 7 मिनट बाद उन्होंने अपना दूसरा गोल दागते हुए नीदरलैंड्स की लीड को 4-0 कर दिया। स्वीडन के लिए मैच का पहला गोल 59वें मिनट में आया। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एंथनी एलंगा ने शानदार गोल करते हुए अंतर को कम करने का प्रयास किया। 89वें मिनट में क्राइसेंसियो समरविले ने शानदार गोल कर टीम की जीत पर मोहर लगा दी। 5-1 की धमाकेदार जीत के साथ ही नीदरलैंड्स के अब 2 मुकाबलों में 4 पॉइंट्स हो गए हैं। वहीं स्वीडन की टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात हॉकी की। भारत ने महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। सुनते हैं करिश्मा की एक रिपोर्ट।
3: Hockey Women's Nations Cup champions for 2026. They have beaten New Zealand 2-0. Jubilation in the dugout for India and on field and among their fans in the crowd here at Harbour for New Zealand. It just wasn't their night. Take nothing away from this team. They are so well coached.
4: रविवार को फाइनल मैच की शुरुआत में मेजबान टीम का बॉल पर ज्यादा कब्जा रहा और वे बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मेहमान टीम ने पहला बड़ा मौका तब बनाया जब नवनीत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। उन्होंने 4th मिनट में एक जबरदस्त स्ट्राइक के साथ इस सेट पीस से गोल किया और भारत को बढ़त दिलाई। भारत ने ट्रांजिशन में शानदार खेल दिखाया और अपनी ऊर्जा से न्यूजीलैंड के डिफेंस के लिए कई मुश्किलें खड़ी की। उन्होंने पहले क्वार्टर में मिले 5 पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी बढ़त बनाई। 15वें मिनट में सुनीलिता टोपे ने दीपिका के तेज शॉट को दिशा देकर स्कोर दोगुना कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अनुशासित खेल जारी रखा जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी लय हासिल कर वापसी की कोशिश की। मेहमान टीम को भी अंतर कम करने के कुछ मौके मिले लेकिन कोई भी टीम दोबारा गोल नहीं कर सकी जिससे हाफ टाइम तक भारत के पास 2 गोल की बढ़त बरकरार रही। तीसरे क्वार्टर में भारत ने मजबूती बनाए रखी और जबरदस्त डिफेंस का।
0: और अब बात बॉक्सिंग की। भारत ने चेक गणराज्य में आयोजित 56वें ग्रां प्री उस्तीनाद लाबेम बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक जीते।
5: महिला टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 5 में से 4 मुक्केबाजों ने स्वर्ण जबकि 1 ने रजत पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, 54 किलोग्राम में मौजूदा एशियन चैंपियन प्रीति पवार, 51 किलोग्राम में साक्षी और 60 किलोग्राम में प्रिया ने अपने अपने फाइनल में सर्वसम्मति से जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 65 किलोग्राम में परवीन ने रजत पदक हासिल किया। लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इटली की मेलिसा जेमिनी को 5-0 से हराया। प्रीति ने 54 किलोग्राम टाइटल मुकाबले में फ्रांस की जेसा मार्सेल को इसी अंतर से हराया। साक्षी ने 51 किलोग्राम फाइनल में फ्रांस की मेसून बोरेगा के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। प्रिया ने 60 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने के लिए चेक रिपब्लिक की बारबोरा मैक्सोवा को 5-0 से शिकस्त दी। भारतीय पुरुष टीम ने भी 4 स्वर्ण पदक जीते जिसमें जादूमणि सिंह मांडेन बाम, सचिन, अंकुश और नरेंद्र शामिल रहे। जादूमणि ने 55 किलोग्राम फाइनल में इंग्लैंड के अब्दुल बर्टन को 4-1 से हराया। सचिन ने हंगरी के वेरेस रोलैंड को और अंकुश ने चेक गणराज्य के फ्लोरियन डेनियल पर 5-0 से बड़ी जीत दर्ज की। नरेंद्र ने हैवी वेट फाइनल में आर्मेनिया के डेविड चालियोन के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज की। 65 किलोग्राम वर्ग में आदित्य प्रताप यादव और 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पुखारिया को अपने अपने फाइनल में करीबी हार के बाद रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। 70 किलोग्राम वर्ग में सुमित कुंडू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने लगातार तीसरे साल पुरुषों का खिताब जीता। इस चैंपियनशिप में भारत ने तीनों कैटेगरी में पदक जीते। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति।

0: दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए,
3: क्या नहीं करना चाहिए।

0: चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रहमान मियां, रहमान मियां है।
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ।
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
1: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चांग पड़ा है।
1: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
1: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए। अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियाँ थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई। उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
1: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
1: फिर इस गाय ही को?
4: बहू
3: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
1: तो फिर करोगे क्या?
3: कुछ तो करना ही होगा।
1: या, या।

0: गाय तो दूध कितना इसके नीचे भैया, कितना दूध इस गाय के नीचे।
1: अरे हाँ हाँ, हम समझ गए, तुम गऊ बेचना ही नहीं चाहते, यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
2: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
3: अरे लाला छोड़ गाय को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खाटा क्या सोचा, ला
2: तो नहीं गाय को, गऊ कुछ ही दे देते हो भाई,
3: पैसे दे रहे हैं।
1: अरे मैं इस गाय के 35 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है, मैं तुम चुप रहा हूँ, मुझे
4: दे रहा है। अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
1: आइए आइए मुख्तार साहब, सलाम
3: सलाम।
1: हुजूर ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
3: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
4: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
3: हुजूर ये देखिए, गर्दन भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
4: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
3: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
4: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
3: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
4: दूध देती है?
3: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए, इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
4: क्या दाम मांगते हो?
3: 50 रुपए हुजूर।
4: हमें तो 35 का माल जचता है।
3: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
4: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
3: क्या कहें हुजूर, चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता हूँ। चलिए हुजूर।
4: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी थी?
3: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
4: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
3: थी सरकार, बड़ी विपद में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
4: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
3: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
4: गाय को तुमने प्यार से रखा है, वो तो दिखता है।
3: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
4: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
3: हुजूर एक अर्ज और है।
4: क्या?
3: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
4: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिक्र मत करो। हाँ
3: जी सरकार।
4: बस ये सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
3: जी सरकार।
4: आ जाओ।
3: जी
4: ये कोठरी इस सामने वाली गऊ का घर है, आ जाओ आ जाओ।
3: जी
4: बस यही बांध दो खूंटे से, हाँ, और देखो इस खूंटे से बछड़े को।
3: जी बाबा। बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
4: ये लो रुपए, गिन लो।
3: जी 10, 10 20, 10 30, 5 35। ठीक है सरकार, ठीक है। अच्छा अब चलो, सलाम हुजूर।
4: अजी सुनती हो, कहाँ हो?
5: आई। हाँ कहो।
4: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
5: क्या?
4: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
5: सच?
4: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
5: वो कैसे?
4: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची, वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
5: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
4: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
5: गौ गाय घर में बंधी है ना?
4: आओ चलो चलो दिखाते हैं।
5: चलो
4: अरे आओ, आओ
5: चलो चल कर देखें।
4: मसला भी बड़ा सजीदा और सुंदर है।
5: अच्छा चलो।
2: सलाम हुजूर।
4: सलाम। तुम्ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना?
2: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
4: रहमान है ना तुम्हारा नाम?
2: बड़ा फरमाया हुजूर।
4: कैसे आना हुआ?
2: हुजूर बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर, पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार, आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
4: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो
2: जी हुजूर,
4: मैं वादे पर रुपए लेता हूँ, अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
2: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
4: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
2: सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर।
4: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
2: ठीक है सरकार, ठीक है।
4: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नाले

0: नहीं करूंगा।
1: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
0: दस्तखत कर सकते हो?
1: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
0: यहाँ पे दस्तखत करो।
1: जी हुजूर। रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
0: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 हैं।
1: 180?
0: हाँ 180। कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली की, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
1: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम।
2: छोड़ो मुझे। चल आया। अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता। चलता है?
3: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
2: अरे अच्छा चल।
4: सरकार, रहमान को ले आया हूँ।
1: सलाम हुजूर।
0: क्या सलाम हुजूर? 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो। क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
1: हुजूर
0: लाओ, रुपए कहाँ है?
1: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
0: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
1: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर, तभी से बीमार पड़ी हुई है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लूँ, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
0: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
1: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर। ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर। रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हुजूर।
0: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि
1: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
0: 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा, पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
1: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
0: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
1: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
0: सलाम।

0: लाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं माँ, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया है, गम न करना।
2: अम्मा
0: बेटा,
2: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: तुम लोगों ने मेरी
1: अम्मा
0: चली गई।

0: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
1: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
0: अरे सुनो
1: जी,
0: जाते कहां हो?
1: सरकार
0: कैसे आए थे, क्या कुछ काम था?
1: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
0: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो?
1: हुजूर, अम्मा।
0: क्या, तुम्हारी अम्मा?
1: हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है।
0: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
1: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूँ पर हिम्मत नहीं पड़ती। हुजूर
0: कहो क्या बात है।
1: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
0: ऐसा क्या करना चाहते हैं
1: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
0: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
1: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
0: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
1: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
0: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
1: सरकार,
0: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
1: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी
0: यहाँ दस्तखत करो।
1: आपकी बहुत मेहरबानी है।
0: ये लो कलम।
1: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम।
1: सलाम।
0: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
2: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
0: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथी भी घुसे तो समा जाए।
2: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
0: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
2: सुनो।
0: हाँ बोलो।
2: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
0: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊदयाल के कदमों पे रख दूंगा।
2: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
0: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब के साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
2: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
0: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
2: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
0: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
2: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलिहान में आती
0: और है। खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
2: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
0: नहीं तो
2: फैसला।

0: Rahman, le jek duhem tu bile vale laka kaza.
1: Va va, Rahman, aapke teri uk badi ghani uthi hai bhaiya.
0: बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया।
1: ये तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई।
0: तब देख ही लो कैसे

0: जो डारूख है ये लो, तुम भी दो चार दम लगा लो भैया।
1: लाओ भैया लाओ।
0: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
1: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा। भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा,
0: पर मंडी में नया गुड़ पहुँचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
1: अरे कम से कम 700-750 तो कहीं नहीं गए।
0: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
0: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी? मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
2: चिलन ताजा करने के काम भी आया है।
0: तुम ठीक कहते हो काका।
2: अरे अरे क्या कर रहा है रहमान? आपको मच्छर।
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम्बक ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास?
3: अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ने दे।
2: अरे सारे ऊख पर घर में तोड़ने का दे बाहर होगा। आग यही तो बढ़ रही है। चलो जल्दी करो, देख क्या कर रहे हो, खेत में ऊख को।
3: अरे
1: रहमान भैया, रहमान भैया सब्र करो, उसकी मर्जी के आगे किसके चली
0: जो होना था सो हो गया। किस बुरी तरह ऊब जल रही।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। चा मेरे अल्लाह, कहाँ चुप जाओ, कहाँ चुप
1: जाओ। रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी भूख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: कर। चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा
1: हूँ। चलता है या मैं? चल चल चल चल।
0: हुजूर मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब भूख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर भूख लगी हुई थी सरकार, गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा, अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान,

0: समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
1: अरे हुजूर, ये कैसे समझ लो, यहाँ न दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
0: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
1: सरकार?
0: हाँ रहमान, हाँ।
1: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
0: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
1: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
0: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
1: नहीं हुजूर, नहीं।
0: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरे धर्म पर एहसान था।
1: हुजूर,
0: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
1: सरकार।
0: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
1: हुजूर, को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
0: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
1: नहीं हुजूर, गुलाम।
0: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्तिधन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्तिधन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
1: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत।

जंगली धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट

0: बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लालरेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for the country's economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
1: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो

0: राष्ट्र एस श्रृंखला अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: संयुक्त अरब अमीरात के हजारों निवासियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित विशाल योग सत्रों ने सामुदायिक स्थलों को स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्रों में बदल दिया। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने दुबई पुलिस के सहयोग से दुबई पुलिस ऑफिसर्स क्लब में एक योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में परिवारों, स्कूली बच्चों, अनुभवी योग प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों सहित सभी आयु वर्ग के 1,500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में दुबई पुलिस बैंड द्वारा एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के अंतर्गत मनाया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। श्री गोयल आज मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी। इससे भारत के निर्यात को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों ने स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में उच्च स्तरीय सीधी बातचीत शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हुए कमजोर अंतरिम समझौते को मजबूत करना और पश्चिम एशिया के संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि यह जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी उपराष्ट्रपति ने ईरान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और बातचीत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय स्थिरता और महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने पर केंद्रित रही। अमरीकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने इसे दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अमरीका और ईरान के संबंधों को बदलने के लिए एक नई शुरूआत करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व

0: में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास आराघची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से हटने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ आलोचक श्री एंडी बर्नहम को उनका उत्तराधिकारी बनाने की मांग कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी इंग्लैंड के मेकरफील्ड उपचुनाव में बर्नहम की निर्णायक जीत के बाद यह मांग और तेज हो गई। उन्होंने नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी को हराकर भावी नेता के रूप में अपनी साख मजबूत की है। इस बीच श्री स्टार्मर ने कहा है कि वे पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे और नेतृत्व के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व के लिए कोई चुनाव होता है तो वे पद छोड़ने के बजाय चुनाव लड़ेंगे। अफगानिस्तान के पूर्वी परवान प्रांत में एक वाहन पलटने से 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता फजुल रहीम मुस्कनियार ने बताया कि यह दुर्घटना कोही सफी जिले में मंडी कोल इलाके में हुई, जब वाहन में तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण चालक को नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। घायलों को इलाज के लिए काबुल के अस्पतालों में ले जाया गया। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence. Commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. Talks underway in Switzerland between US and Iran to strengthen the interim agreement and consolidate efforts to end West Asia conflict. Pressure mounts again on British Prime Minister Keir Starmer to step down as leader of the Labour Party. Indian women's hockey team lifts FIH Nations Cup for defeat.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1 8

0011780000 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

10:32 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हर श्रृंगार में। आपके साथ मैं विकास।

जी बिल्कुल, मान जाइए कि एफएम गोल्ड जो है आपके लिए बेहद प्यारे प्यारे से गीत लेकर आता है, और उन्हीं गीतों से कई दफा हमारा सफर, कई दफा हमारा वक्त बेहद आराम से कट जाता है। ये जो गीत आप तक पहुंचा, ये था 1970 की फिल्म हिम्मत से, और आशा जी की आवाज और उसके साथ रफी साहब का भी साथ। इस गाने को एक जो जरूरत होती है किसी गाने का, खिलकर निखर जाना और पर्दे पर भी उतना ही खूबसूरत सामने पेश हो जाना, शायद इन दोनों कलाकारों ने उस गीत को उभरने में बहुत अच्छा काम किया। हालांकि हम ये बात कहने वाले कौन होते हैं, लेकिन एज अ लिसनर जब ये गीत अभी स्टूडियो में भी चल रहा था तो मुझे लगा कि वाह, मतलब पूरा का पूरा स्टूडियो एक तरह से झूम उठा था। बहरहाल, ये जो फिल्म थी ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब की जोड़ी के तौर पर बेहद खूबसूरत और चर्चित फिल्मों में गिनी जा सकती है, जिसका संगीत भी काफ़ी अच्छा चला था। और ये फिल्म जो थी तेलुगु फिल्म की एक तरह की रीमेक थी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप, और प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार, आपके साथ मैं विकास।

फिल्म का नाम था बगावत और पर्दे पर धर्मेंद्र और रीना रॉय नजर आती हैं और फिल्म का ये बेहद खूबसूरत सा और दिलचस्प सा सीन है और एक गेटअप में तैयार होकर धर्मेंद्र सामने आते हैं और उसके बाद ये गीत पिक्चराइज किया जाता है, कहानी को आगे बढ़ाने वाला गीत इस गीत को कहा जा सकता है। और अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की बेहद प्यारी सी जोड़ी और साथ में एक बार फिर आनंद बख्शी साहब इस गीत में।

उनका साथ निभाते हुए। अगला गीत आप तक पहुंचता है दिल का हीरा, एक फिल्म आई थी 1979 में। ये गीत बीते दिनों मैंने कह सकते हैं कि सुना और अचानक से मेरे सामने आया, और मैंने पहले कभी इस गीत को सुना नहीं था, लेकिन जब इस गीत को सुनते सुनते एकदम से ख्याल आया कि इसमें दो नाम तो चलिए रफ़ी साहब और आशा जी का सामने आता है, और एक नाम दिलचस्प सा मुझे लगा, और मुझे ये भी ख्याल आया कि आखिर इस नाम को क्यों चुना गया होगा। आप फिलहाल गीत सुनिए। गीत से पहले, आप तक पहुंचाने से पहले, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब की जोड़ी इस गीत में भी सुनाई देती है। गीत सुनिए, उसके बाद तीसरे जो गायक हैं उनके बारे में बात होती है। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार।

फिल्म का नाम था दिल का हीरा, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि अमित कुमार की इसमें आवाज थी तीसरे गायक के तौर पर, और बाकी के दो गायक जो रहे वो रफी साहब और आशा भोसले रहे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था। जब गीत सुन रहा था तो अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि आखिरकार तीसरे गायक के तौर पर किशोरदा को भी लिया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि किशोरदा या तो बिजी रहे हों, क्योंकि अमूमन बहुत बार ऐसा होता है कि तीसरे गायक के तौर पर डेट्स ना मिल पाना भी एक वजह हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी रही हो कि पर्दे पर कोई जो एक्टर हो, जो कि इस मामले में सचिन थे, उनके ऊपर अमित कुमार साहब की आवाज़ ज़्यादा फिट बैठ रही हो, क्योंकि एक यंग सा चेहरा पर्दे पर नजर आता है बेल बॉटम पहने हुए और नाराज सा होता है, जिसको कि हेमा मालिनी मना रही होती हैं एक टॉय ट्रेन में बैठकर। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप, और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। वैसे अभी मैं सोच रहा था कि हेमा मालिनी और सचिन किन किन फिल्मों में साथ नजर आए, या कह सकते हैं कि इन दोनों की किन किन फिल्मों में कास्टिंग के तौर पर नाम देखा जा सकता है, जिसमें दिल का हीरा जिसका गीत अभी आपने सुना, सत्य पे सत्ता, शोले और क्रोधी मेरे जहन में आई, और अगर आप इसके अलावा भी कोई और फिल्म याद कर पा रहे हो तो जरूर मुझे बताइएगा किसी ना किसी दिन अपने संदेशों के जरिए। फिलहाल प्रोग्राम का अगला गीत पहुंचता है आप तक, और लाट साहब

0: कब जा।
1: शंकर जयकिशन साहब की इस कंपोजिशन के साथ आपको छोड़े जाता हूं और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप जुड़े रहिएगा FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण

0: कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा

ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
1: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
0: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate, INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata today. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज रिलेंटलेसली बीन वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: सो डॉक्टर शर्मा पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह

0: तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 2,20,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
1: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्टअप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे, हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू होगी, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिसे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 2,20,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है। और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलियंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी।
0: एब्सोल्युटली। सो मिस्टर चनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
0: Yes.
2: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
0: Mm-hmm.
2: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this.

0: Compliance search and simplification of the compliance search is supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
1: Yes.
0: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
1: Mm.
0: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
1: Yes.
0: Now, the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur to provide the jobs to the other people. So this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
0: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India.
1: Hmm.
0: Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business. So this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
0: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence.
1: Yes.
0: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: Absolutely. मिस्टर चनोय, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सूरज जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है, तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी जी,
2: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेस

0: एन एफडीआई के लिए हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट।
1: जी
0: ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था।
1: जी,
0: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो।
1: हाँ।
0: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में। और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के।
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओ और सिटीजन ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन। ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और इसके खास बात की रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है। जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हरेक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी। और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है। और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने का देते थे और अलग अलग

0: डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्होंने क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करें कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
1: Yes.
2: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
1: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव,
2: जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी, हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी, तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड, ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है, जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के

0: You know, whether it is GST, Udyam registration, the GEM, the ONDC, or the PM Swanidhi, or let's not forget the ENAM network.
1: Yes.
0: It has got millions of entrepreneurs that were previously invisible to the system, got them online, got them formalized, and got them access to credit and visibility to the external market.
2: And also, there's been a lot of stress on inclusivity. If we see the Mudra scheme, you know, the women are, I being a lady, you know, I feel that, I mean, there's a lot of stress that has been given on developing women as business entrepreneurs. And a lot of encouragement has been given to new entrepreneurs. So you feel that this is a era where anybody who has the talent has now the opportunity, has been enabled to become a part of nation building?
0: I think absolutely. If there are any listeners who want to start a business, women or men, there are a lot of specific projects. And, you know, if you look at the year before last budget, right, one of the things was 75% women in economic activity. Mm-hmm. You know, that's his goal of what does Viksit Bharat mean, right?
2: Yes.
0: And we want to become entrepreneurial. So this is the best time for any young person or even a person who
2: of
0: is
2: any age,
0: age group
2: yes,
0: to actually explore setting up a business. The domestic ecosystem to promote entrepreneurship has never been better. Some people may say some more changes are going to have required, but this is always work in progress. And the interesting part of this whole system is that the government is willing to listen to what changes need to be made. If you give a suggestion, it is looked at, it may be accepted, but the whole idea here is ease of doing business and ease of living.
2: Absolutely. In fact, we are totally running out of time. Would you like to say something, Dr. Sharma?
3: Yes, Sonuji. I would like to mention one more promising area, which is the artificial intelligence, which is promoting and supporting the business's trajectory and making them more and more easier. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं.
2: Yes.
3: हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम.
2: तो ये एक ब्रेक थ्रू मेजरली टू
3: यस जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 crore के फंड से शुरू किया तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन द नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम.
2: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
3: थैंक यू.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसवी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात.

जी बिल्कुल, दिन ढल चुका है और घड़ी बता रही है कि विकास अब तुम्हारे जाने का यहाँ से वक्त आ चुका है, क्योंकि मंजू ने स्टूडियो संभाल लिया है। तो विकास को दीजिए आज के लिए इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

की है तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है।

या पालियम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 10 सेकेंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज के साथ।

अभी जो आपने गीत सुना वो था साल 1959 की सुपरहिट फिल्म अनाड़ी से, और आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था राज कपूर और नूतन पर। और अब हम सुनते हैं अगला गीत फिल्म पतिता से।

फिल्म पतीता से लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। और इस गीत को फिल्माया गया था उषा किरण पर। अगला गीत हम सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज में।

रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म बरसात की रात से। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में और ये एक संगीतमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने और निर्माण किया था आर चंद्रा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा ने। अभी जो गीत हमने आपको सुनवाया था इसमें संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब। ये फिल्म जो है वो दो प्रेमियों यानी कि मधुबाला और अमन हैदराबादी यानी कि भारत भूषण के इर्द गिर्द घूमती है और क्योंकि समाज जो है इन्हें स्वीकार नहीं करता। बहुत ही कश्मकश को लेकर लिखी और प्रदर्शित की हुई फिल्म थी ये और 1960 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय बॉक्स ऑफिस फिल्म भी रही ये। 21वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये और आलोचकों ने इस फिल्म को काफ़ी सराहा। और अब हम सुनते हैं अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में।

रफी साहब और आशा जी की जुगलबंदी, ओपी नैयर साहब का जादुई संगीत और कमर जलालाबादी के शब्द आज भी जब हम सुनते हैं तो मन नाचने का जरूर कर उठता है। फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज और ये फिल्म आई थी 1958 में। जब नाचने का मन हो ही गया है तो अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

0: मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे।
1: हाय हाय हाय हाय सस्ते है कुछ

प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट के

कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद समाप्त हो गई। इस हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित थीं। यात्रियों को यात्रा के लिए लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ा। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में

0: तरुण पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने पर अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती हैं कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow water craft INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the PM said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted yesterday amid tight security arrangements. The National Testing Agency said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam yesterday. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit report within 24 hours. The CM also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief at the loss of lives in the ammonia gas leak incident at a seafood export unit in Tiruvallur, Tamil Nadu. In social media posts, Mr. Radhakrishnan and Mr. Modi extended their condolences to the bereaved families and prayed for the speedy recovery of those undergoing treatment. The International Day of Yoga was being observed throughout the globe yesterday. PM Modi yesterday expressed gratitude to people around the world

वो सारे फूल जो फूल होने का दावा करते हैं तुम्हारे लिए है, वो सारे फूल जो फूल होने का दावा करते हैं तुम्हारे लिए है, जो फूल बनेंगे आगे चलकर उन्हें भी अपने पास रख लो, खिलने वाले फूल तुम्हारे लिए खिलेंगे, जो फूल नहीं हैं वो भी फूल बनेंगे तुम्हारे लिए, जो मुरझा गए वो फूल भी तुम्हारे लिए लौट कर आएंगे एक दिन।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 25 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा खास प्रोग्राम जहां पर हम रात के सुरों को, रात के दर्द को, रात के एहसास को अपनी बातों से, कुछ गीतों से और कभी कभी शायरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ।

सच कहूँ तो मैं इस गजल को जब सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वक्त रुक गया है, बस हवा कहीं ना कहीं महसूस हो रही है और उस ताजगी में मैं भीगती चली जा रही हूँ। जगजीत सिंह की आवाज और शब्द थे नवाज देवबंदी साहब के। इश्क में ऐसा ही होता है कि हम कभी ना कभी, हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी खास इंसान के आने की आहट जरूर महसूस की होती है, और जब उस इंसान के आने की आहट हम महसूस करते हैं तो हमारा दिल और दिमाग एक अजीब से एहसास से गुजरने लगता है, और वो एहसास शायद शब्दों में नहीं गजलों में ही बयां होता है। अगर आप भी इस गजल को सुनकर यादों के गलियारों में निकल गए हैं तो आप लौट आइए, क्योंकि अगला गीत आपका इंतजार कर रहा है। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दिल अपना कहता है। दुनिया में लोग न जाने कितने चेहरों से मिलते हैं। रोज हजारों लोग हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को पसंद आता है। तो अगर आप भी इस वक्त किसी की यादों में खो गए हैं, या आपका वो खास आपके बिल्कुल सामने बैठा है, तो इस धुन में खुद को बह जाने दीजिए, क्योंकि अगली गजल आपका इंतजार कर रही है। अगली गजल आशा जी की आवाज में।

कहते हैं मोहब्बत में मांग ही क्या होती है, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जो और बहुत सारा भरोसा। और जब ये सब मिल जाता है तो दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, प्यार की ये मदहोशी अब कम ना हो। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

पत्थर की दुनिया सबसे ईमानदार दुनिया, पत्थर की दुनिया सबसे ईमानदार दुनिया, नींद सबसे धोखेबाज सुख, तुम मेरी सबसे लंबी प्रतीक्षा, मैं तुम्हारी

सबसे अंतिम दृष्टि, मौत सबसे ठंडी लपट, पहाड़ बारिशों के लिए रोए तो रोने की आवाज क्या हो। मैं हूं तो मेरे होने का क्या हो, तुम अगर हो तो तुम्हारे होने की आवाज क्या हो। स्वदेश प्लवेक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात का दर्द, रात का एहसास, कुछ बातों और गीतों के माध्यम से। अगला गीत रफी साहब और लता जी की आवाज में।

वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपने एक बात नोटिस की, आज आसमान में चांद कितना मुकम्मल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में आज कोई खास महफिल सजाई गई हो। अक्सर लोग कहते हैं कि रात तन्हा होती है, सुनी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी की याद हमारे दिल में हो

चांद हो, तारे हो, सितारे हो, तो सब मिलकर एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल, अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस दुनागिरी संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों ने योग लिया। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिक्ष समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है।

रात के 3:11 और 22 सेकंड हुए हैं। हम राही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वो 70 का दशक वो गानों की झंकार याद आती है। वो 70 का दशक वो गानों की झंकार याद आती है। तुम्हारी एक झलक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कोई पूछे जो हमसे कि क्या हाल है इस दिल का, तो लबों पर बस तुम्हारी ही बात आती है।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना अमर अकबर एंथनी फिल्म से। सोमवार से इतवार का सफर कितना सुहाना है, सोमवार से इतवार का सफर कितना सुहाना है, इस बहाने से दिल को बस तुम्हारे करीब आना है। कैलेंडर की तारीखें तो बदलती रहेंगी, उम्र भर पर हमारे प्यार का ये हफ्ता तो सदियों पुराना है।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में फिल्म अपनापन से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार करने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें, जो कि इस गीत में भी बताया गया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा फिल्म दुनियादारी से।

0: प्यार करने से पहले जरूरी है ये मैं तुझे जान लूं और तू मुझे जान ले।
1: जा जा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं छलिया बाबू फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

चलो एक बार फिर से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चलो एक बार फिर से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दुनिया को छोड़ो, खुद से मुलाकात करते हैं। चल कहीं दूर निकल जाएं, जहां कोई जानता ना हो, बस तुम, मैं और खामोशी की बात करते हैं।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दूसरा आदमी से अभी आपने ये गीत सुना। इतनी वफा, इतना सुकून, इतनी दीवानगी अच्छी नहीं। इतनी वफा, इतना सुकून, इतनी दीवानगी अच्छी नहीं। हद से ज्यादा चाहना भी कभी कभी मुकद्दर को रास नहीं आता। आइए सुनते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म छाया से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की

बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म मुद्दत से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म श्री 420 से।

दोस्तों हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एफएम गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपनाने, दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय वन कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजाने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम

0: Marzan cap. South Africa defeated India by 6 wickets in a Group A match of ICC T20 World Cup in Manchester last night. And that is the end of this news bulletin.
1: सौ दशमलव एक मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। सुबह की इस सुहानी बेला में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और आप सब आजकल छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि यही तो वो दिन है जब आप अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून में हैं। क्यों, सही बात है ना?

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आस का पंछी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन में खुशी गम साथ साथ ही चलते हैं। खुशी है तो उसमें भी सहज रहिए और गम है तो उसमें भी।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम।

बातों बातों में फिल्म से अभी आपने गीत सुना अमित कुमार पर्ल पद्म से और लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, जिंदगी में कभी हम जीत जाते हैं तो कभी हार जाते हैं, कभी पास होते हैं तो कभी फेल हो जाते हैं। पर अगर हम कहीं फेल होते हैं या कहीं हार जाते हैं, उसमें भी हमें निराश नहीं होना है, फिर भी आगे बढ़ते जाना है।

आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में फिल्म सीता और गीता से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं दिल की राहें फिल्म से, मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में जीने का ढंग आ गया तो आपके लिए हर कदम पर खुशी है, और फिर चाहे वो जिंदगी की कोई भी जंग हो, वो आप जीत ही जाएंगे।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म मेरी जंग से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: 10 दिन बीत गए बैजू, मैं तो थक गई चलते चलते।
3: अरे सावली, काबुल के गुलजार खान कह गए हैं कि तन हारो मन हारो धन दौलत हारो खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
2: बैजू, चरिंदे जागे परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
3: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो। अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना मुस्कुराना, एक ग्रह सैंपल आपने थोड़ा सा।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म छूमंतर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्रभु की शक्ति से ही हमारा तन मन सब चलता है, पर साथ में अगर अपने पर विश्वास हो तो फिर देखिए आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे।

वाणी जयराम की आवाज में फिल्म गुड्डी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर हम किसी से प्यार से बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें भी उसके बदले में प्यार ही मिलता है, परंतु अगर हम किसी से गुस्से में बात करते हैं तो सामने से भी आपको गुस्सा ही मिलेगा। तो देखिए, अब आपने क्या करना है।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सोतन से अभी आपने गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं गोरा और काला फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसकी समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूरनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले सहयोगियों, वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागीर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजा ने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 11 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है अरुण कुमार ने।

दोस्तों, जिंदगी में हमें कई तरह के लोग मिल जाते हैं, पर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी को इतना सीरियस मत लीजिए कि आपके लिए भी जीना ही मुश्किल हो जाए। हंसी खुशी मस्ती से जिंदगी को जीना सीखिए। आइए सुनते हैं जमीर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।